सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और

0: चीन लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शीर्षक है सुखी और सार्थक जीवन, रामचरितमानस कान, वाचन स्वर विभूति भूषण भट्ट का।
2: रामचरितमानस के अंतिम अध्याय में एक प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ काग भूषुंडी से पूछते हैं कि आपने हजार योनियों में जन्म लिया है, इनमें सबसे उत्तम योनि कौन सी है? काग भूषुंडी का उत्तर था कि इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। मनुष्य योनि के सर्वोत्तम होने के जो कारण काग भूषुंडी ने गिनाए, उन्हें सुनकर न जाने क्यों पक्षीराज की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्हें फिर पूछना चाहिए था कि मानव योनि पाकर क्या मनुष्य अन्य जीव जंतुओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, और यदि है तो इसका उपाय क्या है। संभवतः तुलसीदास जी के युग में मनुष्य योनि एक वरदान ही रहा होगा। उसे देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन की अपेक्षा अन्य प्राणियों का जीवन कहीं अधिक सुखी और सुरक्षित है। बाह्य जगत की आपाधापी और अंतर मन का द्वंद्व आज मनुष्य जीवन के अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। इन तत्वों के मिश्रित प्रभाव से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ उसकी नियति बन गए हैं। इनके वशीभूत वो अपनी जीवन नैया को उस दिशा में ले चलता है जहां क्षणिक सुख तो उसे मिल जाता है, लेकिन अंततः पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह पछतावा बीते समय को वापस नहीं ला सकता, फिर पछताने से क्या लाभ? सांप जब निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या लाभ? मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति यानी अनंत सुख प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है। इस सीढ़ी तक पहुंचने के बाद यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलता नहीं तो इंद्रिय सुखों को तुच्छ जानकर वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता और इनसे दूर रहकर आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन में बंधकर वो अपने प्रत्येक कर्म को संचालित करता है। ये अनुशासन उसे आत्मानुभूति कराता है कि वो अपने में ही संपूर्ण इकाई नहीं है, वरन वो समाज का एक अंग मात्र है। शरीर तो पूरा प्राणी जगत है, मानव जगत ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पूरा प्राणी जगत का वो एक हिस्सा है। यही है वो अनुभूत जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। यही है वो अनुभूत जो मनुष्य को स्वकेंद्रित यानी स्वार्थी होने से बचाती है। समाज के हित में स्व का हित तलाशने की सीख देती है। जीवन का सुख और जीवन की सार्थकता भी इसी अनुभूति में निहित है। इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए किसी कठिन जप तप की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने जप तप के कष्टदायक कठिन मार्ग पर चलकर हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग ढूंढ निकाला है। वो मार्ग है आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का। जिसने अपने जीवन में इसे उतार लिया, उसे सहज में ही वो सब कुछ मिल जाता है जो ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, शीर्षक सुखी और सार्थक जीवन रामचरितमानस गान। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं देशगान से।

अभी आपने सुना ये देशगान भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं गणेश वंदना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए सुनते हैं ये अगली वंदना।

कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत का वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। लीजिए सुनिए ये अगली वंदना।

FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र, और कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:40 हुए हैं। आप सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे कृपा राम के गाए जौनसारी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनिएगा रोज की तरह ही सुबह 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सवेरे 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे प्रातः 10:02 पर। सुबह 10:35 पर कार्यक्रम लोक संगीत में प्रसारित किया जाएगा मैनपाल सिंह और साथियों की गायी रागिणी। श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 11:00। कार्यक्रम सुगम संगीत में असलम साबरी और साथियों की गायी कवाली आप सुनेंगे दोपहर 12:12 पर। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनिएगा डॉक्टर आरती सिसोदिया की वार्ता, विषय रहेगा वार्तालाप की कला। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में 4:02 पर आप सुनेंगे निवेदिता घोष का सितार वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग भीम पलासी। शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सोहनलाल भट्ट की गढ़वाली वार्ता, विषय रहेगा पहाड़ माँ कुटीर और लघु उद्योगों की संभावना।

कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे हेलो लूप मंजरी, समय रहेगा शाम 7 बजे। शाम 7:50 पर सुनेगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे अपने संदेशों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अनूप घोषाल के गाए भजन आप सुन पाएंगे रात्रि 8:15 पर। हमारे केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर, दोपहर 3 बजे सुनेगा गाने नए तराने, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर सुनेगा

फिल्म संगीत सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर, और कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत 4:30 पर। कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे महान संगीतकार आर डी बर्मन।

0: ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रतिवार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादक द्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रीय सुरक्षायै, सामाजिक स्थिरतायै, आर्थिक हिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेत्रीन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाहः नवदिल्ल्यां मादक द्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभां संबोधयन् एवं अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय

0: उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों के मोती।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों के मोती FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इसके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब कृषि विकसित होगी और किसान समृद्ध होंगे। वे कल पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व छात्रों से कृषि अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय कृषि, छोटे जोत, जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान, पलायन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका समाधान अनुसंधान और नवाचार से संभव है।
2: क्योंकि आज का युवा केवल अब नौकरी खोजने वाला युवा नहीं है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला युवा है। आपके अनुभव और मार्गदर्शन से उसके सपनों को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र केवल स्मृतियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपने संस्थान के विकास में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। आप विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं, शोध कार्यों में सहयोग करें, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएं।
1: कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने पंतनगर संग्रहालय स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों से संवाद किया तथा धान की रोपाई में भी हिस्सा लिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। स्पर टू हरिद्वार और हरिद्वार बाईपास परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में जाम की समस्या कम होने के साथ श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन स्पर टू हरिद्वार परियोजना का लगभग 92% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत 46 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। यह मार्ग दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे को हरिद्वार से जोड़ते हुए हलगोया मुस्तकम से बरेली राजपूताना राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तक जाएगा। इसके शुरू होने से दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को हरिद्वार के भीतर प्रवेश के बिना वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। वहीं 15 किलोमीटर लंबे हरिद्वार बाईपास परियोजना के पहले चरण का लगभग 77% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत अब तक 9 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा चुका है। बहादराबाद से चंडी देवी मंदिर के निकट तक बनने वाले इस बाईपास के शुरू होने से हर की पैड़ी, चंडी चौक और शंकराचार्य चौक सहित शहर के भीतरी क्षेत्रों में यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। NHAI का लक्ष्य अर्धकुंभ 2027 से पहले इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर हरिद्वार में सुरक्षित, आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: सप्ताहांत के दौरान कैंचीधाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विशेष यातायात और डायवर्जन योजना लागू की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में जारी यातायात व्यवस्था के अनुसार अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर से हल्द्वानी आने वाले भारी वाहनों को क्वारब और खैरना से रामगढ़ मुक्तेश्वर मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को निर्धारित मार्ग से संचालित किया जाएगा, जबकि अन्य भारी वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर मस्जिद तिराहा भवाली से रोका जाएगा या रामगढ़ और खुटानी मार्ग से भेजा जाएगा। भीमताल मार्ग से कैंचीधाम जाने वाले निजी वाहनों को विकास भवन पार्किंग तथा गेठिया नैनीताल मार्ग से आने वाले वाहनों को भवाली सैनिटोरियम पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। वहां से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सप्ताहांत के दौरान कैंचीधाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी के बीच बैठक हुई। बैठक में इस संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने इफको से राज्य में कृषि और सहकारिता गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने तथा किसानों के हित में प्रदेश भर में खेत बचाओ जीवन बचाओ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने का आग्रह किया। इस दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को वैज्ञानिक और सतत कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने उत्तराखंड में शीघ्र ही एक बड़े किसान सम्मेलन के आयोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों के लिए गरज चमक, तेज बारिश और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 30 जून तक पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत आज और कल पौड़ी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। वे आज सलाना, बड़ियों, चमगांव, कालों, मथौली, पिपलौड़ी, सैंजी, नौठा और थलीसैंड क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान बजवाड़ में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन, बड़ियों सड़क का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत पटौटी मथौली सड़क के डामरीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत कल थलीसैंड में क्षेत्रीय ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसी दिन ग्राम जल्लू में सड़क डामरीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विकास तथा विभिन्न जनहित और सामयिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री उनियाल ने सीमांत क्षेत्रों के विकास और राज्य के सामरिक महत्व को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार का सहयोग राज्य के विकास को नई दिशा दे रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के प्रति सहयोग और मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इनके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम शैल संगीत, जिसके अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं कृपा राम की आवाज़ में जौनसारी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: रविंद्र ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपा राम के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: आप सुन रहे हैं कृपा राम के स्वर में जौनसारी लोकगीत कार्यक्रम। चल रहा है शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपाराम के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कृपा राम के गाए जौनसारी लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर।

0: गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर

0: हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इम्बार्क ऑन 3-day स्टेट विजिट टू सेशेल्स दिस मॉर्निंग।

नमस्कार, देहरादून। मैं प्रियंका जेना लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम। श्रोताओं, कहते हैं ना कि इंतजार का भी अपना अलग ही मजा होता है, और इन दिनों देहरादून को भी है किसी का इंतजार। जी हाँ, इंतजार उन काले घने बादलों का जो इस तपती धूप को अपने आंचल में समेट ले। इंतजार उस पहली बारिश का जो सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि मन को भी भिगो दे। सुबह की हल्की ठंडक कब दोपहर की तपिश में और उमस में बदल जा रही है आजकल पता ही नहीं चलता। बाजार हो, दफ्तर हो या घर की बालकनी, हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, बस अब बारिश हो जाए तो राहत मिले। और सच पूछिए, मानसून सिर्फ मौसम नहीं बदलता, ये पूरे शहर का मिजाज बदल देता है। पेड़ों की पत्तियां और हरी हो जाती है, पहाड़ धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं, और चाय की हर चुस्की में एक अलग ही स्वाद खुल जाता है। और फिर दिल भी कह उठता है कि वाह, यही तो देहरादून है, यही तो देहरादून का मौसम है। सभी को है मानसून का इंतज़ार, ना जाने कब दस्तक दे मानसून हमारे द्वार, लेकिन तब तक संगीत की फुहारों में भीगते हैं श्रोताओं। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर प्रियंका जैना के साथ। और अब श्रोताओं, वक्त है शहर और राज्य से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का, तो पहुंचाते हैं आप तक स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। केदारनाथ हेली सेवा का संचालन बंद, चार धाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा का संचालन इस बार मानसून आने से पहले बंद कर दिया गया है। DGCA की ओर से 25 जून से आगे हेली सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी गई। अब मानसून सीजन समाप्त होने के बाद सितंबर से हेली सेवा दोबारा से संचालित की जाएगी। उत्तराखंड बनेगा हॉर्टिकल्चर हब, केंद्र करेगा सहयोग। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। राज्य गेहूं और धान उत्पादन का साथ साथ फलोत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्राउट मछली को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मत्स्य विकास मंत्री सौरभ भोगणा ने प्रेस वार्ता कर साझा की उपलब्धियां। उत्तराखंड की रेनबो ट्राउट मछली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पकड़ बना ली है। पिथौरागढ़ जिले की 3 सहकारी समितियों ने राज्य सरकार के सहयोग से नेपाल को 5 मीट्रिक टन मछलियां सप्लाई की है। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड योजना में फिर से होगी हाइड्रोलॉजी स्टडी। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड योजना की फिर से हाइड्रोलॉजी स्टडी होगी। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के पर्वतारोहियों ने माउंट त्रिशूल पर फहराया तिरंगा। जनपद के 2 युवा पर्वतारोही एवं क्लाइंबिंग गाइड सहित 3 सदस्यीय दल ने 7,120 मीटर ऊंची माउंट त्रिशूल चोटी पर सफलतापूर्वक आरोहण कर शिखर पर तिरंगा फहराया। प्रदेश में डाक से मिलेगी मशीनों को निशुल्क दवा। राज्य सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी नई व बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के 95 ब्लॉकों में 3 दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को एक ही स्थान पर जांच, इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी। मरीजों को सिर्फ शिविर में उपचार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी बीमारी का पूरा डिटेल व घर का पूरा पता लेकर दवा डाक से नियमित रूप से भेजी जाएगी। और अब बात मौसम की। पूरे उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर तेज होगा। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक अधिकांश पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 29 और 30 जून को पिथौरागढ़ बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून तक पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुछ जगह बारिश संभव है। 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश हो सकती है। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर चलेगा। 30 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में सतर्कता की अपील की है। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियाँ। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बताते हैं आपको कि क्या है आज का इतिहास। तो 27 जून की तारीख 1871 को जापान ने न्यू करेंसी एक्ट के तहत येन को आधिकारिक मुद्रा बनाया था, जिससे देश में एक आधुनिक और नई मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और बात करें 1839 को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का निधन लाहौर में आज ही के दिन यानी 27 जून को हुआ था। और 1922 को द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड को बाल साहित्य का पहला न्यूबेरी मेडल आज ही के दिन मिला था। और 1964 में भारतीय एथलीट PT उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले में आज के दिन हुआ था। 1977 में 27 जून को जिबूती को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। जानकारियों का सिलसिला श्रोताओं यूं ही चलता ही रहेगा, लेकिन जिंदगी में सुरों और संगीत का साथ भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और पहुंचाते हैं आप तक की अगला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आज का दिन भारतीय संगीत के एक ऐसे जादूगर को याद करने का दिन है जिनकी धुनों ने हर दौर के श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन की, जिन्हें हम पंचमदा भी कहते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 27 जून 1939 को हुआ था और संगीत जैसे मानो उनकी रगों में बहता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान, अपनी अनोखी सोच, नए प्रयोगों और सदाबहार धुनों से अपनी पहचान बनाई। श्रोता, उनकी खास बात ये थी कि वह रोज़मर्रा की चीज़ों से भी संगीत निकाल लेते थे। कांच की बोतलें हों, कंघी हो, कप और सांसों की आवाज़, यहाँ तक कि तालियां, इन सब का इस्तेमाल उन्होंने अपनी धुनों में बेहद रचनात्मक ढंग से किया है। पंचमदा की यही खूबी थी कि उनकी धुनें हर सुबह को और भी खुशनुमा बना देती है और आज भी जब हम उसे सुनते हैं तो वो हमें तरोताज़ा कर देती है। तो आइए आज उनकी जन्म जयंती पर सुनते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत।

श्रोताओं, आज जैसा कि हम आरडी बर्मन के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी आज जन्म जयंती है, तो उन्हीं का ही ये गीत हमने आज आपको सुनवाया। किशोर कुमार की आवाज़ में ये अमर गीत मुसाफिर हूँ यारो। इसके संगीतकार थे आरडी बर्मन, जिन्हें राहुल देव बर्मन के नाम से जानते हैं, तो उनकी जयंती पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। 27 जून को जन्मे राहुल देव बर्मन ने भारतीय फिल्म संगीत में नए प्रयोगों की एक अनोखी परंपरा शुरू की थी। पश्चिमी और भारतीय संगीत का अद्भुत संगम उनके संगीतबद्ध गीतों में हमें दिखाई देता है। नई धुनियों का प्रयोग और हर गीत में अलग रंग भरना उनकी पहचान बन गया था। जैसे चुरा लिया है तुमने दिल को और महबूबा महबूबा, दम मारो दम, तेरे बिना जिंदगी से ये दोस्ती और मुसाफिर हूँ यारो, जैसे अनगिनत सदाबहार गीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया और भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में गिने जाते हैं और आज भी उन्हें हम याद करते हैं। तो श्रोताओं, उनके बारे में ये थी कुछ बातचीत, और साथ ही अगर उनके बारे में कुछ हम विशेष उनकी ज़िंदगी से लेते हैं, तो उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक़ था और संगीत जैसे उनके जीवन का हिस्सा था। उन्हें पंचम दा नाम इसलिए मिला क्योंकि कहा जाता है कि बचपन में वे रोते समय प यानी पांचवें स्वर जैसी ध्वनि को निकालते थे। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो अपने समय से बहुत आगे थे, और इसीलिए आज भी हम उनको याद कर रहे हैं और उनके संगीतबद्ध किए गीतों से हम उनको याद करते हैं। तो आज भी पंचम दा के गीत नई पीढ़ी को उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने दौर में थे। यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से आपको अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए आप हमारा पता, ताकि आप हमें लिख भेज सके अपने पत्रों के माध्यम से अपना प्यार। तो श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून, पिन है 24801। हमारा ईमेल एड्रेस है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी के हर पल को दिल से सजाते रहिए। मिलेंगे फिर एक नई सुबह, नई बात और नए एहसासों के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए और खुशियां बांटते रहिए। इसी दुआ और शुभकामना के साथ अब मुझे यानी प्रियंका जेना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। नमस्कार देहरादून।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत जो मोहब्बत की खूबसूरती को संगमरमर की मजबूती और नज़ाकत से जोड़ता है। सच ही तो है, जब किसी के लिए दिल में सच्ची जगह बन जाती है तो रिश्ते किसी इमारत से कम नहीं होते, वे एहसासों से बनते हैं। प्यार की सबसे बड़ी पहचान शब्द नहीं बल्कि वह अपनापन है जो बिना कुछ कहे भी दिल तक पहुंच जाता है। और जब दिल में ऐसे ही खूबसूरत जज्बात तो उतरने लगते हैं तो हर धड़कन जैसे कविता बन जाती है और हर एहसास गुनगुनाने लगते हैं। बस कुछ ऐसा ही एहसास लिए हुए पेश करते हैं आपके लिए ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हॉलीडे से। और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर kg की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से और आपने ट्यून किया है 100.5 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं दिल की दुनिया भी कितनी दिलचस्प होती है ना, कभी एक मुस्कान पर ठहर जाती है तो कभी किसी की आहट से धड़कनें तेज़ होने लगती है। प्यार जब दिल में दस्तक देता है तो हर मौसम अपना सा लगने लगता है और हवाएं भी जैसे कोई मीठी सी धुन गुनगुनाने लगती है। ज़रा सोचिए क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या किसी खास की एक झलक ने पूरे दिन को खूबसूरत बना दिया हो? अगर हाँ तो अगला गीत शायद आप ही के लिए है। तो पहुंचा रहे हैं आप तक ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अशोका से अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई के युगल स्वर में। संगीतबद्ध किया है इस गीत को अनु मलिक ने और बोल है आनंद बख्शी के।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी अगर एक किताब है तो हर दिन उसका नया फसाना है। कभी खामोशी की चादर ओढ़ लेती है तो कभी मस्ती का रंग बिखेर जाती है। गम अगर पल भर के मेहमान है तो मुस्कुराहट हमारी पहचान होनी चाहिए। आइए कुछ देर सारी फिक्रों को हवा के हवाले कर देते हैं और दिल को मस्ती की धुन पर थिरकने देते हैं। तो श्रोताओं, अगला गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं फिल्म एक्शन रिप्ले से, जिसे अपनी आवाज़ों से संजोया है सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक ने। संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है कि उन्हें बड़ी बड़ी बातों की नहीं बल्कि छोटे छोटे एहसासों की ज़रूरत होती है। कभी एक मुस्कान, कभी एक खामोश नज़र, तो कभी बस किसी का साथ। और दिल कह उठता है कि यही तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मोहब्बत का भी हिसाब शब्दों से नहीं, एहसासों से होता है। कई बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ सच में सिर्फ इतनी सी ही बात में छुपी होती है, और कई बार हम इतनी सी ही बात को समझने में बेहद देरी कर देते हैं। तो आइए इन्हीं नाजुक जज्बातों को सुरों में महसूस करते हैं। तो पेश है फिल्म अजर का ये बेहद खूबसूरत गीत जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की युगल स्वरों में। संगीतबद्ध किया है इस गीत को प्रीतम ने और बोल है अमाल मलिक के।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, इश्क की अपनी ही अदा होती है, ये कभी शोर मचा कर नहीं आता, बस चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। नज़रों से बात होती है, मुस्कुराहटे राज कहती हैं और दिल बिना इजाज़त किसी का हो जाता है। कहते हैं मोहब्बत जितनी छुपाने की कोशिश करो उतनी ही आँखों से झलकने लगती है। बस इन्हीं मीठे एहसासों को शुरू में पिरोता हुआ अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव। और इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने, संगीतबद्ध किया है अदनान सामी ने और बोल हैं समीर के। तो आइए आप तक पहुंचा रहे हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ज़िंदगी का सफ़र हमेशा सीधी राहों से नहीं गुजरता। कभी ठोकरें मिलती है, कभी मुश्किल रास्ता रुकती है, और लेकिन जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना जानते हैं ना, मंजिलें भी उन्हीं का इंतज़ार करती है। हर नया सुबह एक नया हौसला लेकर आता है, और हर शाम यही सिखा जाती है कि सफ़र जारी रहना चाहिए। तो अगर आपके भी कुछ सपने हैं, कुछ मंजिलें हैं और दिल में आगे बढ़ने का जज्बा है, तो ये गीत आपके लिए है फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से।

श्रोताओं, सफ़र अगर ख्वाबों का हो तो रास्ते भी गीत गुनगुनाने लगते हैं। हौसलों के पंख जब फैलते हैं तो मंजिलें भी मुस्कुराने लगती है। ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना एक नई कहानी लिखता है और हर धड़कन जैसे कहती है चलते रहो, क्योंकि ठहरना ज़िंदगी की फितरन नहीं। तो अगला गीत आप तक हम पहुँचा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म बंटी और बबली से। गीत को अपनी आवाज़ें दी है उदित नारायण और सुनिधि चौहान ने, संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल हैं गुलजार के।

श्रोताओं, आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई किसी ना किसी की तरह बनने की कोशिश में, लेकिन जरा सोचिए, क्या अपनी असली पहचान से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, नदी अपने बहाव से, और इंसान अपनी सादगी, अपने स्वभाव और अपने असली यानी कि मौलिक व्यक्तित्व से। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। अपनी अच्छाइयों, अपने संस्कारों और अपनी मुस्कान को कभी मत बदलिए, क्योंकि दुनिया को आपकी नकल नहीं, आपकी असलियत की ज़रूरत है। तो श्रोताओं, आप तक पहुंचाते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के सफ़र में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म वीर ज़ारा से। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने, और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से लिखे जाते हैं। जहां दिल बोलता है वहां अल्फाज अक्सर खामोश हो जाते हैं। एक सच्चा रिश्ता श्रोताओं वही है जिसमें भरोसा धड़कनों की तरह चलता रहे, अपनापन सांसों की तरह साथ निभाए। कहते हैं दिल की जुबान सबसे सच्ची होती है, वो जो कह दे उसे वक्त भी नहीं बदल पाता। तो श्रोताओं, अगला गीत आप तक पहुँचा रहे हैं फिल्म धड़कन से। गीत को अपनी आवाज़ें दी है उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू ने। संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ बंधन ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वही सबसे मजबूत होते हैं। शायद दिल भी कभी कभी इन अदृश्य धागों से बन जाता है। तो अगला गीत हम आप तक

पहुंचा रहे हैं, जिससे हमने लिया है मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। अनु मलिक ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने। फिल्म का नाम है दम लगा के हाइशा।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीत का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इनके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। सप्ताहांत के दौरान कैंचीधाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विशेष यातायात और डायवर्जन योजना लागू की है। राज्य में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत आज और कल पौड़ी जिले के दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। चारधाम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सभी सड़कों का पुनर्निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

0: प्रशासन के अनुसार घटना में किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। वर्षा काल के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चंपावत में एसएसबी और एसडीआरएफ ने संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास किया और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I'm talking about upscaling. Upscaling के माध्यम से कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर समय और बजट खर्च करने के बजाय अपने मौजूदा कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर पैसे बचा सकती है। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारी अपनी नौकरी से गारंटीकृत वेतन और आरामदायक कार्यस्थल के माहौल से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी अब सशुल्क छुट्टियां, किफायती स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर प्रशिक्षण जैसे लाभों की उम्मीद करते हैं। कर्मचारियों को अपस्किल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके संगठन कर्मचारियों को ये संदेश देते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाता है और कंपनी के साथ उनका भविष्य समर्पित है। नौकरी की भूमिकाएं और उनकी आवश्यकताएं तेजी से बदल सकती हैं। कर्मचारी अपनी कंपनी में विकास के अधिक अवसरों की अपेक्षा करते हैं। ये कौशल अंतराल को कम करके किसी संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धित बनाने में सक्षम है। इससे कौशल अंतराल को भरने के लिए कंपनी के बाहर से भर्ती करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है, प्रेरणा, प्रदर्शन और मनोबल बढ़ता है। इससे कर्मचारियों की प्रतिधारणा क्षमता बढ़ती है। नियुक्तियों पर रोक और नौकरी बाजार में तंगी का मतलब है कि संगठनों को आवश्यक भूमिकाओं के लिए नई प्रतिभाओं को अपने यहाँ ही खोजना होगा, जो कि कौशल उन्नयन से संभव होता है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। spice.lamhe.vanilla। कौशल अंतराल की पहचान करें। अपस्किलिंग रणनीति विकसित करते समय कंपनियों को सबसे पहले अपने संगठन में मौजूद कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए। ये कदम व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके अपस्किलिंग प्रयास उनके कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप हो। इसके बाद कंपनियों को अपस्किलिंग प्रयासों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार में सबसे नए उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है। हालांकि ये विकास दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय की मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए एक संगठन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के लिए अपने मुख्य कौशल को कैसे सुधार सकता है। हालांकि उद्योग के रुझाने के साथ बन रहे और नई तकनीक का उपयोग करना अभी भी आवश्यक है, ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सके। एक बार कौशल अंतराल की पहचान हो जाने के बाद व्यवसाय उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निर्माण और चयन करना शुरू कर सकते हैं, जो उनके लिए सबसे अधिक सार्थक हो। ये कुछ कारकों को निर्धारित करता है, जैसे क्या वॉल्यूम प्रशिक्षण सत्र की आवश्यकता है या फिर एक पर एक पाठ अधिक लाभदायक होगा। क्या प्रशिक्षण आंतरिक रूप से किया जा सकता है या किसी बाहरी शैक्षणिक संस्थान को नियुक्त करने की आवश्यकता है। किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक सार्थक है, मार्गदर्शन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम। कौशल उन्नयन की योजना तैयार करना। दोस्तों, अब मैं आपको अपस्किलिंग के लाभ के बारे में बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। अपस्किलिंग में मौजूदा कर्मचारियों

नई नौकरी कौशल सिखाने में मदद मिलती है, कंपनी को नौकरी के आवेदकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है और कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जबकि अपस्किलिंग कार्यक्रम महंगा है, वे एक मजबूत बॉटम लाइन और निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। श्रमिकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण के अवसर बनाना अक्सर कार्यस्थल की समस्याओं को संबोधित करने की तुलना में कम खर्चीला होता है। निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने से कर्मचारी प्रतिधारण दर भी बढ़ती है, जिससे टर्नआउट कम होता है और भर्ती और ऑनबोर्डिंग लागत कम होती है। कर्मचारी जुड़ाव से सुधार करता है, संभवित और मौजूदा कर्मचारी अपने नौकरियों में पेशेवर विकास और प्रशिक्षण के अवसर चाहते हैं और वे ऐसी भूमिकाओं की तलाश करेंगे जो ये विकल्प प्रदान करती है। अपस्किलिंग इन कर्मचारी मांगों को पूरा करता है, जैसे कर्मचारी उत्पादकता को अनुकूलित करता है, कर्मचारी जुड़ाव में सुधार अंततः उत्पादकता बढ़ाता है। साथ ही अगर कर्मचारी उस तकनीक को नहीं समझते हैं जिसके साथ वे काम करते हैं तो वे अपनी नौकरी में उत्कृष्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्मचारियों को नई तकनीक में अपस्किलिंग करना उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के बीच अंतर आप समझेंगे आज के लंबे प्रोग्राम में चेतन के साथ। अपस्किलिंग का मतलब है मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कौशल प्रदान करना। ये नए कौशल किसी मौजूदा भूमिका को बेहतर बनाने या उसके विस्तार करने या किसी व्यक्ति के करियर पथ में अगले चरण के लिए योग्य बनने के लिए सीखा जाता है। अपस्किलिंग का एक उदाहरण एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो सकती है जो अपने डेवलपर्स को एक नई भाषा की प्रशिक्षण देती है जिसका उपयोग वे नए उत्पाद विकसित करने के लिए करेंगे। दूसरी ओर रीस्किलिंग का मतलब है किसी असंबंधित भूमिका के लिए नए कौशल सीखना या करियर में बदलाव करना। रीस्किलिंग के लिए अक्सर किसी कर्मचारी को किसी अलग क्षेत्र में डिग्री या प्रमाण प्राप्त करने के लिए कॉलेज या ट्रेनिंग में वापस जाना पड़ता है। रीस्किलिंग का एक उदाहरण है निर्माण श्रमिक हो सकता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए स्कूल वापस जाता है। अपस्किलिंग कर्मचारियों को उनके करियर में एक रेखिया पथ के लिए विकसित करती है, जबकि रीस्किलिंग का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के करियर के लिए पार्श्व आंदोलन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का कार्यक्रम अपस्किलिंग के बारे में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लंबे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ हों।

0: 107.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 107.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म अजनबी से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और बोल हैं समीर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में। गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने और फिल्म का नाम है आर्यन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म आ अब लौट चले से।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म आ अब लौट चले से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी अलका याग्निक ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म क्योंकि से, गीत को अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने, और बोल हैं समीर के।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी ही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2026 के तहत प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और रूपरेखा की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सहकारिता से समृद्धि थीम के अंतर्गत 29 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश भर में जन जागरूकता, किसान हित, महिला सशक्तिकरण और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने और सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में प्रयास तेज करने को भी कहा। चंपावत में वर्षा काल के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए SSB और SDRF ने संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास किया। टनकपुर के ठुलीगांड में आयोजित OPS अलर्ट एक्सरसाइज के तहत SDRF ने खोज एवं बचाव कार्यों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

0: संयुक्त अभ्यास के दौरान एसडीआरएफ ने आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों, खोज एवं बचाव तकनीकों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित निकालने, नदी और दुर्गम क्षेत्रों में बचाव कार्य तथा रस्सियों के माध्यम से सुरक्षित निकासी जैसी तकनीकों का भी अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ साथ आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर पेयजल निगम द्वारा दिन रात सड़क पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि सीवरेज कार्यों के कारण खोदी गई सभी सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी की जाए। इसके अनुपालन में केएफडब्ल्यू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना के तहत सड़क पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। परियोजना प्रबंधक निर्माण और अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मीनाक्षी मित्तल ने बताया कि 25 जून को पैकेज 1 और पैकेज 2 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 317 मीटर सड़क पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया। चमोली जिले के नारायणबगड़ मुख्य बाजार में अतिवृष्टि के बाद राहत बचाव और सफाई कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार घटना में किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। बुधवार देर रात हुई अतिवृष्टि के कारण देवकसकला गांव से मलबा नारायणबगड़ मुख्य बाजार में पहुंच गया, जिससे बाजार का एक हिस्सा प्रभावित हुआ। मलबे के कारण सड़क किनारे खड़े कुछ दोपहिया और चौपहिया वाहनों में मलबा भर गया तथा कुछ दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें मौके पर राहत और पुनर्स्थापन कार्य में जुटी हैं। मुख्य मार्गों से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है, ताकि यातायात और जनजीवन जल्द सामान्य हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निजी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान के साथ कृषि भूमि और फसलों को हुई क्षति का सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा सके। प्रशासन ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण पेयजल आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी, जिसे बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। चंपावत में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य तेजी से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में गणना प्रपत्रों के वितरण का 99.87% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त गणना प्रपत्रों के ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल प्राप्त प्रपत्रों से 86.34% का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैनपाल सिंह और साथियों की गाई रागिणी।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा।

0: हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में ये रागिणियाँ।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
3: मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे हैं रागिणी, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में रागिणी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हमने आपको सुनवाई रागिणी मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज में। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है आप सबकी फरमाइश का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन आपकी अपनी रेडियो सखी श्रुति शर्मा की ओर से। श्रोताओं, उमस भरी गर्मी, शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना इस गर्मी में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल गर्मी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में खूब पानी पिए, नींबू पानी पिए, नारियल पानी लें या ORS का घोल लेते रहें ताकि शरीर के लवण बने रहें। हल्के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और जो पसीने को सोख कर रखेंगे। कूलर या AC का इस्तेमाल करें। अगर पंखे के नीचे हैं तो खिड़की हल्की खुली रखें ताकि हवा का आगमन बना रहे। भारी या तला भुना खाने के बजाय मौसमी फल और हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा खाएं और सुनते रहें आकाशवाणी देहरादून के

कार्यक्रम का ये मैसेज है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा का। ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। और ये अगले श्रोता हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। हमारे श्रोता हैं ये हमें मैसेज कर रहे हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश चोहरी। ये फरमाइश आ रही है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की। इनके साथ है मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण और फनूदी बाई बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं संतोष नामदेव, अभय अनिल, अजीत ज्योति, अनीता संजना, रेखा भारती, पूर्वी रूही, अनु अनन्या, शक्ति भक्ति, आदर्श लवकुश और पूरा ही नामदेव परिवार। ये है मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ये अगली फरमाइश है योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया फरूखाबादी की। फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। ये अगली फरमाइश है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा सबिस्ता, पलक लुबना, यश मंसूरी, देवयानी बहना। और इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में आप सबके लिए।

कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश है। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह की ये फरमाइश आ रही है। हमारे पास लक्सर रोड, ग्राम सुवाहेड़ी, कस्बा पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोहेब, कहकशा और इनका पूरा ही परिवार फरमाइश कर रहा है। कार्यक्रम की ये फरमाइश है। कोल सिटी बरकलाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निम्मी शाहिनी और मोहम्मद अफजल मलिक की। चकला बाजार समाना शहर से हमें फरमाइश भेज रहे हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं। करताल तेलंगाना से जिला रंगारेड्डी से कानुगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और इनका पूरा ही परिवार इसे गीत को सुनना चाहते हैं। मुंबई से अनुबट जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा ये फरमाइश है। राजेश खन्ना, चिन्नी प्रकाश, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, उनकी अम्मी और प्यारा बिल्लू ये हैं तेलंगाना से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है। खालपारा मुजफ्फरनगर से शाहिना प्रवीण, फातिमा खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मशरूर अली की।

ये फरमाइश है विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से आप सब की फरमाइश पर शराबी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

स्वतः कार्यक्रम में ये फरमाइश हमारे पास आ रही है हरियाणा चौटाला से दारा सिंह, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा की। ये अगली फरमाइश है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आरिफ शेख की। श्री गणेश अभिका आठ श्री रामपुर से हैं, डी अशोक कुम्भार, अभिका जीविका, शानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, कोयली बस्ती पुनावले से हैं, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अभिका सोनवने और शायशा सोनवने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिहार स्टेट डुमराव से राजबली अंसारी, बेगम शबनम राज और आसमा राज। जेल रोड बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी पुफाली जिला यवतमाल से। कार्यक्रम में ये फरमाइश भेज रहे हैं इंदिरा बिहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्लू अंसारी। राजकोट गुजरात से हैं अजिता कुटरिया और गौरी या चौक अंबाला से हैं संदीप हिंगोड़िया और राकेश हिंगोड़िया।

0: सर से हैं राज एस डी वली अंसारी, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तेलंगाना चोटुपल से कस्तूरी रामडू, वुमा देवी, प्रभुति और नारायणा, इसी गीत के लिए फरमाइश आ रही है अनीउद्दीन, मुमताज, रियाज, बनहट्टी, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मारिया, हुमरा, सलमान और साइमा की। ये है कर्नाटका मलिंगापुर से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से गोपाल नाई और उमा महेश्वरी। ये फरमाइश है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की। ये हैं हमारे श्रोता मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी जी, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गंगलानी, जगमोहन, प्रजापति, किरण ठाकुर और शशि बल्ला जी। आप सबकी फरमाइश पर शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सबके लिए।
1: तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई।
0: इसी गीत को सुन रहे हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: अय्या।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: श्रोताओ, व्हाट्सएप फरमाइश में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राई, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। ये अगली फरमाइश है मोहम्मद रुकनुद्दीन मठाल, शब्बीर बनहट्टी, आशिफ इकबाल, ये हैं कर्नाटक गुलबर्गा से। कार्यक्रम में ये फरमाइश है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुकू और भाविका सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान, गंज टुंडवारा से। कार्यक्रम में ये फरमाइश टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से हैं बेगम अनुश्री प्रदीप, राजश्री और प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से हैं जानवी डोमिन, पिंकी और दिया डोमिन, डोंडी लोहारा से हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभा रानी, जेल रोड रायगढ़ से हैं उमा राज और जगदीश राज। कार्यक्रम की अगली फरमाइश फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आई है। ये फरमाइश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता की। ये फरमाइश हमारे पास पांडव कड़वा से है अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, अनुश्री बुराड़े और धनुश्री बुराड़े की। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, वंदना खट से और इनका पूरा ही परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सायान मंसूरी की, साथ में हैं जिशान मंसूरी। इसी गीत को सुन रहे हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से हैं ध्वनि और सानवी। ये फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशान प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की। ये हमें फरमाइश लगातार करते रहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हमें फरमाइश कर रहे हैं नर्मदा पार्क मंडलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। इसी गीत को सुनना चाहते हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बन्नी आरुष, शौर्य और दिनेश, ये हैं उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से, ये ऐसा लिख रहे हैं। और ये हैं हमारे श्रोता पौड़ी से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर हवस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये फरमाइश रामगंज खडवा मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हमें भेज रहे हैं। विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी सलोनी, अनय, अनाया और पेंटर बाबू। इसी गीत को सुन रहे हैं उत्तम कुमार भगत, देवी श्वेता भगत के श्रोताचु अर्णव आनंद और सत्यम पाकुड़ झारखंड से। कार्यक्रम की ये फरमाइश है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आशमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर की टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। लालपुर मरो छत्तीसगढ़ से ही हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव, शिया हर्षिता ध्रुव और निशांत ध्रुव की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं किशन बंजानी, नीलम स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और कृषु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से। अजीत नगर मलोट पंजाब से हमें फरमाइश भेज रहे हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनकदीप कौर। कार्यक्रम की ये फरमाइश है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू की। कृष्णा कॉलोनी हांसी से हमारे श्रोता हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिंगलानी और बबीता मिंगलानी। कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब, ग्राम कुमार एड़ा, सहारनपुर से। कार्यक्रम की ये फरमाइश है अगाड़ नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी, भूपेश दीपेश वर्मा की। इसी गीत को सुन रहे हैं हमारे श्रोता, ये हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, नई दिल्ली उत्तम नगर से हमें फरमाइश भेज रहे हैं मोहल्ला हलवाइन, शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। ये श्रोता हैं हमारे।

ये है मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद नुमान, फुरकान, जाकिर और फाइज। साथ में हैं एम ए वाहिद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद समीर, फूलो गांव नजीमाबाद तेलंगाना से हमें फरमाइश कर रहे हैं। ये श्रोता हमारे हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनु गुप्ता, और पिपरा बाजार झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रिया कुमारी साहू, रिया जिया, टूशी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश राव, बसंत लाल शाव, हीरा मोती और पन्ना लाल छाव। आप सबकी फरमाइश पर क्रांति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में आप सबके लिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये फरमाइश हमारे पास हमारे श्रोता भेज रहे हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलौकिक चंसोलिया इसी गीत को सुनना चाहते हैं। थिरोली अमरावती से सुनेना पवन भोंडे, तनुज पवन भोंडे, खांडवी बुल्ढाना से हैं दीपाली राम खाड़े, सुराज राम खाड़े, शिवाजी नगर वडाली देशमुख हैं, राजेश खोबरखेड़े हैं, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े, झकुली ताई खोबरखेड़े। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का यह अगला गीत होगा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। ग्राम झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बागर, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। कार्यक्रम की ये फरमाइश है आंध्र प्रदेश कोनसीमा जिला मोरी पोलम से पात्री श्रीनिवास राव और गंगा भवानी की। लाल कुर्ते रुड़ की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग सहारनपुर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। शांति निवास लेहगांव रेलवे कॉलोनी जिला अमरावती महाराष्ट्र से हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। सप्तरंग श्रोता परिवार से कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वधानी, ये हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं दिल्ली सिराहा मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाशी कुमार, आकाश कुमार, कृपा किसी और ये कह रहे हैं किसी भी गीत में हमारा नाम ले लीजिएगा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। कार्यक्रम की ये फरमाइश है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष साजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना की। ये फरमाइश है नबी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नावेद हसन की, सुहेल हसन साथ में, रशीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से, मुबीन अंसारी, इशरत परवीन की। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये है हमारे श्रोता मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी। ये फरमाइश है वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री की। जामा मस्जिद रोड गोगांव से हैं हाजी शाक लोलमानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। आप सबकी फरमाइश पर कारवां फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। इसी गीत को करणवीर हाउस भूचों केंचिया भटिंडा पंजाब से सुन रहे हैं परमे सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलिंदर सिमू एकम, दमन और अभिजोत। ये फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ, नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की।

श्रोताओ, कार्यक्रम की ये फरमाइश है हमारे पास फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर से एक नाजिया नासिर साजिद और शाहिद की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं श्रीमती गायत्री जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी अंशिका जोशी और कुमारी अंकित जोशी। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा की। ये फरमाइश है गुरिंदर सिंह पाधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनवीर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया की फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से। कार्यक्रम की ये फरमाइश है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं, जो हमें फरमाइश कर रहे हैं ये हैं मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी खत्री, मोहम्मद अदनान खत्री, आफिया राफिया खत्री। कार्यक्रम में ये फरमाइश है हमारे इन सब श्रोताओं की। ये हमें फरमाइश कर रहे हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से सब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन की। ये कार्यक्रम में अगले श्रोता हैं, ये हैं हमारे श्रोता सिद्दीकी रोशन, जिशान सिद्दीकी, वेशु अग्रवाल, ये हैं कैंट से मोहम्मद फुरकान जी भी इनके साथ हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह हैं। ये अगली फरमाइश है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा की, ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये अगली फरमाइश भेज रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। कार्यक्रम में ये हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। ये हमारे श्रोता रफत भाई साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबेराव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हमें फरमाइश कर रहे हैं। कुछ हमारे श्रोता लगातार मैसेज करते रहते हैं और उनके नाम आ चुके होते हैं। ये हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी और सुदेश चौहान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे कुछ और श्रोता हैं, ये हैं बेगम रूमा, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख महमूद कली, मोहम्मद आरिफ शेख, नाला सोपारा मुंबई से हैं। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण श्रेणिका और श्रेणिजा। आप सबकी फरमाइश पर आरजू फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओ, कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमारे पास है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो की। ताज मोरवा समस्तीपुर बिहार से हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री की। ये फरमाइश है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमार, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झाकी। इसी गीत को कलानौर से सुनना चाहते हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ये अगली फरमाइश नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद अलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद अरहाम, साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। कार्यक्रम की ये फरमाइश अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले की है। ये फरमाइश है ग्राम जखड़ गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल की। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। ग्राम कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप अनहद और उनका पोतरा गुरशबद। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जमादार गली सनावत से मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी खत्री, मोहम्मद अदनान खत्री, आफिया राफिया, मोहम्मद फारूक खत्री की। ये फरमाइश है नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया और पीहू और दीसा चौरसिया की। इसी के साथ ये फरमाइश कांजीपाड़ा आगरा से है श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और अबीर चौरसिया की। ये हमारे श्रोता हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत हमारे सब श्रोताओं के लिए।

फिल्म है शक्ति। इसी गीत को सुन रहे हैं मालियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन, साथ में हैं मास्टर जीबीएम जैन।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, अब आप सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यन, समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई।

0: पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Rubio also said the relationship between Prime Minister Modi and President Donald Trump is very close, adding that it is important for diplomacy. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force, hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned that violence would receive a military response. The U.S. Central Command sent

0: Com said. American forces targeted Iranian missile and drone storage sites, along with coastal radar installations. It said the strikes were carried out in response to what it described as an Iranian drone attack on a commercial cargo vessel traveling through the Strait of Hormuz. Mizoram has become the first among 16 states and 3 union territories to achieve 100% digitization of enumeration forms under the ongoing Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls 3 days ahead of the 28th June deadline set by the Election Commission of India. According to officials, Mizoram had over 5.59 lakh electors during the last SIR in 2005. The number has increased to more than 8.75 lakh voters in 2025, including over 4.23 lakh males and 4.51 lakh female electors. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority has facilitated the first commercial export of geographical indication GI tagged Rewa Sundarja mangoes from Madhya Pradesh to the United Arab Emirates. Commerce and Industry Ministry said that this is a significant step in promoting India's unique agricultural products in global markets. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi and in some parts of the Northeast India. In football, Egypt has reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramim Rezalian was named player of the match. In another Group G match, Belgium defeated New Zealand 5-1 to finish at the top of the group. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2026 के तहत उत्तराखंड में 29 जून से 6 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में इसकी तैयारियां और रूपरेखा पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उधम सिंह नगर में मेलाघाट, सिसैया और नारायण नगर जैसे सीमांत गांवों के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में खाद्य सुरक्षा के नए नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान वितरकों की समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके समाधान पर विचार किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में मिशन ग्रीन अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वर्षाकाल में अधिकाधिक पौधे लगाने का आह्वान किया गया। उत्तराखंड में कृषि और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इफको अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। नई दिल्ली में हुई बैठक में किसानों के हित में खेत बचाओ जीवन बचाओ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने पर चर्चा हुई। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को भूमि के बदले आवास आवंटित किए गए। पहले चरण में 4 आवासीय ब्लॉक सौंपे गए, जबकि जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंची। इनके पूरा होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद। चारधाम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में सीवरेज कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का काम तेज। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सभी सड़कों का पुनर्निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वर्षाकाल के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चंपावत में SSB और SDRF ने संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास किया। और प्रदेश में जल्द मानसून के पहुंचने की संभावना, आने वाले दिनों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट की उम्मीद। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:12 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं असलम साबरी और साथियों की गाई कव्वाली।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों की गाई कव्वाली। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:30 होने को है। अब पहने सुने कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, शुरू हो चुका है कार्यक्रम महिला जगत, जिसे लेकर आ चुकी हूँ मैं आपकी सखी अर्चना। बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी एक ही चीज़ की तलाश में हैं, और वो क्या है? वो है सुकून। हर कोई चाहता है कि उसका घर खुशियों से भरा रहे, रिश्तों में अपनापन बना रहे, मन शांत रहे और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन कभी ये सोचा है कि सुख आखिर मिलता कहाँ से है? क्या बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक बैलेंस ही सुख की गारंटी है? शायद नहीं। सुख तो छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है, रोज़मर्रा की उन बातों में छुपा होता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस ये काम हो जाए तो चैन से जिएंगे, बस थोड़ा सा और पैसा हो जाए तो खुश रहेंगे। लेकिन सच तो ये है बहनों कि जिंदगी कभी नहीं रुकती। एक काम पूरा होता है तो दूसरे की चिंता होने लगती है, इसलिए खुश रहने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है। तो बात करते हैं सुखमय जीवन जीने के कुछ नियमों की। तो पहला नियम है कि हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले एक बार खिड़की खोल के ताज़ी हवा लेनी चाहिए। उस ईश्वर या उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से हमें एक नया जीवन एक बार फिर मिला है। और यकीनन अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है। दूसरा नियम है कि हर बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। बहनों, दुनिया में हर कोई इंसान हमारी तारीफ तो करेगा नहीं, कोई बात समझेगा तो कोई नहीं समझेगा। अगर हम हर छोटी बात को दिल से लगाएंगे तो मन हमेशा भारी रहेगा। कई बार सबसे अच्छा जवाब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना होता है। तीसरा नियम, अपने शरीर का रखें ध्यान। हम अक्सर कहते हैं अभी टाइम कहाँ है, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है ना, तो समझ में आता है कि टाइम निकाल लेना चाहिए था। रोज़ थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, जितना हो सके घर का बना खाना खाना चाहिए और ढेर सारा पानी पीना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। और ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि दवाई से बेहतर है अच्छी दिनचर्या। चौथा नियम, तुलना नहीं करनी चाहिए। आज सोशल मीडिया के इस दौर में सबकी ज़िंदगी

बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की नई कार तो किसी का नया घर। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई कोई भी नहीं जानता, इसलिए अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। पांचवा और आखिरी नियम, खुद से दोस्ती। अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, अपनी खूबियों की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि खुद को बार बार दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन खुद को समझने से बहुत कुछ बदल सकता है। बहनों, सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे बाजार से खरीदा जा सके, वो तो हमारे व्यवहार में है, हमारी सोच में है और हमारी आदतों में है, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सुख हमारे अपने नज़रिए में है। तो आइए आज से एक छोटा सा वादा करते हैं कि कम शिकायतें करेंगे, ज़्यादा मुस्कुराएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, रिश्तों को समय देंगे और हर दिन को दिल से जिएंगे, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो बहनों, कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।
3: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
4: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
3: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
4: व्हाट्सएप 7895372936।
3: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
5: बहनों, वार्तालाप अपने आप में एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने में कई बार उम्र निकल जाती है। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है वार्तालाप की कला और वार्ताकार हैं डॉक्टर आरती सिसोदिया।
6: हमने बचपन से सुना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात पहली छाप आखिरी होती है। परंतु क्या केवल पहनावा, चेहरा या चाल ही यह पहली छाप बनाते हैं? नहीं, वह जो सबसे पहले सामने आता है और सबसे लंबे समय तक हमें प्रभावित करता है, वह है वार्तालाप, यानी हमारी बातचीत। बातचीत एक ऐसी कला है जिससे आप किसी व्यक्ति को सुनकर उसके विचारों तथा भावनाओं का ही नहीं, व्यक्तित्व का भी अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्तित्व केवल दिखावे या डिग्रियों का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रभावशाली व्यक्तित्व वह है जो तब सामने आता है जब हम बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम किसी विचार को साझा करते हैं। बातचीत वह सेतु है जो दो व्यक्तित्वों के बीच पुल बनाता है, विश्वास बनाता है और सबसे बढ़कर प्रभाव छोड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक अच्छा संवाद केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का प्रतिबिंब होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाहरी तौर पर सुंदर दिखने वाला शख्स की तुलना में साधारण व्यक्ति के चेहरे पर छाई मधुर मुस्कान, उसके व्यवहार में शिष्टाचार और बातचीत करने का सलीका हमारे दिलो दिमाग में एक खास पहचान बना लेता है। बातचीत केवल अपने को व्यक्त करने की कला नहीं, बल्कि दूसरे को समझने की कला है। और यह उस समय प्रभावशाली हो सकती है जबकि आप जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वह ठीक उसी ढंग से दूसरों के पास पहुंच सके और वे उसे समझ सके। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में दिया गया भाषण आज भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में शक्ति थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने जब छात्रों से मन की बात की तो वे केवल वैज्ञानिक नहीं रहे, वे एक मार्गदर्शक बन गए। महात्मा गांधी, जिनकी बातचीत में न कोई क्रोध था न ऊंचे स्वर, फिर भी उनके शब्दों ने देश को एक कर खड़ा कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से की गई प्रभावशाली बातचीत भारत के नागरिकों के लिए प्रेरणादायक ही नहीं है, वरन उनके नए एवं क्रांतिकारी विचारों द्वारा मार्गदर्शन कर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रही है। भारत के नागरिकों से अपनी बातचीत के माध्यम से जुड़ते हैं तथा उनसे विभिन्न विषयों पर सुझाव प्राप्त करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के शब्दों में मिठास हो और उनमें सच्चाई की धार भी हो तो वह कुछ भी कर सकते। बेन जॉनसन का कहना है, मेंस ट्रू फॉर्म इज रिवील्ड थ्रू स्पीच, अर्थात बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। प्रभावशाली बातचीत से न केवल आप अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, मानसिक सतर्कता, विचारों व व्यवहारों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस संदर्भ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। निसंदेह संसार में बुद्धिमता का आदर होता है, धन की चमत्कारी शक्ति से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। परंतु जिस व्यक्ति को बात करने का ढंग नहीं आता, जिसके पास कोमल, मधुर एवं सुसंस्कृत शब्दों का भंडार नहीं है, वह अनेक गुणों का स्वामी होते हुए भी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी नहीं बन सकता। लोग उसको पसंद करते हैं जिसके शब्दों में मधुरस हो, जिसकी बोली समय और स्थिति की पहचान कर सके और जिसकी बातचीत में दूसरों के लिए आदर भी हो और प्रशंसा भी, नम्रता भी हो और प्रोत्साहन भी। वही व्यक्ति व्यक्ति वास्तविकता में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, बोलने से पहले तीन बातों का ध्यान रखो, सत्य है या नहीं, प्रेम से भरा है या नहीं, और किसी के लिए उपयोगी है न या नहीं। प्रभावशाली बातचीत के लिए अनावश्यक बातों से हमेशा बचा जाना चाहिए। उतनी ही बात की जाए जितनी आपकी उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने व्यवसाय की बात करते करते घर की बातें करने लगते हैं। एक व्यक्ति की बात होगी और वे चार व्यक्तियों की कहानी सुनाने लगेंगे। इस प्रकार की व्यर्थ बातचीत का स्वभाव अधिक बातें करने से बनता है। शेक्सपियर हैमलेट में लिखते हैं, ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट, अर्थात संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा है। आवश्यकता से अधिक बात करने वालों को यह गुमान होने लगता है कि लोग उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, परंतु वास्तव में वह एक दिखावा होता है क्योंकि कोई उन्हें टोकना उचित नहीं समझता। जॉन मार्शल कहते हैं, टू लिसन वेल इज एज पावरफुल अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन एज टू टॉक वेल, अर्थात अच्छे से सुनना उतना ही प्रभावशाली संवाद है जितना कि अच्छे से बोलना। जो भी आपसे बातचीत कर रहा है उनके मन में यह इच्छा रहती है कि आप उनकी बातों पर ध्यान दें। यदि आप केवल अपनी ही कहेंगे तो वह प्रभावहीन रह जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी की कोई बात आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल सहज और कम शब्दों में प्रशंसा करें। सच्ची प्रशंसा कोई भी कभी भी भूल नहीं पाता। साथ ही अपनी बातें कहने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार एवं किस क्रम में अपने विचारों को रखना है, बोलने की गति, सुर, समय सीमा, सामयिक प्रसंग, ठहराव आदि सबका ध्यान रखना आवश्यक है। गलत स्थान पर ठहराव बात का संदेश बदल सकता है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सरल एवं स्पष्ट हो और सरलता से आपका संदेश सुनने वाले तक पहुंच जाए। आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं, दोनों में तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ने दुनिया की सबसे महंगी चीज इंसान को मुफ्त में दी है और वह है मुस्कान, जिसमें हम बड़ी कंजूसी करते हैं। बातचीत के दौरान एक मीठी सी मुस्कान ओढ़े रहिए, फिर आप एक प्रसन्नचित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होते चले जाएंगे। अपनी बातचीत अन्य व्यक्ति की पसंद, उसकी शिक्षण और स्वभाव के अनुसार भी होनी चाहिए। काव्य से प्रेम करने वाले व्यक्ति के सामने दर्शन शास्त्र की बातें करना भारी भूल है। इसी प्रकार कुछ लोगों को एक ही शब्द या एक ही वाक्य को बार बार दोहराने की आदत होती है, जिससे बातचीत सुनने वाला व्यक्ति अपना धैर्य होने लगता है। परिणाम स्वरूप बातचीत प्रभावहीन प्रतीत होती है। कई लोगों की आदत होती है कि वे सारी दुनिया को अपने में समेट लेते हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं तो पहले से जानता था, मैं तो हमेशा से कहता था आदि वाक्यों व मैं से बचें। दूसरों को भी सांस लेने की जगह दें। बातचीत के दौरान यह मैं शब्द स्वार्थी व विवादित बनाने का कारण बन सकता है। मैं को हम में बदलना बातचीत को अधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनाता है और वक्ता को प्रशंसा का पात्र बनाता है। साथ ही सकारात्मकता और प्रेरणादायक शब्द जैसे हम कर सकते हैं, आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है आदि बातचीत में लोगों को जोड़कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आज के समय में जहां हम टेक्स्ट मैसेज, इमोजी और छोटे छोटे शब्दों व छोटे छोटे वाक्यों, जिन्हें हम व्हाट्सएप की भाषा कहते हैं, इन सभी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, वहां सजीव, संवेदनशील और प्रभावशाली बातचीत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, पारिवारिक संबंध या सार्वजनिक मंच, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं। व्यक्तित्व केवल चेहरे की पहचान नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और शब्दों की प्रस्तुति है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, यही हमारे प्रभाव का मूल है। कोई बड़ी उपाधि नहीं बल्कि एक मधुर बातचीत ही व्यक्ति को यादगार और प्रभावशाली बना देती है। अंत में मैं ओलिवर वेंडल द्वारा कही गई इन पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम दूंगी। स्पीक क्लियरली इफ यू स्पीक एट ऑल, कार्व एवरी वर्ड बिफोर यू लेट इट फॉल। धन्यवाद।
5: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था वार्तालाप की कला, और वार्ताकार थी डॉक्टर आरती सिसोदिया। तो कार्यक्रम में बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
7: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: बहनों कहते हैं कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। माँ के स्वस्थ रहने से ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल, समय पर जांच और सुरक्षित प्रसव बेहद आवश्यक हैं। लेकिन कभी कभी जानकारी की कमी, आर्थिक कठिनाइयों या स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर पहुंच ना होने के कारण माँ

और शिशु दोनों को जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को कम करने और हर गर्भवती महिला को सम्मान एवं निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी गर्भवती महिला या नवजात शिशु केवल पैसों की कमी या स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं। इनमें गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच, ब्लड टेस्ट, जरूरी टीकाकरण, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, सुरक्षित प्रसव, दवाइयों और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह शामिल है। बच्चे के जन्म के बाद भी ये योजना माँ और नवजात बच्चे की देखभाल पर खास ध्यान देती है। नवजात की शुरुआती जांच, स्तनपान के बारे में सही जानकारी, मां के स्वास्थ्य की निगरानी और आवश्यक सलाह भी इस योजना का हिस्सा है। बहनों, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सिर्फ इलाज की बात नहीं करती, बल्कि सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करती है। हर गर्भवती महिला का हक है कि अस्पताल में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसे समय पर उचित इलाज मिले। और सुरक्षित मातृत्व भी केवल डॉक्टर या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें फैमिली यानी कि परिवार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर घर के सदस्य गर्भवती महिला की हेल्प करें, उसे पौष्टिक भोजन दें, समय पर जाँच के लिए हॉस्पिटल ले जाएं और उसे मानसिक रूप से खुश रखें, तो गर्भावस्था और अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बन सकती है। हमारे गांवों और शहरों में आशा कार्यकर्ता, ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं। वो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य की जानकारी देती हैं और सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करती हैं। बहनों, सरकार की कोई भी योजना तब सफल होती है जब उसकी जानकारी सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। अगर हमारे आसपास कोई महिला मां बनने वाली हो तो उसे सुमन योजना के बारे में जरूर बताना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि गर्भावस्था में थोड़ी सी सावधानी, समय पर जांच और सही उपचार मां और बच्चे दोनों का जीवन सुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ परिवार ही एक समृद्ध और मजबूत भारत की पहचान है। तो बहनों, कार्यक्रम में बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: बहनों, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी फुहारें और सुकून तो लाता है, लेकिन साथ में बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी लाता है। इस मौसम में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, चिपचिपापन और फ्रिजी हेयर जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं मॉनसून में बालों की देखभाल के कुछ आसान और असरदार ब्यूटी टिप्स। सबसे पहला टिप, स्कैल्प को साफ रखें। बरसात में नमी ज़्यादा होने की वजह से स्कैल्प पर पसीना और गंदगी जल्दी जमा हो जाते हैं, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को किसी माइल्ड या सल्फेट फ्री शैम्पू से धोना चाहिए, जिससे स्कैल्प साफ रहेगा और डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है वो भी कम होगी। दूसरा टिप, बारिश के पानी से बालों को बचाना चाहिए। अगर कभी बारिश में बाल भीग भी जाएं, तो घर पहुंचते ही साफ पानी से बालों को धोना चाहिए। बारिश के पानी में धूल और पॉल्यूशन के कण हो सकते हैं जो बालों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तीसरा टिप, बालों में, गीले बालों में कभी कंघी ना करें। गीले बाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ऐसे में ज़ोर से कंघी करने पर बाल टूटने लगते हैं। पहले बालों को हल्का सूखने दें, फिर चौड़े दांत वाली कंघी से धीरे धीरे बालों को सुलझाएं। चौथा टिप, तेल लगाना बिल्कुल भी बंद ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में तेल नहीं लगाना चाहिए, जबकि हल्की मात्रा में नारियल, बादाम या आर्गन ऑयल से हफ्ते में 1 से 2 बार हल्की मसाज से स्कैल्प को पोषण मिलता है। बस तेल लगाकर काफ़ी देर तक बालों में ना छोड़ें, आधे घंटे में तेल लगा के सर को धो दें। पांचवा टिप, हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। बार बार इनका इस्तेमाल बालों को रूखा कर सकता है, तो जहां तक संभव हो बालों को अपने आप सूखने दें नेचुरल तरीके से। और आखिर में एक छोटा सा सीक्रेट, हफ्ते में 1 बार दही, एलोवेरा जेल या बनाना हेयर मास्क बालों पर लगाने से बाल सॉफ्ट और शाइनी बने रहते हैं। तो बहनों,

इस मॉनसून अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपके बालों को हेल्दी, स्ट्रांग और खूबसूरत बनाए रख सकती है। तो बहनों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है कैपिटल लेटर्स में MJ, देना है स्पेस, लिखना है अपना नाम, देना है स्पेस, फिर लिखना है शहर का नाम, फिर से देना है स्पेस, उसके बाद अपना जो भी आपका सुझाव है या प्रतिक्रिया है, तारीफ है, शिकायत है, वो सब लिखना है और उसे भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आप हम तक पत्रों के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, और पिन कोड है 248001। और बाकी आपको पता ही है कि बुधवार के दिन हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम रेडियो सखी की रिकॉर्डिंग होती है, और रेडियो सखी में अगर आप अपने हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ करना है 1:30 से 2 बजे के बीच बुधवार के दिन हमारे इस नंबर पे कॉल। हमारा नंबर है 7088001382। और इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी सखी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:01 बजने को है। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला

0: इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री के कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज की। हरिद्वार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन। प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी और पर्यावरण बचाने का किया गया आह्वान। और पौड़ी में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। निर्वाचन टीम लगातार इस कार्य को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। जिले की विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन के कार्य ने खासी रफ्तार पकड़ी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि अब तक लगभग 90% के साथ कई पोलिंग बूथों पर 100% काम पूरा किया जा चुका है। पुरोला विधानसभा में सबसे तेज गति से काम होते हुए कुल 45 पोलिंग बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है, जबकि यमुनोत्री विधानसभा में अब तक 41 पोलिंग बूथ पूरी तरह डिजिटाइज हो चुके हैं। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में भी 18 पोलिंग बूथों पर 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन का काम हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य समय पर पूरा कर दिया जाएगा।
3: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का SIR का डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं SIR के बारे में। और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 1 महीने की रहेगी।
2: आगामी मानसून के दृष्टिगत चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नदियों के तटबंधों की सुरक्षा, सड़क मार्गों की निगरानी और राहत बचाव व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिले के सभी संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिंचाई विभाग शारदा नदी के प्रमुख तटबंधों को मजबूत करने में जुटा है, जबकि संबंधित विभागों और एजेंसियों को सड़कों से झाड़ियां हटाने, पुलियों की सफाई और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून अवधि में बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

0: पांच बैठ के मेरे स्तर से फीगे उसके जिसमें रहस्य समस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। चिन्हीकरण करने के उपरांत वहाँ के जो संसाधन है आवश्यक संसाधन उनका जो प्रबंधन है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। सारे जितने भी कन्वर्ट सड़कें जहाँ जहाँ पर साइनेजेस झाड़ियाँ ये सब है इनको साफ करना, कन्वर्टों को खोलना, झाड़ियों का कटान करना, इन सभी चीजों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जो घाट है संवेदनशील है आसपास के गांव है उनको भी जो है समय से सूचना प्रचारित प्रसारित करना ये सारी चीजें जो है की जा रही है।
1: देहरादून जिले की पांवटा साहिब सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोबाल ने कल पांवटा साहिब सीमा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और देहरादून आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से गुरुद्वारा पांवटा साहिब में निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी जारी है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे।
2: शिष्टमंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा निहंग साहिबानों के साथ में और मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी और ऑनरेबल CM सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजन।
1: वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्र सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
3: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: हरिद्वार जिले में कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में शुक्रवार को खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने किसानों से पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम कुमार ने मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खेती में अपनाने की सलाह दी। गोष्ठी में किसानों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने, रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद के उपयोग और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए जैविक खाद तैयार करने की विधियों की जानकारी दी गई। पौड़ी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान फल और रेहड़ी व्यवसायियों को अधिकाधिक क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने, उनकी प्रोफाइलिंग करने तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। लीड बैंक अधिकारी किशन सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे फल और रेहड़ी व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। सिटी मिशन मैनेजर जगदीश सतोड़ी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि पुनर्गठित योजना और स्वनिधि से समृद्ध योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 1 से 30 जून तक सभी निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित बैंक अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को सरल प्रक्रिया के तहत ऋण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण वितरित करने वाले बैंकों तथा योजना का सफलतापूर्वक लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले फल व्यवसाय को सम्मानित भी किया गया। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026-27 के तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह से अल्मोड़ा जिले में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के सोमनाथ मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के ARO कर्नल महेश कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी है। परिणाम जारी होने के तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सेना ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी

0: कर ली हैं। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अभ्यर्थियों के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थी भी रानीखेत के सोमनाथ मैदान में होने वाली शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा।
1: एआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले चार डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊ रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने प्लान किया है फिजिकल रैली का उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री के कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियां तेज की। हरिद्वार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन। प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी और पर्यावरण बचाने का किया गया आह्वान। और पौड़ी में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में फड़ और रेहड़ी व्यवसायियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जगजीत सिंह को अभी आप अर्थफिल्म में सुन रहे थे। संगीत दिया था जगजीत सिंह ने।
1: अब हमारे श्रोता जहां हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: आइए अब सुनते हैं डैडी फिल्म का गीत तलत अजीज और दिलनाज कौर की आवाज में। संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं मुदिता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे आसपास कई जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है, नशे की लत यानी मादक पदार्थों का एडिक्शन और उससे बाहर निकलने का रास्ता। श्रोताओं, किसी भी तरह का नशा एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, उसके परिवार, रिश्तों, पढ़ाई लिखाई, करियर, बल्कि उसके पूरे सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालता है। अक्सर नशा एक शौक या आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि लोग कब इस आदत के गुलाम हो जाते हैं। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये समस्या इतनी बड़ी है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून की तारीख को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत में आज के दिन को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम नशे की समस्या, उसके कारणों और प्रभावों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही उससे बाहर निकलने के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव गुप्ता, जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं और देहरादून स्थित मानवता साइकाइट्री और डी एडिक्शन सेंटर के संस्थापक हैं। ये उत्तराखंड का पहला डेडिकेटेड डी एडिक्शन सेंटर है जिसे एक साइकाइट्रिस्ट ने शुरू किया है। डॉक्टर ध्रुव, बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू मुदिता जी, मुझे मौका देने के लिए। मैं सब श्रोताओं को भी एक नमस्कार कहना चाहूंगा आज के दिन पर।
1: जी, तो डॉक्टर ध्रुव, सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये है कि नशे की लत, एडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? कैसे ये समझ आता है कि किसी इंसान को नशे की लत लग चुकी है?
2: देखिए, एडिक्शन या नशे की लत जो है, ये एक बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि एक विल पावर कम होने की वजह से है, या ये ऐसा नहीं है कि इंसान एक इजी तरीका ले रहा है कुछ चीज़ों से बचने के लिए। इसे बिल्कुल एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए, और जब हम इसको एक बीमारी के रूप में देखेंगे तो बहुत सरल तरीके से इसके इलाज की तरफ भी हम बढ़ेंगे।
1: जी, तो डॉक्टर ध्रुव, शुरुआत में कौन से साइन होते हैं ऐसे जिन पे गौर करना चाहिए कि आप नशे की लत की तरफ बढ़ रहे हैं?
2: ये चीज़ जो है, अगर हमें शक है कि हमारे जान पहचान में, हमारे परिवार में कोई एक इंसान है जो नशे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें शुरुआत में नोटिस करनी होती हैं, इससे पहले कि वो लत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। एक मेन चीज जो हम देखते हैं कि किसी भी इंसान का जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जो एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है, वो सब चेंज होता हुआ दिखाई देता है। एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान जो पहले बड़ा शांत था, वो अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाएगा। कोई एक रेगुलर परफॉर्मेंस जो थी इंसान की, वो सफर करने लग जाएगी। एक स्टूडेंट जो पहले पढ़ाई में अच्छा था, अब उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक कोई ऑफिस में जाता हुआ इंसान अब अपना काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो अपनी डेडलाइंस मिस कर रहा है, उसका बिहेवियर अपने आसपास के लोगों के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। तो कहीं ना कहीं इसमें हम देख सकते हैं कि हो सकता है नशे का योगदान हो, और उस चीज के लिए हम सबको जागरूक रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने घर में भी देखें तो आसपास में हम देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं कभी कभार ड्रिंक करते हैं, कभी कभार कोई नशा करते हैं, बट बहुत ज्यादा लत पड़ने से क्या होता है कि वही चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नशे की तरफ अपना सारा ध्यान, अपनी सारी रिसोर्सेज लगाना शुरू कर देते हैं, अपने घर को, परिवार को, अपने जॉब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नशे की तरफ ही उनका दिमाग ज्यादा जागरूक रहता है। और क्या चीज है कि धीमे धीमे करके नशे की मात्रा का बढ़ना, जो इंसान पहले कम नशा करता था, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, कोई इंसान पहले कभी कभार ड्रिंक करता था, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, महीने दो महीने में ड्रिंक कर रहा है, अब वो बहुत जल्दी करने लगा है, हफ्ते हफ्ते में करने लगा है, और इन चीजों को लेकर उसका जो नॉर्मल काम है, जैसे उन्होंने बताया, वो सफर कर रहा है। नशा ना करने पर उसे विड्रॉल सिम्टम हो रहे हैं, जो कि नशे की तलब होती है बहुत ज्यादा, उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिवर पर असर पड़ रहा है, मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें एक तरीके से बताती हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को अब एक डॉक्टर की जरूरत है, और एक प्रॉपर जो नशा मुक्ति का इलाज है उसकी तरफ जाने की जरूरत है।
1: जी, और जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर ध्रुव कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, लेकिन आम तौर पर धारणा जो है समाज में वो ये है कि नशा जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई समस्या है, और इट्स अ मैटर ऑफ रॉन्ग चॉइसेस, बिकॉज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इज अ चॉइस, ये आमतौर पर लोग मानते हैं। इसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को कुछ विस्तार से बताएं।
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जैसा आपने कहा ये एक चॉइस है, बट ये चॉइस अगर मैं मानूँ तो ये हाँ शुरू में बिल्कुल एक चॉइस होती है, बट एक बार कोई इंसान अगर नशे की लत में चला जाए तो फिर ये चॉइस नहीं रहती है, फिर नशा करना उस इंसान की कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। अगर वो नशा नहीं करता है तो उसके बॉडी में विड्रॉल सिम्टम होते हैं, एक तरीका का रिएक्शन होता है नशा ना मिलने पर। अलग अलग नशों के अलग अलग विड्रॉल सिम्टम होते हैं, बट कोई ना कोई चीज़ है जो कि उसको बार बार मजबूर करेगी वो ना चाहे तब भी, और इसी चीज को हमें समझना है तभी हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है। तो बिल्कुल रॉन्ग चॉइसेस हो सकती हैं जिन्होंने कि शुरू में उस व्यक्ति को नशे की राह पर धकेल दिया, बट उसी राह पर लगातार बने रहने के पीछे सिर्फ उसकी रॉन्ग चॉइसेस या सिर्फ उसका लैक ऑफ मोटिवेशन जो है उसको हम दोषी नहीं करार दे सकते हैं।
1: जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं रह जाता है जब वो इस आदत की, उसको जब लत लग जाती है, जब एडिक्शन जिसको हम कहते हैं। लेकिन डॉक्टर ध्रुव, क्या कारण होते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग नहीं भी होते हैं?
2: इसमें देखिए बहुत योगदान होता है एक इंसान के एनवायरनमेंट का, आसपास जो उसके पारिवारिक चीज़ें हैं उनका, साथ में एक मेंटल मेकअप जो है वो सबका अलग अलग होता है। कोई भी दो लोग एक सिचुएशन में सामान्य तरीके से नहीं बिहेव करते हैं, सेम नहीं उनका रिएक्शन होता है। इसी वजह से जो लोग नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वो शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आज इस राह पर नहीं होते हैं। जिस दिन उन्होंने नशा शुरू करा होगा या जब भी करा होगा, आई एम श्योर वो उस एक इंसान ने अकेले नहीं करा होगा, उसके साथ और भी लोग होंगे। कुछ लोग जो हैं वहीं रुक गए, कुछ लोग जो हैं उसके साथ आगे इस राह पे चले गए, जिस वजह से बाकी उनके शरीर और दिमाग पे भी अब असर पड़ रहा है।
1: जी, क्या स्ट्रेस, ट्रॉमा या किसी और तरह का मानसिक दबाव नशे की लत का कारण हो सकता है?
2: बिल्कुल, तनाव और ट्रॉमा नशे की लत को शुरुआत भी करा सकता है उसकी, और वो एक कारण ये भी बन सकता है कि एक बार नशा शुरू करा हुआ व्यक्ति अब उसे छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेंटली वो उस मेंटल फ्रेम में ही नहीं है कि वो कुछ समय लेकर ये नशा छोड़ पाए जिससे कि वो एक रिकवरी में ज्यादा समय तक रह पाए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, स्कूल और कॉलेजेस में हम

0: में ड्रग संबंधी बहुत से मामले देखने को मिलते हैं, और हम देखते हैं कि आमतौर पर बच्चे और युवा जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो उस उम्र में एक तो नई चीजें ट्राई करने का बड़ा शौक होता है, साथ ही कई बार पीयर प्रेशर होता है। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या कुछ और कारण भी होते हैं?
1: देखिए, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। अगर मैं एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हमारा ब्रेन के कुछ हिस्से हमारे ब्रेन के ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से विकसित और डेवलप नहीं होते हैं एक पर्टिकुलर एज तक। कुछ स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि 20-21 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। हाँ, काफ़ी कुछ मेच्योरिटी आ जाती है 17-18 साल पर, बट फुल मेच्योरिटी नहीं आ पाती है उसमें। तो उस वजह से सही और गलत की पहचान इंसान ठीक से नहीं कर पाता है। मे बी यही एक कारण है, जो कि आप देखिए सरकार ने काफ़ी रूल्स हैं, है ना, वोट करने की एज है,
0: जी
1: मैरिज शादी करने की एज है, वो सब 18 के बाद या 21 साल की उम्र में रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ ध्यान रख के करी हैं, क्योंकि इंसान एक सही निर्णय लेने के लिए उस एक सही मेंटल स्टेट में हो, वो निर्णय जो है सारी चीज़ सोच समझ के ले पाए। तो जैसे आपने मेंशन करा कि पीयर प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा नशा आजकल हो रहा है, तो वो इसी वजह से है कि वो सही और गलत की पहचान उनमें उस तरह से नहीं है इस उम्र में, और तभी उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है।
0: जी, तो ये तो हुई बात तो उस उम्र की जब आपको सही और गलत की पहचान नहीं होती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक अच्छा भला मेच्योर इंसान, एक परिपक्व व्यक्ति जिसको ये पता है कि किसी भी तरह के नशे की आदत नुकसानदेह है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों है? अभी जो हम आपने भी पहले कहा कि हम जो बात करते हैं कि इंसान की विल पावर, इन इच्छा शक्ति की, क्या वो काम नहीं कर पाती है ऐसे मामलों में? क्या लोगों के सोचने समझने या निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है इससे?
1: मैं इसका जवाब भी एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँगा। हमारे ब्रेन के अंदर ना एक सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं रिवॉर्ड पाथवे या रिवॉर्ड सर्किट। कोई भी अगर हम नशा करते हैं, नशे से वो चीज़ हाईजैक हो जाती है, तो इंसान ना चाहकर भी नशे से दूर नहीं रह पाता है, क्योंकि उसे वो थ्रिल, वो मज़ा जो एक बार उस नशे से मिल चुका है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता है। और कोई भी चीज़ है वो उसे उस तरीके से नहीं मोटिवेट करेगी जिस तरह से उसके ब्रेन को नशा हाईजैक करेगा। तो इसीलिए सब कुछ सोचते समझते हुए भी, हम अभी बात कर रहे थे कि कम उम्र में चलिए वो सोच समझ नहीं होती है, बट जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, इसीलिए हम इसे एक डिजीज़ कहते हैं, ये एक बीमारी है।
0: जी, तो क्या इस बीमारी यानी नशे की आदत को पूरी तरह छोड़ पाना मुमकिन है? और अगर ऐसा कोई करना चाहे तो उसके पास इलाज के क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
1: देखिए, पूरी तरह उसे छोड़ पाना ही एक हमारा एम होता है। अगर हम सोचें कि कोई इंसान कभी कभार नशा कर सकता है, वो ज़्यादातर केसेस में वो अप्रोच फेल हो जाती है, क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा नशे में डूब चुका है, वो एक स्टॉप करने का बटन उसके पास है ही नहीं उसके ब्रेन में। तो बेटर है कि उस चीज़ को पूरी तरह से स्टॉप करा जाए, ना कि हम उसे चांस दें कि आप कंट्रोल करके कभी कभार कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक मनोचिकित्सक के पास जाकर प्रॉपर कंसल्टेशन करने का, एक राय लेने का। किसी भी इलाज की शुरुआत एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से होती है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नशा मुक्ति का देने के लिए साइकाइट्रिस्ट इज द बेस्ट पर्सन।
0: जी, ये तो हुई साइकाइट्रिस्ट की बात, इसके अलावा काउंसलिंग कितनी जरूरी है और उसकी क्या भूमिका होती है?
1: काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा साइकाइट्रिस्ट का तो योगदान जो है वो शुरू के समय में ज्यादा है, क्योंकि शुरू में क्या होता है, कुछ जैसे विड्रॉल सिम्टम होते हैं, जो कि नशा ना करने पर नशे की जो तलब होती है, क्रेविंग होती है, उन सब चीजों को बढ़ाते हैं। तो साइकाइट्रिस्ट शुरू में दवाई देकर उन विड्रॉल सिम्टम को कम करते हैं, उस नशे की तलब को और तड़पन को कम करते हैं। एक बार ये चीज हो जाती है, इसको लगभग हफ्ता 10 दिन लगते हैं इस चीज को होने में। एक बार ये हो जाता है, उसके बाद मेन चैलेंज है कि नशे से दूर रहना लंबे समय तक। उस चीज के लिए कुछ एंटी क्रेविंग मेडिसिन होती हैं जो कि नशे की तलब को कम करती हैं, बट साथ ही साथ काउंसलिंग का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि काउंसलिंग उस मरीज को और उनकी फैमिली को सब बताते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर केस में नशे से दूर रखा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति के लिए एक रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बार बार रिलैप्स कर रहा है, बार बार नशे में जा रहा है, और किन चीज़ों का आगे ध्यान रखना है जो कि बिल्कुल हमें अवॉइड करनी है, जिस वजह से ये व्यक्ति दोबारा रिलैप्स ना करे।
0: जी, अच्छा डॉक्टर ध्रुव, क्योंकि आपका अपना एक डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, तो हम जानना चाहेंगे कि डी एडिक्शन या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
1: डी एडिक्शन प्रोग्राम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में शुरू में जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं, क्रेविंग होती है, उसको कंट्रोल करा जाता है दवाइयों से। कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि आमतौर पे देखे जाते हैं, जैसे मानसिक स्थिति का बिगड़ना, साइकोसिस होना, या फिर दौरे आना, सीजर्स, नींद ना आना, और बाकी लिवर के, किडनी के फंक्शंस बिगड़ना, जो कि नशे के उसमें बहुत कॉमन होता है। क्योंकि नशा जो है, देखिए, सिर्फ दिमाग पे तो असर नहीं कर रहा है, पूरे शरीर पे ही असर करता है, पूरे शरीर में ही गिरावट लाता है। तो उन सब चीज़ों को ठीक करा जाता है एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार ये चीज़ें ठीक होती हैं, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन का फेज शुरू होता है, जिसमें कि मेनली काउंसलिंग करी जाती है, सबसे पहले पेशेंट की और उसके बाद पेशेंट की फैमिली की। हर केस अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, और उसे एक उसी तरीके से डील करना चाहिए जो कि हम काउंसलिंग में करते हैं। एक चीज़ जो किसी एक इंसान को बताई जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वही स्ट्रैटेजी, वही चीज़ दूसरे इंसान में भी अप्लाई हो।
0: रिहैबिलिटेशन जब हो रहा होता है तो उसके दौरान क्या चुनौतियां आती हैं, पेशेंट के सामने क्या चुनौतियां होती हैं, और बतौर साइकाइट्रिस्ट आपके सामने क्या चुनौतियां होती हैं?
1: सबसे पहली चुनौती जो पेशेंट के सामने और जो उसकी फैमिली के सामने होती है, वो होती है इस चीज को अपनाना। अगर उन्होंने अपनी इस बीमारी को, अपनी समस्या को अपना लिया है, तो मैं पेशेंट से कहता हूँ कि हमारा आधा काम तो हो ही गया है। उसके बाद बड़ा आसान होता है उस चीज को आगे ठीक करना, क्योंकि वो लोग जो हैं वो खुद से ठीक होना चाहते हैं, और जब आप खुद से ठीक होना चाहें तो काउंसलिंग के, थेरेपीज के, मेडिसिन के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। साइकेट्रिस्ट के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं, सबसे पहले कोई कॉम्प्लिकेशन ना आना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पहले से है तो उसका ठीक से मैनेजमेंट करना। उसके अलावा पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर, अगर वो इतना समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को, तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले उनको समझाना।
0: जी, तो जैसा आपने बोला डॉक्टर साहब कि सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप एक एडिक्ट हैं या आपके परिवार में कोई एडिक्ट है, और लेकिन ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि लोगों में एक शर्म, एक झिझक होती है इस चीज को लेकर। तो क्या बिना अपनी पहचान बताए भी मदद ली जा सकती है?
1: बिल्कुल, बिना अपनी पहचान बताए हुए भी मदद ली जा सकती है। इसके लिए जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वो पेशेंट की सारी जानकारी है उसको गुप्त रखते हैं, आमतौर पर शेयर नहीं करी जाती है वो कहीं भी। बाकी कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पर आप कॉल करके बिना अपनी पहचान बताए आप हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन आप काउंसलिंग ले सकते हैं। और आई एम श्योर अगर कहीं भी आप जाकर किसी भी डॉक्टर से या कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी पहचान ना रिवील हो, तो हर एक केयर गिवर उस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
0: जी, तो ये शायद श्रोताओं को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है कि आप किसी भी डॉक्टर या कहीं पर भी अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो आपकी पहचान रिवील नहीं की जाती है, वो गुप्त रखी जाती है। एक और सवाल डॉक्टर ध्रुव कि क्या बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के भी इससे बाहर निकला जा सकता है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग आर्थिक तौर पर इलाज का खर्च उठाने में समर्थ नहीं होते, तो उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं जहां उन्हें कम खर्च में या बिना किसी खर्च के मदद मिल सकती है?
1: अगर कोई बहुत ही शुरुआत में हो, जिसने कि अभी अभी नशा करना शुरू करा है, तो उस केस में, बहुत ही माइल्ड केसेस में, बिना एक एक्सपर्ट राय के, बिना एक डॉक्टर के पास जाए हुए भी इंसान नशे से बाहर निकल सकता है। क्योंकि शुरू शुरू में बॉडी को भी, शरीर को उतनी आदत नहीं लगती है, उतने विड्रॉल सिम्टम नहीं आते हैं, तो इंसान अगर चाहे अपने विल पावर से तो बिल्कुल नशे से बाहर निकल सकता है। बाद में ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है और इसके में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, उनके लिए सरकार ने काफ़ी डी एडिक्शन सेंटर, काफ़ी नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करे हुए हैं। अगर हम उत्तराखंड, देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है सेलाकुई में, डून हॉस्पिटल हैं, ये सब बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम है जो कि नशा मुक्ति में हेल्प करेगी मरीज की। इसके अलावा आप देखिए, हमारे राज्य में एम्स है ऋषिकेश में
0: जी।
1: अगर कोई केस जिसको हमें हायर सेंटर रेफर करने की ज़रूरत होती है, जिसे एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, एम्स में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है पेशेंट्स को, और वो भी निःशुल्क है।
0: जी अजरक साहब, अभी आप क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली और उन्हें कैसे हैंडल किया जाना चाहिए?
1: हर नशे के विड्रॉल सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब मैं कुछ जो बहुत कॉमन नशे हैं उनके आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम बताता हूँ। जैसे अगर हम अल्कोहल देखें, शराब से रिलेटेड विड्रॉल सिम्टम आमतौर पर जो देखे जाते हैं वो होता है शराब ना पीने पर हाथों में कंपन, जबान लड़खड़ाना, बेचैनी बहुत ज़्यादा होना, पसीना आना, शराब के बिना नींद ना आ पाना। अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो इसे हम डिलीरियम कह देते हैं, डिलीरियम में क्या होता है, इंसान का मानसिक संतुलन

0: बिगड़ जाता है। उसे कुछ हेलुसिनेशन होने लगते हैं, आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वो लोग दिखाई देने लगते हैं जो आसपास नहीं है उसके, और उस वजह से ये लोग कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं इनमें। अगर हम ओपियोइड्स की बात करें, जैसे कि स्मैक इत्यादि, इसमें जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो होते हैं आंख नाक से पानी आना, बदन दर्द होना, पेट खराब होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद ना आना, और कभी कभी रेयर केसेस में दौरे भी आना। कैनबिस, सुल्फा, गांजा, भांग, इस सब का विड्रॉल बाकी नशों के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये शरीर पे कम असर डालता है, दिमाग पे ज़्यादा असर डालता है। तो इसमें क्रेविंग जो है मेनली साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि नशे की बहुत स्ट्रांग तलब होना, नशा ना मिलने पर बेचैनी, चिड़चिड़ापन होना। बट सुल्फा, गांजा, भांग, कैनबिस लेने से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो बाकी नशों में उतनी नहीं होती है। तो साइकोसिस, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन लोगों में।
1: जी, और इन विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए?
0: अगर विड्रॉल सिम्टम्स बहुत हल्के हैं और बिल्कुल शुरुआती के दिन हैं तो ये आमतौर पर खुद से ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा इंसान को उस चीज़ को टॉलरेट करना पड़ता है, थोड़ा झेलना पड़ता है, बट धीमे धीमे करके खुद से ठीक हो जाते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में ये विड्रॉल सिम्टम्स सिवियर होते हैं, हल्के नहीं होते हैं। उस केस में अर्जेंटली एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है।
1: जी, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो एक बार अपनी इस आदत से निजात पा लेता है, पूरी तरह से नशे को वो छोड़ देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से इसकी चपेट में आ जाता है। इस रिलैप्स के क्या कारण होते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: रिलैप्स के कई कारण होते हैं और हर इंसान में ही अलग होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान हमें यही सब चीज़ें देखनी होती हैं और इसी हिसाब से हर व्यक्ति का एक अलग ट्रीटमेंट प्लान बनता है। तो जो सबसे कॉमन कारण होते हैं वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा तनाव, टेंशन होना। ये तनाव टेंशन इंसान के घर पे हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर जो हैं उनसे कोई स्ट्रेस का कारण हो सकता है, या फिर उनके जॉब पर, काम पर कभी कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि इंसान को बार बार नशे की तरफ धकेलते रहते हैं, तो हम लोगों से कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से आप दूरी बनाए रखें, जो कि आपको पता है कि एक्चुअल आपके दोस्त हैं नहीं, वो सिर्फ आपसे नशा करने के लिए आपसे दोस्ती कर रहे हैं। इसके अलावा एक क्रेविंग जो होती है इंसान के अंदर खुद से जो आती है, उसको कम करने के लिए हम मेडिसिंस देते हैं जो एंटी क्रेविंग मेडिसिंस होती हैं, जो धीमे धीमे करके मन में नशे के प्रति इच्छा को कम करती हैं।
1: जी, अच्छा, अभी आपने बात की क्योंकि परिवार के सदस्यों की, दोस्तों की, तो कई बार क्या होता है कि वो मदद करना चाहते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके परिवार में या उसके आसपास उसका कोई करीबी नशे की लत का शिकार हो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो कैसे मदद कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ बताएं, और साथ ही जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है इसमें, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे और युवा इसकी चपेट में काफी दिखाई देते हैं हमको।
0: मदद करने में सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो स्टिग्मा है ये हमें हटाना है अपने दिमाग से और दूसरों के दिमाग से। हम दूसरे की मदद तभी कर पाएंगे जब हम ये समझें कि ये एक बीमारी है। तो बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो उस व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं, उसकी निंदा ना करें, उसको एक तरीके से जो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है उससे दूर रखें। और आप कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और उसके परिवार वाले समझे। अगर आपने एक ये छोटा सा काम कर दिया तो ही आपने उस नशे से पीड़ित व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मदद कर दी है। स्कूल्स, कॉलेजेस में ये चीज़ ध्यान रखने की है कि टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको ज़रा सा भी शक हो कि कोई बच्चा नशा कर रहा है, वो भी उसके पेरेंट्स को सबसे पहले बात बताएं और वो फिर साइकेट्रिस्ट से या डॉक्टर से, किसी से भी कंसल्ट करें इस नशे के लिए। इस चीज़ को छोड़ ना दें, इस चीज़ को इग्नोर ना कर दें, इसको स्टिग्मा भी ना बनाएं कि कोई उस बच्चे से बात ना करे, उस बच्चे को आप दूर कर दें हर चीज़ से। ऐसा नहीं करना है आपको, और उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना है। उस बच्चे से अलग से बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा है जो आपका शक है वो सही है या नहीं, और अगर ये सही है तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये बच्चा अभी नशा कर रहा है, और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व करके।
1: डॉक्टर जी, अभी आप क्योंकि स्टिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि नशे के आदी व्यक्ति को जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा होता है तो उस दौरान एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो है सोशल स्टिग्मा, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। तो क्योंकि एडिक्शन को हमारा समाज जो है वो आमतौर पर नैतिक रूप से गलत मानता है, या फिर उसे एक व्यक्ति की विफलता के तौर पर देखा जाता है, उसे एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर आमतौर पर लोग नहीं देखते हैं। इसलिए एडिक्ट्स के पास कोई जाना नहीं चाहता, उनसे लोग दूरी बनाना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इस आदत से पूरी तरह बाहर आने के बाद भी, यानी कि जो डी एडिक्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, उनसे भी लोग दूरी बनाकर रखते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, लोग उनके साथ काम करना नहीं चाहते। तो आपने क्या देखा है रिहेबिलिटेशन के दौरान या फिर उसके बाद, क्या वो लोग इससे प्रभावित होते हैं, और इस स्टिग्मा को खत्म करने के लिए समाज के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, ऐसा बहुत देखा जाता है कि ठीक होने के बाद भी ये लोग स्टिग्मा का शिकार रहते हैं कई साल तक, और कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही स्टिग्मा में बिता देते हैं। इसको हटाने के लिए अगर आपको समाज में कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर लाना होता है। हर इंसान को ये जानना चाहिए कि ये एक बीमारी है, ये वैसे ही एक बीमारी है जैसे बीपी की परेशानी हो, शुगर हो, थायरॉयड हो, कोई फ्रैक्चर हो, उसका भी तो इलाज आप डॉक्टर से कराते हैं, उसकी भी तो आप मेडिसिन लेते हैं, ऐसे इंसान को तो आप समाज से दूर नहीं करते। तो फिर जो इंसान कोई एडिक्शन में है, कुछ नशा पहले कर रहा था, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो ऐसे इंसान को आप क्यों समाज से दूर कर रहे हैं?
1: तो अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे सुनने वालों को नशे की लत से उबरने के बारे में उम्मीद का अगर कोई एक संदेश ये देना चाहें तो वो क्या होगा?
0: मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत आपसे होती है, आप ही से समाज बनता है, पहले अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, और अगर आपको ज़रा सा भी शक हो किसी पर, या आपको लगे कि खुद भी आप किसी नशे के शिकार हैं या धीमे धीमे करके हो रहे हैं, तो मदद लेने में लेट ना करें। जितना जल्दी मदद लेंगे उतना जल्दी उस चीज़ का समाधान होगा, और उतना आसानी से उस चीज़ का समाधान होगा। वेट ना करें कि ये बीमारी बढ़ जाए, ये ना वेट करें कि ये बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाए, जिससे आगे आपकी तो हेल्थ में परेशानी आएगी, साथ ही साथ आपका जो परिवार है, परिवार भी इसकी चपेट में ना आ जाए।
1: जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही डॉक्टर ध्रुव, कि अगर आपको लगता है कि आप नशे की लत के शिकार हो रहे हैं तो मदद लेने में संकोच ना करें, मदद लेने में देर ना करें। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ध्रुव स्टूडियो में आने और इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, डॉक्टर ध्रुव से बात करने के अलावा हमने ऐसे एक व्यक्ति से भी बात की जो पहले एक एडिक्ट थे, लेकिन आज उस आदत से बाहर निकलकर पूरी तरह ठीक होकर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम उनका नाम और पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं शराब का आदी था, मुझे एडिक्शन शराब की थी, और तब मुझे जिंदगी में ये नहीं पता चलता था कि नर्क और स्वर्ग होता क्या है। जैसे ही मैं शराब के नशे में होता था तो मुझे जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, अपनी मन मर्जी करता था, बट मुझे नहीं पता था कि वही शराब मुझे अंदर से खा रही है। शराब की वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया था, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए थे, मेरी समाज में इज्जत घट चुकी थी, मैं बहुत परेशान था, मुझे भूख नहीं लगती थी, और जब तक मैं शराब का सेवन नहीं करता था तब तक मेरे हाथ बहुत कांपते थे। और जैसे ही मुझे डी एडिक्शन सेंटर के बारे में पता चला, मैंने अपनी हिम्मत बांधी और मैं डी एडिक्शन सेंटर गया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी असली क्या होती है। शुरुआत में बहुत कठिन दौर रहे, भूख ना लगना, हाथ कांपने, बेचैनी रहना, मन ना लगना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक कड़ी परिश्रम के बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया, सारी बुरी चीज़ें छोड़ी, दवाइयों ने बहुत अच्छे से असर किया, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे पलट गई कि जैसे मानो मैंने आज तक जितने भी बुरे कर्म किए हों वो मैंने सब पीछे छोड़ दिए हों। मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप किसी बुरी लत में हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, बट भूख से, भक्ति से और परिवार के नशे से बढ़ के कोई नशा नहीं है। आप इस चीज को अगर छोड़ देंगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आपको फिर सारी चीजें स्वर्ग की तरह दिखेंगी, आपके दिमाग में कोई भी फालतू की टेंशन नहीं आएगी। मैं सबसे आशा करता हूं कि सब अपनी जिंदगी को सफल बनाएं और सुखी बनाएं। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि एडिक्शन या नशे की लत एक गंभीर समस्या तो है, लेकिन सही जानकारी, समय पर सहायता और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही परिवार और करीबियों का साथ हो तो इस आदत से बाहर निकलना संभव है। अगर आपका कोई करीबी या आप खुद इसका शिकार हैं तो सही जानकारी और मदद के साथ आज से ही बदलाव की शुरुआत कीजिए। ये बदलाव न केवल आपके लिए बल्कि आपके अपनों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे यानी मुदिता और आकाशवाणी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, याद रखिएगा, आज अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार करीब में आप सुनेंगे संगीतकार आरडी बर्मन पर जानकारी और उनके गाए गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a 3-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. More from our correspondent.
5: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
4: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its

0: ഗന്ധ സാത് നാട്ടകൾ ആൻഡ് മുന്നതടെ മുദ്രിച്ചു. ഹി ബിഗാൻ ഹിസ് കരിയർ ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ 16 വയതിനാൽ. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സി ജോസഫ് വിജയ്, ഡി എം കെ ചീഫ് ആൻഡ് ഫോമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എം കെ സ്റ്റാലിൻ വർ അമംഗ് ദോസ് ഹു പെയ്ഡ് ഫ്ലോറൽ ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആക്ടർ. ദ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂണറൽ ഇൻ ചെന്നൈ ടുമോറോ. ദി ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിൽ ട്രെയിനിംഗ് ഷിപ്പ് ഐ എൻ എസ് സുദർശിനി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ പോർട്ട് ഓഫ് Baltimore in Maryland, USA yesterday as part of the landmark Transoceanic Expedition Lokayan 26. During its stay, the ship will undertake maritime engagement and community outreach activities ahead of the SAIL 250 Maryland celebrations commemorating the 250th anniversary of the United States. Counter Intelligence Kashmir CIK carried out raids at several locations across the valley today as part of an investigation under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. Officials said the searches were conducted at five locations across four districts including Srinagar, Ganderbal, Kupwara and Anantnag. The raids are linked to an investigation into a case registered in 2023 at the Joint Interrogation Center of the Counter Intelligence Kashmir Police Station. Officials said the searches were still underway when the latest reports came in. The death toll in the Taratala building collapse in Kolkata has risen to 17. Relief and rescue operations are underway with the Army, NDRF, Railways, Civil Defence, SDRF and other agencies working together at the site. The injured are undergoing treatment at SSKM Hospital in Kolkata. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force, hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned that violence would receive a military response. The U.S. Central Command, CENTCOM, said American forces targeted Iranian missile and drone storage sites, along with coastal radar installations. It said the strikes were carried out in response to what it described as an Iranian drone attack on a commercial cargo vessel traveling through the Strait of Hormuz. The Democratic Republic of the Congo has reported more than 1,200 confirmed cases of Ebola since the outbreak was declared in mid-May. According to the latest figures from the country's public health authorities, there have been 1,203 confirmed cases, including 321 deaths. So far, 148 patients have recovered, while 419 remain in isolation or are receiving hospital treatment. Health officials have also identified 265 suspected cases, including 77 deaths. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said, contact tracing is reaching more people and that increasing numbers of patients are recovering and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
6: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
6: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
7: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
8: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी सैनिक साथियों को जय हिंद। सैनिक साथियों, कुछ व्यक्ति केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज ऐसे ही वीर सैनिक की बात फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऐसे ही महान वीर थे जिनकी बहादुरी, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। सच्चा सैनिक वो नहीं होता जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से करोड़ों लोगों का विश्वास जीत लेता है। सैम मानेकशॉ ने अपने पूरे जीवन में यही संदेश दिया है। उनके जीवन में साहस, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना थी और अपने कर्तव्यों का पालन उसी समर्पण के साथ करते रहे।

श्रोताओ, शैम मानिक शॉ का पूरा नाम था होरमुजी फ्रेमजी जमशेद जी मानिक शॉ। आपका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। आपके पिता का नाम है डॉक्टर होरमुजी मानिक शॉ और माता थी हीराबाई मानिक शॉ। आप पारसी धर्म को मानते थे। आप भारत के सबसे महान सैन्य अधिकारियों में से एक थे। उन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने और 1971 के युद्ध में उनके नेतृत्व ने भारत की ऐतिहासिक विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैम मानिक शॉ ने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से प्राप्त की। इसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के प्रथम बैच के कैडेटों में शामिल हुए और 1934 में वे भारतीय सेना में अधिकारी बने। सैम मानिक शॉ अपनी स्पष्टवादिता, नेतृत्व क्षमता, साहस और हास्य बोध के लिए प्रसिद्ध थे। वे सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और उनके साथ ही उन्हें सैम बहादुर के नाम से सम्मान पूर्वक पुकारा करते थे। भारतीय सेना के इतिहास के सबसे प्रेरणादायक सैन्य अधिकारियों में आपका नाम लिया जाता है। आपके नेतृत्व, दूरदर्शिता और देशभक्ति ने भारत की सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। आपके विषय में अभी बहुत सी बातें हैं, पर पहले सुनवाते हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ, जो उन पर सटीक बैठता है, एक प्यारा सा गीत।

फील्ड मार्शल मानेकशॉ 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पहले दल में शामिल थे। उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन में नियुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वे 8वीं गोरखा राइफल में फिर से नियुक्त हुए। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध और हैदराबाद संकट के दौरान मानेकशॉ को योजना बनाने की भूमिका सौंपी गई। उन्हें सैन्य अभियान निदेशालय में सेवा के दौरान ब्रिगेडियर पद पर भी प्रोन्नत किया गया। वह 1952 में 167वें इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर बने और 1954 तक उन्होंने इस पद पर रहने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने सेना मुख्यालय में सैन्य प्रशिक्षण के निदेशक का पदभार भी संभाला। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में उच्च कमांड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें 26वें इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में भी काम किया। 1963 में मानेकशॉ को सेना कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें पश्चिमी कमान संभालने को दी गई। मानेकशॉ पहले से ही डिवीजन सैन्य कोर सैन्य और क्षेत्रीय स्तरों पर सैनिकों की कमान संभालने के बाद 1969 में सेना के 7वें प्रमुख बने। उनके कमान के तहत भारतीय सेनाओं ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी अभियान चलाया। वे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहते थे और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए वो अपने सैनिकों के बीच में बहुत फेमस थे।

वे अनुशासन को सेना की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और स्वयं भी उसका पालन करते थे। विनम उनकी इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी वे सरल और सहज स्वभाव के रहे। सैम मानेकशॉ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने भारत की प्रतिष्ठा विश्वभर में बढ़ाई वो थी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश मानवीय संकट उत्पन्न हुआ था और लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उस समय सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि युद्ध तभी शुरू किया जाएगा जब सेना पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उनकी रणनीति और धैर्य ने निर्णायक भूमिका निभाई। जब युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय सेना ने केवल 13 दिनों में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक माना जाता है। इस विजय के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और विश्व स्तर पर भारत की सैन्य क्षमता और नेतृत्व और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1971 के युद्ध में सैम मानेकशॉ का नेतृत्व दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल भारत के सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। इस विजय ने भारत का सम्मान और प्रभाव विश्व भर में बढ़ाया और उन्हें सैम बहादुर के रूप में अमर कर दिया।

फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उनके उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व और वीरता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार दिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस दिया गया, तो वहीं राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में उनके अद्वितीय नेतृत्व और योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना का सर्वोच्च मानद सैन्य पदक इस पद को प्राप्त करने वाले वे भारत के पहले सेना अधिकारी भी बने। उन्हें मिला फील्ड मार्शल का पद। इन सम्मानों ने सैम मानेकशॉ को भारत के सबसे सम्मानित सैन्य नेताओं में स्थान दिलाया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ केवल एक महान सैनिक ही नहीं बल्कि साहस, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल रहे। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सही निर्णय, दृढ़ संकल्प और देश के प्रति समर्पण किसी भी राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना हर भारतीय का वचन होना चाहिए अपने देश के प्रति। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान भी होगा।

श्रोताओ, जब जब भारत के वीरों का इतिहास लिखा जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनकी वीरता और देशभक्ति सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। इसी के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी सैनिक साथी सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए तराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। सिलसिला ही ना होता तो कोई गिला भी ना होता, सिलसिला ही ना होता तो कोई गिला भी ना होता, या तो वो मिल गया होता या फिर मिला ही ना होता। आइए आपको सुनवाते हैं मैं वापस आऊंगा फिल्म का ये गीत दीपाली सहाय की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान का संगीत।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: दिल में अब भी रहते हैं वो, दिल से उतरते तो अच्छा रहेगा। वो कहते हैं अब फिर कभी ना मिलेंगे, अब वो इसी बात से ना मुकरे तो अच्छा रहेगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी प्यारी बिंदु फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है परिणीति चोपड़ा ने। कैसर मुनीर के बोल हैं और सचिन जिगर का संगीत।

तुम्हारी नजर का जादू दिल को बेकरार कर जाता है, तुम्हारी नजर का जादू दिल को बेकरार कर जाता है, तुम्हारी सादगी पे ये दिल हर बार हार जाता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बॉर्डर टू फिल्म का गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमारी की आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल हैं और विशाल मिश्रा का संगीत।

काश तुम पूछो सुकून कहाँ है, काश तुम पूछो कि सुकून कहाँ है, और हम निगाहें उठाकर तुम्हें देखें। आइए अब आपको सुनवाते हैं बधाई दो फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और रूपाली मोघा की आवाज में। वरुण ग्रोवर के बोल हैं और अमित त्रिवेदी का संगीत।

मेट्रो इन दिनों फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मातृभूमि फिल्म से, जिसे आवाज दी है नितिन निहाल तोरू और अनकोना मुखर्जी ने। समीर अंजाना के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत। कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं, कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं, हमें सताने के तुम्हें तरीके बेहिसाब आते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत स्त्री टू फिल्म से वरुण जैन शिल्पा राव की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और सचिन जिगर का संगीत। बात इतनी सी थी कि तुम मुझे अच्छे लगे थे, बात इतनी सी थी कि तुम मुझे अच्छे लगे थे, अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम बिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

तुम्हारे बिना हर शाम अधूरी है, हर खुशी जैसे कहीं दूर खड़ी है। तुम्हारे बिना हर शाम अधूरी है, हर खुशी जैसे कहीं दूर खड़ी है। घर की हर चीज़ वही है, मगर तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं लगता, ये घर घर नहीं लगता। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म का गीत, बन्नी और सागर की आवाज़ में। शब्द रचना सागर की है और हनी बन्नी का संगीत है।

डंकी फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं योद्धा फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में। कुणाल वर्मा के बोल हैं और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

लाल सिंह चड्ढा फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह के साथ हैं श्रेया घोषाल, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। एक नज़र में कितनी बातें कह जाते हैं, एक नज़र में कितनी बातें कह जाते हैं, बिन बोले भी ये रिश्ते निभा जाते हैं। दो नैनों के पेचीदा से गलियारे में दिल ठहर गया है तुम्हारे एक इशारे में।

और अब आज के कार्यक्रम का समापन गीत बवाल फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है लक्ष कपूर, आकाशदीप और सुवर्णा तिवारी ने। कैसर मुनीर के बोल हैं और आकाशदीप सेन गुप्ता का संगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत गाने नए तराने। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग से मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक विषयों, उत्तराखंड के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पौड़ी जिले में आगामी श्रावण कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में मासिक स्टाफ बैठक हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की प्रगति, कानून व्यवस्था, राजस्व, न्यायिक और विकास कार्यों सहित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग व अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर मसूरी में नशामुक्त भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रदेश में कल 0 से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। चंपावत जिले में 269 पोलियो बूथों पर 27,301 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 29 और 30 जून को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी। इसी क्रम में रामघाट और कश्यप घाट क्षेत्रों में फैले कूड़ा कचरे को एकत्र कर उसके उचित निस्तारण के लिए नगर निगम को सौंपा गया। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं निवेदिता घोष से राग भीम पलासी में सितार वादन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत निवेदिता घोष से राग भीम पलासी में सितार वादन। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 4:30 हुए हैं।

श्रोताओं, आज के कलाकार हैं संगीत जगत के महान संगीतकार आरडी बर्मन के जन्मदिन का। आरडी बर्मन भारतीय सिनेमा के सबसे क्रांतिकारी और प्रभावशाली संगीतकारों में से एक थे। उन्हें संगीत जगत में प्यार से पंचमदा कहा जाता था। उन्होंने भारतीय संगीत में वेस्टर्न, रॉक, जैज और लैटिन धुनों को मिलाकर एक नए दौर की शुरुआत की थी। आरडी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता एसडी बर्मन यानी सचिव देव बर्मन अपने जमाने के दिग्गज संगीतकार थे और माता मीरा बर्मन भी एक गीतकार थी। कहा जाता है कि बचपन से ही जब वो रोते थे तो वे पांचवें सुर यानी पंचम सुर प जैसी ध्वनि लगती थी उनकी आवाज में, इसलिए अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया। आइए उनके विषय में आगे भी बातें करते रहेंगे, पर अभी सुनाते हैं उनकी फिल्म का ये पहला गीत। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था। फिल्म थी छोटे नवाब।

श्रोताओं, कोलकाता में जन्मे राहुल देव बर्मन ने शुरुआती शिक्षा बालीगंज हाई स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद उस्ताद अली अकबर खां से उन्होंने सरोद भी सीखा। इनके पिता सचिन देव बर्मन, जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, बचपन से ही आरडी बर्मन को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। केवल 9 बरस की उम्र में इन्होंने अपना पहला संगीत ए मेरी टोपी पलटके को दिया, जिसे फिल्म फंटूश में इनके पिता ने इस्तेमाल किया। छोटी सी उम्र में पंचमदा ने सरजु तेरा चकराए की धुन भी तैयार की, जिसे गुरुदत्त ने अपनी फिल्म प्यासा में लिया। इनके द्वारा बनाए गए संगीत उनके पिता एसडी बर्मन के संगीत की शैली से काफी अलग थे। आरडी बर्मन हिंदुस्तानी के साथ पाश्चात्य संगीत का भी मिश्रण करते थे, जिससे भारतीय संगीत को एक अलग पहचान मिलती थी। लेकिन उनके पिता सचिन देव बर्मन को पाश्चात्य संगीत का मिश्रण रास नहीं आता था। आरडी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में शुरू की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपने करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई सफल संगीत दिए, जिसे उन्होंने फिल्मों में भी प्रयोग किया। आरडी बर्मन केवल संगीतकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे गायक भी थे। उनकी आवाज में एक अलग अंदाज और ऊर्जा थी। उन्होंने कुछ गीतों को अपनी आवाज देकर उन्हें खास पहचान दी। उनके गाए हुए गीतों में उनकी रचनात्मक सोच और प्रयोग की झलक साफ दिखलाई देती है। उनकी आवाज का इस्तेमाल अक्सर ऐसे गीतों में हुआ जिसमें एक अलग भाव, मस्ती या अनोखापन था। इससे पता चलता है कि वे संगीत को केवल बनाने वाले नहीं थे बल्कि महसूस करने वाले कलाकार थे। तो आइए, उन्हीं की आवाज से सजा उनका साथ दिया है आशा भोसले ने अपना देश फिल्म का ये गीत अब आपको सुनवाते हैं।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है।

श्रोताओ, आर डी बर्मन ने 1960 के दशक में हिंदी फिल्मी संगीत में कदम रखा और अपनी नई धुनों, पश्चिमी संगीत के प्रयोग, ताल और आधुनिक वाद्य संयोजन के कारण एक अलग पहचान बनाई। उनकी पहली बड़ी सफलतम फिल्म थी तीसरी मंजिल। शोले, अमर प्रेम, यादों की बारात, आंधी, 1942 और लव स्टोरी, जीवा, अपना देश, सनी, सत्ते पे सत्ता, छोटे नवाब, ऐसी अनगिनत 300 फिल्में के करीब उन्होंने संगीत दिया और उसमें से कई ऐसी फिल्में भी थी जिसमें हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं की फिल्में भी अगर जोड़ लें तो 350 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, अपना संगीत दिया। उनका करियर 1960 के दशक से 1990 के शुरुआती वर्षों तक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। उनकी धुनों पर किशोर कुमार की आवाज़ काफ़ी सुंदर लगती थी, तो आइए उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत जिसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोता आरडी बर्मन को अपने करियर में 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का पुरस्कार मिला। सनम तेरी कसम, मासूम और 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के लिए फिल्म फेयर में उनके सम्मान में नए संगीतकारों के लिए आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट की शुरुआत भी की। 54 वर्ष की अल्पायु में 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। श्रोताओं, कई लोग उनके विषय में विचार रखते हैं कि आरडी बर्मन ऐसे संगीतकार थे जो गायक की आवाज़ और क्षमता को समझकर धुन बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके गीतों में ताजगी, प्रयोग और भावनाओं की गहराई थी, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय हैं। नए संगीतकारों के लिए आरडी बर्मन एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने संगीत, भारतीय संगीत में नए प्रयोग करने का साहस दिखाया। उनके गीत खुशी, प्यार, दर्द और जीवन के अलग अलग भावों को छूते हैं, इसीलिए वे हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। आइए एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म है जीवा।

श्रोता, उनकी आखिरी फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का संगीत उनके निधन के बाद रिलीज हुआ। इसे उनका सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। श्रोता, हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी धुनों से सजे गीतों को हम रोज सुनते हैं। उनकी ये धुनें आवाज सदा यूं ही गूंजती रहेगी और आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा भी देती रहेगी, क्योंकि पंचमदा का संगीत केवल धुन नहीं बल्कि भावनाओं की आवाज था। उनकी हर रचना में एक नई सोच, नई ऊर्जा और दिल को छू लेने वाली मिठास है। उन्होंने सुरों से ऐसा संसार बनाया जो समय के साथ कभी पुराना नहीं हुआ। आज भी उनके गीत लोगों के दिलों में उसी प्यार और सम्मान के साथ जीवित हैं। चलते चलते आपको सुनवाते हैं उनकी आखिरी धुन से सजा हुआ फिल्म का ये गीत। फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का एक कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज के कलाकार थे आरडी बर्मन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 5 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 मेगाहर्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं और इस समय हम आपके लिए लाते हैं जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम विवरण में।

पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा श्रोताओ, सायं के 5:45 और ग्राम जगत में आज डॉक्टर सोहन लाल भट्ट प्रस्तुत करेंगे गढ़वार्ता। वार्ता का विषय होगा पहाड़ माँ कुटीर और लघु उद्योगों की संभावना। सायं के 7 हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत में आज प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम हेलो लोकमंचरी।

श्रोताओं, साय के 7:40 पर आप सबका मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और RNU देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम योजना संवाद आप सुन सकते हैं साय के 7:50 पर।

कल्पना पंकज और रमेश चंद्रा के साथ सुन सकते हैं आप अपना आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें आपकी शिकायतें, आपकी फरमाइशें, आपकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित पत्रों को हम शामिल करते हैं कार्यक्रम। आपका पत्र मिला, इसका समय रहेगा रात्रि के 8 बजे, और रात्रि के 8:15 पर अनूप घोषाल से भजन सुन सकते हैं आप कार्यक्रम सुगम संगीत में।

श्रोताओ, रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा श्रोताओ, और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात्रि के 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का प्रसारण होगा। उसी के साथ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि के 10:00। अब एक नज़र डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर श्रोताओ। कल सवेरे आप भूले बिसरे गीत में सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीत, प्रातः 7:10 पर, और 7:30 पर राकेश सिंह सुनाएंगे गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम शैल संगीत में। सवेरे के 10:35 पर तीजन भाई और साथियों से पांडवानी सुनेंगे आप कार्यक्रम लोक संगीत में, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ मन की बात साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम संस्कृत में प्रस्तुत किया जाएगा और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। समय रहेगा सवेरे के 11:00। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
1: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण

0: जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए, और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
1: यस।
0: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
1: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे, और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद है क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं।

0: सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए में मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हों?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है। देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
2: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
2: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
2: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
2: कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
2: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
2: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
2: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि से मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है? तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
2: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
2: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं,
0: हाँ,
2: उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
2: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
2: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
2: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में,
2: अंबिकापुर
0: में।

0: देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
0: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
1: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी हो, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहे, कंपास देना चाहे, इस तरह की चीजों पे भी कुछ।
0: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
1: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
0: उसके रैपर
1: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
0: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों में एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
0: जापान कोरिया यहां से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी, इसकी
1: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:30:16 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे युवा श्रोताओं के साथ उनका मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ, युवाणी में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, अतुल्या रावत। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी एस्पायर योजना के बारे में सुना है? एस्पायर का पूरा नाम है अ स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना है और नए उद्योगों की स्थापना में सहायता करना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके तहत बिजनेस इंक्यूबेटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाते हैं, जहां युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान की जाती है। यदि आपके पास कोई नया व्यवसाय विचार है या आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एस्पायर योजना आपके लिए एक बेहद सुंदर अवसर हो सकता है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने सपनों को नया आयाम देना चाहते हैं, तो एस्पायर योजना का लाभ जरूर उठाएं। और इसी के साथ हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं गीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, जिसे आवाज दी है मित्राज ने।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।
3: यार बीबी MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
4: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्था।
3: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
4: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
3: और परिणाम?
4: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
3: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
5: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
6: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
7: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
6: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
8: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
3: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
4: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्था।
3: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
4: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
3: और परिणाम?
4: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
3: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
9: दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताऊंगी जो बेटियों के तकनीकी शिक्षा के सपनों को नई उड़ान देती है। जी हाँ, इस योजना का नाम है AICTE प्रगति स्कीम। AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रगति स्कीम। इसका उद्देश्य देश की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दोस्तों, इस योजना के तहत AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों में डिग्री या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राएं छात्रवृत्ति दी जाती है। ये सहायता उन परिवारों की बेटियों के लिए है जिन्हें आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्रगति स्कीम का उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग देना नहीं है दोस्तों, बल्कि अधिक से अधिक छात्राओं को इंजीनियरिंग, तकनीकी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी है। और इसके लिए आप NSP पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट, कॉलेज ID आदि अपलोड करें। यदि आप या आपके परिवार की कोई बेटी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो इस योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से आप इस स्कीम का लाभ जरूर उठाएं। ये छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। और इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म मुंजा से, आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों, आज यानी कि 27 जून को है MSMI दिवस, जो हर वर्ष आज ही के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। दोस्तों, ये क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा भी देता है और देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। एमएसएमई उद्यम न केवल बड़े उद्यमों को सहयोग देता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, मशीन निर्माण, सेवा क्षेत्र और अनेक छोटे व्यवसाय श्रेणी में आते हैं और भारत सरकार की इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से वो उसे वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंचने का माध्यम उपलब्ध कराती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई नया विचार, कौशल या व्यवसाय शुरू करने का कोई सपना है तो MSME क्षेत्र आपके लिए अनेक अवसर लेकर आया है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में छोटे छोटे उद्योगों का बड़ा योगदान है और आइए MSME दिवस के अवसर पर हम अपने स्थानीय उद्यमों का समर्थन करें और देश की प्रगति में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। और इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत फिल्म स्काई फोर्स से, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना और अब कार्यक्रम में समय हो चला है, तो हमें कार्यक्रम को समाप्त भी करना पड़ेगा। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें खत लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, हमारा खत लिखने का पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा, निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट ट्रस्ट पनापुल, और हमारा पिन कोड है 2480001। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे अतुल्य रावत को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साया के 5:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सभ्य सुनदारों तय विनय ध्यान छोड़ बटी की नमस्कार से वसोंगी
1: डगड़ामा आशना कंडियाल नेगी की तरफ से भी आप सभी सुंदरों थे नमस्कार सिमनिया पहला प्रणाम और स्वागत करदा हम आप सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम में।
0: तो स्वागत है साहब जनकि एक दा पहल भी हो गया आप भी कहना आपका स्वागत है और स्वागत यहाँ खातिर करना हम कि हमारा सभी सुनदारा टक लगा हमारे कार्यक्रम सुनला हमारे दगड़ राला तो हम तो भी भल लागल के लेके हुंगरा पुराण अखण कोई तो चैन अब आपस में हम उंगरा पुराना रहना पता नहीं चलो पल छोड़ वो मौ सुननी भी चाहिए कि ना सुनता चन हमारा भेबंदी बत और खास करी कि जो लोग घर दफ्तर बटे इना उना जाना रहने वो जरूर बोल देना हम तो कि साहब हम बेखुंदा घोर आन बगत आप कार्यक्रम सुनता छे तो आज टक लगा सुनना अपन के लगे आज एक वार्ता हम लेके आया छुआ पहाड़ में कुटीर और लघु उद्योगों की संभावना वार्ता प्रस्तुत कार्यालय डॉक्टर सोहनलाल भट्ट और ये वार्ता किला
1: किले की आज हम MSME दिवस मनाना चा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी छे और आज को जो विषय भी वार्ता को छे वो भी महत्वपूर्ण छे तो हम उम्मीद कर ला आप सभी लोग टक लगा के अपना रेडियो कागने या अपना मोबाइल कागने या अपना स्टीरियो से पट्ट करी की चिपकी की वार्ता जरूर सुन ला
0: और आजक दिन पर तमाम यानी कुल मिला की जो उद्योग विभाग छे जिम्मेदार विभाग छे योजना का खातिर लघु और सूक्ष्म उद्योगों की कल्पना भारत जनो विकसित देश जैता कि बनान च हमल वही का खातिर बहुत जरूरी मैंने जानो कि बहुत बड़ा बड़ा उद्योग तो कखी हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ छा अगर खास करके हम पहाड़ की बात करें तो वह बहुत बड़ा बड़ा उद्योगों की हम सोच भी नहीं सकते
1: जी।
0: लेकिन छोटा छोटा लघु और जो सूक्ष्म उद्योग छन उनते अगर मजबूती दिए जा तो वखा की आर्थिकी वखा का लोगों की आजीविका दोयों में बहुत बड़ो परिवर्तन
1: किले की ध्यानी जी अब समय की मांग भी छे अब क्या का भीतर बुद्ध है ना नौकरी कन भी मुश्किल छे और मिलती भी नहीं छे अब नौकरी
0: कख कख पे मिलन है एक तरफ हम जनसंख्या की बात कर दा तो इधर हो गया तो बड़ी मुश्किल छे और सभी नौकर रालत मालिक केल
1: मालिक केल रोलो तो यही व्यवस्था MSME स्कीम छे ये का भीतर आप लोगों थे प्रोत्साहन दिए जान दो छे कि आप अपना उद्योग तो शुरू कर सकदा और कई हमारी अगर खास करी कि हम देखा स्वयं सहायता समूह की जो हमारी जनना छिन ना वो ये दिशा में बहुत सुंदर काम करनी छिन छोटा छोटा उद्योग शुरू करी की और एक बड़ो लाभ वो लेनी छिन
0: और इन्हीं योजना का जितना भी और घटक छन ना जखमा के हम चर्चा करना छो पिछले कई सालों से वो जो स्टार्टअप है ना स्किल इंडिया ये कुछ इना अभियान छन जो से कि हम MSME थे बहुत तेजी से एथर बढ़ा सकते और ये का ही समानांतर आप अभी भी देख लो कि प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना को भी संचालन करे जाने वो यहाँ खातिर कि अगर ठीक हमने छोटी इकाई उद्योग के लगाया तो हम वे तो एथर बढ़ा सकना लेकिन कतेदाई नहीं हूं कि हम वे में उतना कुशल नहीं हुंदा तो वे का खातिर भी बहुत सारी योजना चल रही
1: है बिल्कुल बिल्कुल और यू सभी योजनाओं को लाभ हम थे लेन बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते तो देखा अगर आप खुद से तो नहीं कर सकता कम से कम दो तीन लोग तो आप चढ़ना चाहिए तो आप भी स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहे एक तरीका से तो ये दिशा में बहुत अच्छो कदम छे और हम वही बोल रहे कि लोग भाई अपना काम सबसे ज्यादा जरूरी छे
0: और जिनके हम पहले बोल छा कि एक से दुई दुई से बीस बीस से 200 हो सकते अगर आप कोई एक छोटू उद्योग लगाना चाहें तो उखमा आप और यूं भी रोजगार दे सकते हैं और एक भली पहल हो ली तो सभी जितना भी युवा व्यवसायी छन छोटा उद्योगपति छन उन्हें आज का ये दिन पर बहुत बहुत शुभकामना और अब कार्यक्रम में कुछ मनोरंजन करे छा सा
1: जी हाँ कार्यक्रम में एक गीत आपसे सुनाना छा तो श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत अब कर दा सुंदर सी गढ़वाली लोकगीत का साथ स्वर्च प्रीतम भरतवाण और सीमा को

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
5: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
6: यार 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
5: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून। 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
7: सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेमनगर देहरादून। सफलता के कदम सुभारती के साथ।
8: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा।
9: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार
8: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
9: व्हाट्सएप 7895372936।
8: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
10: रेबार और गीत का बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम ग्राम जगत में। और उम्मीद है आप सभी श्रोता सुनना छा, हम तक जुड़ना छा, तो ये वास्ता आप हम तय चिट्ठी लिख भेजा चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर।
11: उम्मीद है कि भी प्यारा दिन आप लोगों की नई चिट्ठी, नई मतलब जो पुराना श्रोता छन उक्त नई चिट्ठी उन्हें, लेकिन जो नए श्रोता छन हम तक जरूर लिखाला। और अब कार्यक्रम में बात करना फिर हुई पहाड़ में कुटीर और लघु उद्योगों की संभावना, ये विषय पर सुना डॉक्टर सोहन लाल भट्ट की यह गढ़वाल वार्ता।
12: उत्तराखंड हिमालय का गांव से लोगों को निरंतर शहर में पलायन होनो चा, यहाँ को मुख्य कारण युवाओं को शिक्षित होने का बावजूद रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं छना। जो कुछ युवा कर्मठ एवं स्वस्थ हृष्ट पुष्ट होना न, वो भी भारतीय सेना में भर्ती हो ही जाना न। कुछ स्किल्ड युवा बड़ा महानगरों में व्हाइट कॉलर जॉब की खोज में बाहर चली जाना न। गांव में वृद्ध एवं महिला ही रही जाना न, क्योंकि युवा लोग रोजगार एवं बच्चों की अच्छी शिक्षा का कारण पलायन करी देना न। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पलायन लगातार बढ़ी गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यातायात, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा का अभाव का कारण लोगों को पलायन जारी छ। पौड़ी जनपद का कई गाँव आज भी घोस्ट विलेज घोषित हुई गए न। यद्यपि सरकार को पलायन आयोग से ये संदर्भ में भी प्रयासरत छ, स्कूली शिक्षा व चिकित्सालयों में डॉक्टरों की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का माध्यम से शहरों की कनेक्टिविटी पर कार्य करनी छ। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में गढ़वाल मंडल का शहर देहरादून एवं कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी जैसा बड़ा शहर में पलायन एवं बसाहट जारी छ। उत्तराखंड का लोग ईमानदार, मेहनतकश छन। यख तीर्थस्थल, नदियाँ, ग्लेशियर, कुंड, ताल, फूलों की घाटियाँ छन। वन संपदा एवं वन्य फल फूलों की कोई कमी नहीं छ। जल शक्ति को अपार भंडार छ। तथापि यख आर्थिकी उतना समुन्नत नहीं छ। कारण यह की प्राकृतिक नैसर्गिक संपदा यह का निवासियों का हित में विकसित नहीं हो सकी। कारण कि सरकारी योजनाओं का प्रति ग्रामीणों की अवहेलना, उदासीनता एवं जोखिम नहीं उठाने की आदत प्रमुख छन। उत्तराखंड राज्य स्थापना का बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुई, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन आज भी जारी छ। अब बात करदा कि पहाड़ मा, गाँव मा कुटीर एवं लघु उद्योगों की क्या संभावनाएं छन। पर्वतीय क्षेत्र मा विशेष रूप से यदि ग्रामीणों की आय संसाधन का रूप मा वन संपदा एवं वनों से प्राप्त फल फूल कन्नों से प्राप्त आय प्राप्त कर सकेंद। वनौषधि को दोहन करी का छोटा छोटा कुटीर उद्योग स्थापित हो ही सकदा न। जनों की काफल की बात करिए जाओ तो ये फलसण एकत्रीकरण करी का 100 से 200 रुपये प्रति किलो बिक्रय व निश्चित वजन का पैकेट तैयार करी का नज़दीक का बाजारों में बिक्री हो ही सकदा। पैकेजिंग का वास्ता छोटा स्तर पर मशीन से कागज का छोटा छोटा बॉक्स डिब्बा बनाई का सप्लाई करी का ग्रामीणों की अच्छी आय हो ही सकदी। आंवला भी पर्वतीय क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाएंगे। आंवला एकत्रीकरण का बाद च्यवनप्राश की छोटी इकाई स्थापित कर सकेंगे। आंवला चूर्ण आयुर्वेदिक दवाई में उपयोग होंगी। आंवला अचार की पैकेजिंग छोटा लघु उद्योग स्थापित करी का हो ही सकदी। हरड़ भेड़ा भी बहुतायत में पर्वतीय क्षेत्रों में होंदू। यू औषधियों सण एकत्रित करी का कुटीर उद्योग का माध्यम से पाउडर बनाई का ग्रामीण लोग सहकारिता व स्वयं सहायता समूह का माध्यम से अच्छो खासो मुनाफा कमाई सकदा न। पहाड़ी क्षेत्रों में किनगोड़ भी बहुतायत से प्राप्त होंदो। अतिसार दांत दर्द रोगों में किनगोड़ काम आंदो। वन संपदा से संबंधित कुटीर उद्योगों में बेल भी महत्वपूर्ण फल छ। छोटा स्तर पर बेल को शरबत सीसी पैक करी का तथा डिब्बा बंद बेल को मुरब्बा भी धनुर्पार्जन को अच्छो साधन बनी सकदो। जिमीकंद भी वनौषधि एवं पानी वाली जगह पर पाए जांदो। शिवरात्रि जन्माष्टमी आदि अवसरों पर जिमीकंद की मांग रोंदी। ये को भंडारण करी का शहरों की मंडियों से अच्छी आमदनी प्राप्त हुई सकदी। वनौषधि एवं वनों से प्राप्त सुलभ रीठा भी एक महत्वपूर्ण वाशिंग पाउडर को प्रारंभिक रूप छ। रीठा से कुटीर उद्योगों का माध्यम से शैम्पू व डिटर्जेंट बनाई सकेंद जो कि हर्बल उत्पादन में अग्रणी हो सकद। भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्टअप का माध्यम से कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना में बैंकों का साथ सहयोग कर लघु एवं ग्रामीण स्तर पर उत्पादन एवं विपणन की व्यवस्था हुई सकदी। वनों से प्राप्त संसाधनों में नीम का पेड़ से प्राप्त नीम को तेल पत्तों को पाउडर छोटा छोटा संयंत्रों से छोटा कुटीर उद्योगों से ग्रामीण लोग आय प्राप्त कर सकदा न। रोजमर्रा की सब्जी की आवश्यकता पूर्ण करने का वास्ता सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम की खेती च लगभग कम लागत पर स्वयं का घर पर एक कमरा की आवश्यकता से मशरूम 200 से 250 रुपये प्रति किलो की आय प्राप्त हो ही सकदे। उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस का वास्ता भी आवश्यक ऋण अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था छ। ग्रामीण युवा अपना ही घर पर यूं कुटीर उद्योगों की सहायता से अपनों रोजगार करी सकदा न। आजकल कै भी होटल व होम स्टे से कॉन्ट्रैक्ट करी का मशरूम पैकेजिंग का माध्यम से पहुँचाए सकेंद। सुगंध फूलों की खेती भी ग्रामीण क्षेत्रों की खेती छ। गेंदा गुलाब की खेती प्रति किलोग्राम के भाव से हर अवसर पर सप्लाई हो ही सकदी। ब्याह शादी उद्घाटन समारोह पूजा पाठ व फूलों की मांग हमेशा रौंदी ही छ। गुलाब की खेती से गुलकंद बनाई का अच्छी आमदनी हो ही सकदी छ। आयुर्वेदिक औषधि का साथ साथ 500 रुपये प्रति किलो गुलकंद से ग्रामीण युवा अपनी आमदनी बढ़ाई सकदा न। अब बात करदा कि रसदार फलों की जो कि उत्तराखंड का सभी पर्वतीय क्षेत्र में होना न। माल्टा बुरास का रस की छोटी छोटी कुटीर उद्योग इकाइयां स्थापित करी का माल्टा स्क्वैश बुरास का फूलों को स्क्वैश से अच्छी आमदनी प्राप्त हुई सकदी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरकाशी पिथौरागढ़ चमोली चकरौता आदि क्षेत्रों में सेब को उत्पादन बहुतायत में होंदो। सेब की सप्लाई का अतिरिक्त सेब की चटनी सेब का मुरब्बा सेब का स्क्वैश आदि का लघु संयंत्र स्थापित करी का अच्छी आय प्राप्त हुई सकदी। फल जू खराब सड़ जाना न सबू सण एकत्रित करी का छोटा पैमाना पर क्लीनर बनाई सकेंद। उत्तराखंड का ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त मात्रा में कच्चो माल उपलब्ध छ। यदि ग्रामीण युवा छोटा छोटा स्टार्टअप का माध्यम से माल्टा संतरा किन्नू नींबू

0: अपना घर पर ही होम स्टे का माध्यम से अपनो रोजगार करी सकदा नो। होम स्टे अपना घर पर तथा खेतों में फाइबर का घर बनाई का वक पर भोजन आदि की व्यवस्था करी का अच्छी आय प्राप्त करी सकेंदो। उत्तराखंड सरकार होम स्टे का बारे में प्रोत्साहित करनी चाह। रोजमर्रा का काम आने वाला कागज की प्लेट, ग्लास, चाय, जूस गिलास, प्लेट, थाली, दोना आदि लघु उद्योग स्थापित कर आसपास का ढावसण सप्लाई करी सकदान। पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ी बूटियों से हर्बल क्रीम पाउडर जेल को उत्पादन हो ही सकदो। छोटा कुटीर उद्योगों की स्थापना करी का एलोवेरा, हल्दी, दालचीनी, नीम फल आदि कच्चा माल की सहायता से लिक्विड व क्रीम फॉर्म में उत्पादन कर सकेंदो। स्थानीय बाजार का अतिरिक्त बड़ा शहरों में विपणन हो ही सकदो। बहुत ही कम लागत में धूप उद्योग, अगरबत्ती उद्योग को सदाबहार काम हो ही सकदो। कच्चू माल ये उद्योग का वास्ता पर्याप्त मात्रा में पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध छ। दंतमंजन तथा टेमरू की छाल वज्रदंती से पाउडर बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त हुई सकदी। पुरोला, उत्तरकाशी, धारचुला, मुंशियारी, पौड़ी, पाभो, चमोली, गोपेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, बागेश्वर, चंपावत, रानीखेत का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों से उत्पादन की संभावनाएं छन। हस्तशिल्प की छोटी मोटी इकाइयों का माध्यम से ऊनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जखमा, स्वेटर, मफलर, जुराब, टोपी आदि रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं की बिक्री से आमदनी हो ही सकदी। आलू पर्वतीय क्षेत्र में बहुतायत में होंदु। मल्टीनेशनल कंपनी चिप्स का वास्ता औना पौना दाम पर खरीदी करदाना, जबकि ग्रामीण लघु उद्योग स्थापित करी का चिप्स लोकल ब्रांड सण करी का आसपास का ढाबों व होटल में सप्लाई करी सकदान। मौन पालन कुटीर उद्योग का रूप में काफ़ी प्रचलन छ। कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा भी मौन पालन हेतु किट उपलब्ध कराई जानन। शहद को उत्पादन कर शहद की पैकेजिंग सीसी बंद शहद की अच्छी खासी मांग रोंदी। आजकल शहद को उपयोग रोजमर्रा का अतिरिक्त आयुर्वेदिक दवाइयों का रूप में प्रयोग होंदु। लघु कुटीर उद्योग तथा स्वयं सहायता समूह छोटी छोटी मशीनों का द्वारा अपनों बिक्री की व्यवस्था आसानी से कर सकदा न। लघु उद्योगों की उत्तराखंड में काफ़ी संभावनाएं छन। अतः संक्षेप में बोली सकदा कि उत्तराखंड का पहाड़ों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की संभावनाएं असीम मात्रा में छन। उत्तराखंड का नैसर्गिक वन संपदा एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में फल फूल तथा अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में छन। बस दृढ़ इच्छा शक्ति व युवाओं को स्वरोजगार का प्रति रुझान तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं सुविधा को सदुपयोग की इच्छा शक्ति चाहिए। अनावश्यक शहरों को मुंह त्याग कर अपना ही गांव गौला में उद्योग लघु रूप में स्थापित करी का रोजगार प्राप्त करी सकदान। भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का स्टार्टअप से लघु उद्योगों की संभावनाएं धरातल पर उतरी सकदी न। आशा छ कि युवा वर्ग सरकारी योजनाओं को उपयोग करी का समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण में अपनो योगदान दे ही सकदा न, ताकि प्राकृतिक व ग्रामीण संसाधनों को भरपूर उपयोग हो व उत्तराखंड का युवा आत्मनिर्भर हो ही सकी न तथा अपना उज्ज्वल भविष्य का प्रति सोच रखी का आगे बढ़ो न। उत्तराखंड में उद्योग एवं लघु उद्योगों की संभावना अत्यधिक छ, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को सदुपयोग अगर होलो तो जरूर संभावनाएं आगे उद्योगों की बढ़ ली। ये संदर्भ में युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति काम कर दी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुनना चाह पहाड़ में कुटीर और लघु उद्योगों की संभावना, ये विषय पर डॉक्टर सोहन लाल भट्ट से वार्ता।
2: और इन वार्ता में भी बोले गया कि अगर पहाड़ का आर्थिक विकास का खातिर पर्यटन से जुड़ा छोटा उद्योग शुरू करे जा सकते न, और ये के अलावा और भी जन के साहसिक पर्यटन से भी हम बात करदा तो उखमा छोटा छोटा उद्योग होम स्टे छन।

0: नहीं, पर्यटन का क्षेत्र में जो छोटा व्यवसाय की जरूरत है वो
1: जी
0: बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये का अलावा आप जो स्थानीय संसाधन छन उन पर आधारित अपन फल संस्करण और जो खाद्य पदार्थ छन उनकी प्रसंस्करण यूनिट लगाए के
1: जी
0: आप अपन बाजार अफीमा ही तय कर सकते।
1: संभावनाएं तो बहुत सारी छिन ध्यानी जी, बस थोड़ा सा जरूरत ये होंगे जी कि लोग अपना हौसला बढ़ावा, कि लेकिन कई बार हम लोग निराश हो जाना, तो जरूरी है कि हम एक सकारात्मक रूप से अगर क्या भी उद्योग थे शुरू करना छन, वे में बहुत सारी दिक्कत तकलीफ तो आंदी छे, लेकिन कखी ना कखी ये जो चीज़ छे ना, लघु और सूक्ष्म उद्योग जो हम शुरू करना चाह, यू पलायन थे कखी ना कखी रुकणु छे एक तरह से।
0: लेकिन एक बात हमारी यह समझ में नहीं आई कि अब जब हम ही बोलता कि साहब अपन रोजगार अपन स्वरोजगार और वे के बाद भी ज्यादातर युवाओं की यह सोच के लचे कि उन नौकरी करण
1: जागरूकता नहीं चाहिए ध्यानी जी।
0: जागरूकता भी अगर नहीं हो फिर भी मिजा अभी भी जो एक मनस्थिति हमार बनी चे ना वह जो एक सोच च वह तो बदलने की जरूरत च।
1: जी
0: और बदल कब जब हमारा ये उद्यमी कुछ सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा
1: जी
0: जो सफलता की कहानी सुने जाए कि भाई वे आदमन मत्स्य पालन में ही भलू पैसा कमाया
1: जी जी
0: है ना। और एक ना चार चार गाड़ी भेजी हुए माँ अपन
1: बिल्कुल
0: घर में रहन घर भी एक देहरादून में चे तो एक पहाड़ में चे। और अभी हम देखना चाहे कि ट्राउट जो मछली चे
1: जी
0: वे से जुड़ा व्यवसायियों की तो पौबार आनी चाहिए
1: हाँ
0: रोजगार
1: बिल्कुल
0: है ना
1: जी
0: सुंदर बिकनी चे और बहुत वही की मांग भी चे। तो बात यह कि हम तो अब सोच बदलने हुई कि हम अपन पहाड़ में रह की ही पलायन था भी धत्ता दिखा दीवा
1: जी
0: और अपन किस्मत चमका दीवा
1: बिल्कुल
0: अपन स्वरोजगार करें।
1: जी
0: अब कुमाऊनी गीत सुनाना है
1: जी
0: अपन
1: हाँ कार्यक्रम एक कुमाऊनी गीत, अभी आप सभी श्रोताओं का वास्ता दीपा मेहरा का स्वरमा।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्था।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू, आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
4: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: रविवार और गीत का बाद उम्मीद करना आप सभी हम दगड़ी जुड़िया हुला कार्यक्रम ग्राम जगत चनू छू और कार्यक्रम अग्नय भी छके की हम छुई बतलगोला एक जौन सारी गीत अपना सभी श्रोताओं का वास्ता और कुछ रंत रविवार भी अभी कार्यक्रम में छन।
6: लेकिन वही से पहल फिर दुई छुई अपना भाई बंधु से हमारा जो विद्यार्थी छे ना वो अब उल्टी आऊंगा कहना अब ईद का दिन रहेगी बल अरे अब स्कूल खुल जाला और इतना ही ना बल्कि देखा केंद्रीय विद्यालय तो खुल भी गई तो कुल मिला कि बच्चा ना अब जरे सी मुख लटकान बैठ गए कि अब छुट्टियों का दिन कम रह गए। लेकिन अक्सर हमें देखना चाहो चाहे हम पहाड़ गांव या रस्तों में हम तो दिखे तो सच में अभी वो जो पहाड़ का संस्कार छन हम तो बहुत सुंदर लगी कि लोग ददी ननियों में आया छन
5: जी
6: और कुछ नहीं हो तो बल कुकुर छोला दे दियो मिठाई है ना कुकुर छोला ननिन दे और वो खिलाना छन बेटा और दिन भर बल वो कहे पूंछ मड़कान अब बेचार सीणू ना तो वो आंखा ऊपर न हो तो नन्नी दद्दी की ये जो मयल दो पराण छ ना ये नाती नतना ही समझ सकते ना बुए बबन तो कुछ समझोल कि ना समझोल तभी
5: मजा बुए बबन जाने वाला अपना नन्नी

0: दादी का घर इन बात
1: कभी
0: में
1: जाना
0: से।
1: होला ना तू ज्यादा ज्यादा
0: खुद तो ध्यान दीजिए, सभी उठे लग दीजिए इन बात
1: वही बात हो सकत कि घी की मैंने दे दे नहीं नहीं नहीं है ना।
0: जी
1: तो अगर आप ननी घर छन दादी घर छन तो पक्की बात छ कि ननी माँ कहानी भी सुना दादी माँ कहानी भी सुना। और ये जरूर पूछा कि आप हार वक वो जो दिखेणु छ अगर आप पहाड़ में छन तो वो क्या छ है ना छछेड़ा कना होना छाया और पैणदारी कई खुण बोल देना और क्या क्या छ और
0: जी
1: यूं लखु तभी समझाण छन जो कि घर में छन। तो वैसे ये होल कि हाँ बच्चा जरा सी अपन पहाड़ से अपना जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहा न तो भोल उन बोलन कि वह हम तो घर भी गया था आपन कुछ बताया नहीं हम
0: बताए नहीं
1: तक।
0: थे बिल्कुल।
1: तो छुट्टियों का आनंद हो गया पूरु तो अब जरा से बस तभी खुजाने की कोशिश करा जो भजनों के स्कूल चट चटा के एक जूता
0: जी
1: एक में खुले
0: हाँ
1: ली
0: जी थोड़ा
1: और जो का बाद में खुला लुआ अभी खेल ला
0: सा
1: है
0: हाँ
1: ना। लेकिन समय को सदुपयोग जरूर करा कि
0: जी
1: छुट्टी नीच यो जो छुट्टी छन ये में भी हम तक कुछ ना कुछ सीखना चाहें। और आजकल बच्चों मोबाइल भी छोड़ चुके ना
0: हाँ बिल्कुल छोड़ी छे
1: जना आप ही देखना रोला सप्ताह। हाँ
0: देखी तो छे छे देखीजिए तभी पता चले कि बच्चन छोड़िया ले मोबाइल और थोड़ा बाहर जाके अब खिना छिन।
1: अच्छी बात है कि अगर हम शारीरिक तौर पर जो भैर जो मैदान का खेल छिन शारीरिक क्षमता बढ़ाने का खेल छिन उमा बच्चा भी रुचि लेना छिन तो अच्छी बात है। आम पक्या होला तो डाल में जाना होला
0: ना
1: ना अब नहीं
0: आजकल का
1: पका
0: बच्चा नहीं
1: अब नहीं जाना घंटी तो चलाना ही
0: जान
1: होला
0: देगा।
1: है ना। लेकिन अच्छी बात है किनगोड़ा भी पकिया छा का कि अभी हम जाए
0: जी
1: अच्छा तो वक्त बच्चा किनगोड़ा और हिसरा वो खाना चाहे कि जो ऊंचाई वाला इलाका छे वो बाद में पक दे।
0: अच्छा कितना फर्क छे ना मैदान का और पहाड़ी क्षेत्रों का नानतिनों में। बिल्कुल ही अगर हम अपने बच्चा थे बोला कि जा बेटा डाला में चढ़ तो वे की बस बात
1: हाँ
0: नहीं
1: हाँ
0: है।
1: गाय लगाणो रहा
0: जा बिल्कुल।
1: जोड़ चला अच्छी बात छे हम अपन पहाड़ मा और अपना पहाड़ का जीवन था जीना की कोशिश करना छो और ये भली बात छे आवा जो अनुसार का तरफ जोला
0: श्रोता आपसे सुनाना छा बारू निराला का स्वर में सुंदर सी जौनसारी लोकगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: मेरी योजना मेरो अधिकार, अपनी सरकार जनता का द्वार। पात्र लाभार्थी योजनाओं को लेके लाभ कारू सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड को निर्माण। योजना नीति क्रियान्वयन आवेदन चयन और जन कल्याणकारी योजनाओं और विभागों की पूरी जानकारी एक किताब में। नौच मेरी योजना
2: कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: श्रोताओं अभी आपन सुनी रैबार और रैबार से पहले जौनसारी लोकगीत बारू निराला का स्वरमा।
4: तो साहब आजक आधा कार्यक्रम पूरा हो गया और जरेस बच्चों च आप अकन बोलन काकि न जानो आज होर छुई लगने आपक दगड़, लेकिन ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
5: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 15 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। रीप परियोजना से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलेगा बड़ा बाजार। डोईवाला पेट्रोल पंप में प्रदेश का पहला हिरास आउटलेट खोला जाएगा। प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, सभी तैयारियां पूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने आज पौड़ी में नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों की जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को 15 जुलाई से पहले सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे करने के स्पष्ट निर्देश दिए, ताकि मेले के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सोलर लाइट, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा साफ सफाई की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। श्री स्वरूप ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू आवागमन और आवश्यक सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण के विजन को प्रदेश सरकार धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में देहरादून जिला प्रशासन अब जिले के व्यस्त पेट्रोल पंपों पर महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हिरास आउटलेट स्थापित करेगा। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य स्तर पर जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत पहले चरण में डोईवाला के IOCL पेट्रोल पंप पर प्रदेश का पहला हिलास आउटलेट खोला जा रहा है। इसके बाद अन्य पेट्रोल पंपों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आउटलेट्स पर पर्यटकों और आम जनता के लिए उत्तराखंड के शुद्ध और प्रामाणिक उत्पाद उपलब्ध होंगे।
7: तो जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकास खंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, उसके निकट ही एक IUCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है और हम जल्द ही मतलब इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस आउटलेट में हमारी स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं या स्पाइसेस हैं या अन्य दाल वगैरह, तो वो इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। और जितने हमारे जो लोग बाहर से आते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं या हमारे अन्य राज्यों के भी उसमें लोग रहेंगे, तो ये उनके लिए एक अट्रैक्शन होगा और जो लोकल सामान है उसका एक लोकप्रियता लोगों में बढ़ाई जाएगी और SHG का जो अर्निंग्स है वो इसके माध्यम से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
6: प्रदेश में इस बार फायर सीजन राहत भरा साबित हुआ है। वन विभाग की बेहतर तैयारी, आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। कई क्षेत्रों में समय समय पर हुई वर्षा ने भी आग को फैलने से रोकने में मदद की। फायर सीजन समाप्त होने के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में वनाग्नि की 580 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनसे करीब 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वन विभाग के अनुसार यह आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में काफी संतोषजनक हैं और बड़े नुकसान को रोकने में सफलता मिली है। वहीं मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन सुशांत पट्टायक ने बताया कि फायर वाचरों की तैनाती, कंट्रोल रूम की 24 घंटे निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग से आग की घटनाओं पर नियंत्रण किया जाता है।
8: हमारे पास कुल उत्तराखंड में 1438 क्रू स्टेशन है और 40 मास्टर कंट्रोल रूम है जो पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और वाइल्ड लाइफ एरियाज में सक्रियता से काम कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में मास्टर कंट्रोल रूम के साथ क्रू स्टेशन के साथ हमारे QRTV स्थापित की गई है जो कि विशेषकर चारधाम मार्ग में प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। जो लोकल कम्युनिटीज है, वन पंचायत, ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी भी सहयोग और सहायता ली जा रही है वनाग्नि नियंत्रण की दिशा में।
6: हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज रामघाट और कश्यप घाट क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान घाटों पर फैले कूड़ा कचरे को एकत्र कर उसके उचित निस्तारण के लिए नगर निगम को सौंपा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से हरिद्वार की स्वच्छता बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। जिला प्रशासन का उद्देश्य गंगा स्नान और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
9: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
6: प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में चंपावत जिले में 269 पोलियो बूथों में 27,301 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि 29 और 30 जून को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। इसके अलावा कल मोबाइल बूथ के जरिए यात्रा कर रहे नौनिहालों को भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।
10: हमने पोलियो की पूरी तैयारी कर ली है और ये जो 28 तारीख को बूथ पे हमारे द्वारा पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके बाद 29 और 30 को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। सभी वैक्सीनेटर को इसके बारे में समझा दिया गया है। मोबाइल जो बूथ हैं वो एक खेती खान चौराहे में और एक जो है वो पंचेश्वर चौराहे पर है, जिसमें हमारे द्वारा पुलिस की और ITBP की हेल्प से जो भी गाड़ियां हैं वहां पे 0 से 5 साल तक के बच्चे जो भी हमें गाड़ी में दिखाई देते हैं, हम सभी को अपने वैक्सीनेटर द्वारा पोलियो ड्रॉप पिलवाई।
6: डॉक्टर राठी ने जनता से भी अपील की कि वे अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
10: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग व अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर आज मसूरी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मसूरी के नगर पार्षदों, स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल सहित अनेक प्रतिष्ठित होटलों, रिजॉर्ट्स व गेस्ट हाउस के संचालकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता डॉ. राजेश कुमार ने होटल व्यवसायियों को पर्यटन क्षेत्र में नशे की रोकथाम, NDPS अधिनियम के कड़े कानूनी प्रावधानों और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही उत्तराखंड को एक सुरक्षित और नशामुक्त पर्यटन राज्य बनाया जा सकता है। इसी दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में नशामुक्त माहौल बनाने और जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। चमोली जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित नशामुक्ति सप्ताह के तहत आज PM3 राजकीय केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने छात्र छात्राओं और आमजन को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ व नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। बाल संरक्षण अधिकारी रजनी पंवार ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल, योग, व्यायाम और रचनात्मक गतिविधियों से युवाओं को जोड़कर नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। 15 जुलाई तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। रीप परियोजना से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा बड़ा बाजार। डोईवाला पेट्रोल पंप में प्रदेश का पहला हिनास आउटलेट खोला जाएगा। प्रदेश में कल शून्य से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, सभी तैयारियां पूरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार स्वागत छे आप सभी श्रोताओं को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। श्रोताओं आज का कार्यक्रम में छो आपा के दगड़ी आशना कन्याल नेगी, जिनके आप सभी जानना चाह। कार्यक्रम की दूसरी पाली की शुरुआत हम उन कार्यालय और दूसरी पाली में भी हम आपा का दगड़ी छुई बत लगौला और कार्यक्रम में जन की हम उन पहले आज एक महत्वपूर्ण गढ़वाली वार्ता पर आप सुने। और श्रोताओं बात अगर हम देखा आज कल की भगत की मोटो करी कि जो जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो हमारा परंपरा रीति रिवाज छन वो दिन प्रतिदिन बदलन पर लग गया छन। और यू बदल तो वो जो समय च जमानू च अगर हम बात करा तो ये में बदलाव भी जरूरी छन। लेकिन अगर हम देखा तो ये बदलता भगत माँ कखी ना कखी हम थे अपनी बोली भाषा का संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता महसूस होने पर लगी छ। नई छुआरी का अगर नांदिनों की हम बात करा तो वो अपनी बोली भाषा में बचाना नहीं छिन और बचाण तो दूर की बात छ कि वो अपनी भाषा तय बिगड़ा भी नहीं छिन। तो कितना बड़ी एक ही बात छ कि जय देवभूमि माँ हम उन जन्म ले छे और जो हमारी बोली भाषा छे वो हम समझ नहीं पाना छा।

तो बात इन होंगी च कि अगर कोई भी भाषा च वो अगर पठन पाठन में नहीं होंगी या फिर विद्यालयों में वो पढ़ाई नहीं जाती है तो भी भाषा की जो व्यवहारिकता है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। कार्यक्रम ग्राम जगत एक इनू कार्यक्रम है जख आप प्रतिदिन 5:45 पर और ठीक 6:50 तक अपनी बोली भाषा में तरह तरह की बातचीत वार्तालाप सुनला। कभी हम भेंट वार्ताओं का माध्यम से तो कभी हम वार्ताओं के माध्यम से तो कभी हम कवि गोष्ठियों का माध्यम से नाटक का माध्यम से तरह तरह का जितना भी विधाएं चिन्हों का माध्यम से अपनी बोली भाषा का संरक्षण संवर्धन और प्रचार प्रसार में निरंतर लग्या छा। ये पूरी कुटुंबदारी में बिजाइन लोग छिन जो एक लंबा समय से काम करना छिन और सिर्फ इतना ही ना श्रोताओं कि अगर आप अपनी बोली भाषा से सुनना छिन तो ये उसका पर्याप्त छ ना। अगर आप अपनी बोली भाषा में बचा लाना और जब तक वे थे पढ़ना नहीं सीखला या फिर लिखण नहीं सीखला गढ़वाली में तो मैं थे लग दू नहीं कि आप अपनी बोली भाषा का संरक्षण संवर्धन में कोई बहुत बड़ी योगदान देना चाह। जितना भी गढ़वाली में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती छिन या समाचार पत्र प्रकाशित होते छिन उथे मठू मठू की पढ़ खास करके जो हमारी नई छवाली है जो अपनी भाषा थे बींग नहीं पानी छिन ऊखने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो या फिर जो लोक संगीत आ जाको हमारू छू वे का माध्यम से भी वो अपनी बोली भाषा तो सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपन बिल्कुल किताब खोली की बैठनी छे मठू मठू करे कि जो छोटा छोटा कदम छिन अगर आप उथे लेंदा छा अपनी बोली भाषा का संरक्षण संवर्धन में तो कितना सुंदरी बात होली। अगर दूर विदेश में बैठी की कोई व्यक्ति अगर अपनी गढ़वली भाषा में या कुमाऊनी भाषा में या जौनसारी भाषा में बचाणु छे तो कितना गर्व की बात छे कि विदेशों में जाके भी लोग अपनी बोली भाषा से छोड़ना नहीं छन और गर्व महसूस करना छन। तो सरमाण की बात नहीं है कखी भी आप थे इन न्योण की दुई लोगों का बीच में गढ़वली कन खेपुन ये बात भी नहीं होनी चाहिए किले कितना सुंदर प्रदेश से हम आंदा छा और हमारी बोली भाषा में इतना मिठास छे शब्द इतना सुंदर सुंदर छिन और जब आप पढ़ बैठला अपनी बोली भाषा ते लिखण बैठला तो आपका कुछ शब्द भंडार छे वे में भी एक वृद्धि होली। तो उम्मीद करदा आप ग्राम जगत कार्यक्रम जरूर सुना किले की कार्यक्रम एक छोटी सी पहल छे आप ये पहल से जुड़ सकदा अपनी बोली भाषा का संरक्षण संवर्धन का प्रति प्रचार प्रसार का प्रति और जुड़ने को माध्यम जो छे वो ईमेल छे ईमेल चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com ये पता पर आप हम तय लिख भेजा अपना बात विचार आप हमारा कार्यक्रम थे सुनना छा आप वो भी लिख भेजा को कार्यक्रम आप थे कब पसंद आणु छ वो भी आप हम तय लिख भेजा। और जन की अगर हम भूल की बात करा तो भूल इतवार छ और इतवार का दिन को हमारा जो क्रम होंदु छ वो होंदु छ आपका अनुरोध में तो आप अपना पसंद का गीत हम तक लिख भेज सकदा ईमेल का माध्यम से। पुराना पुराना गीत हमारा जो पुराना लोक गायक छिन लोक कलाकार छिन उनका गीत हमारे पास आज भी स्टूडियोज में संरक्षित छिन तो जो गीत आप थे यूट्यूब में सुन को नहीं मिल रहा ये जो गीत विलुप्त हुए कि वो आज भी हमारा स्टूडियो का आकाशवाणी का स्टूडियो केंद्र में छिन तो आप उन गीतों का बाबत भी हम तय अपना अनुरोध लिख सकता और साथ ही साथ अपना नाम आप जरूर लिखे अपना स्थान जरूर लिखे कि लेकिन हम तय भी जरूर पता चलू कि हमारा श्रोता हम तय कक कक सुनना छिन। तो श्रोताओं कार्यक्रम का क्रम अब हम अगड़े बढ़ला और आप सभी का वास्ता एक सुंदर सी गढ़वली लोकगीत पटाणु छो स्वर्च बबीता सकलानी को

श्रोताओं अभी आप सुनना छा बबीता सकलानी का स्वर मायू सुंदर से गढ़वाली लोकगीत और ये गीत का साथ ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम संपन्न करने को बखत हो चली छे। आप अपनी दगड़िया आशना कंडियाल ने गीत है आज्ञा देवा एक नया अंक में आपसे फिर भेटोला। तब तक का वास्ता नमस्कार।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहली मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा को शुभारंभ करी उन बोली अगला 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में भारत टैक्सी को विस्तार किए जालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लुखू दगड़ अपना विचार रखला। प्रदेश में भोल 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज 90% डिजिटाइजेशन पूरु। और राज्य में भोल बटी मानसून की दस्तक का आसार पर्वतीय जिलों का वास्ता येलो अलर्ट जारी। भारत टैक्सी और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बोली की सहकारी

0: टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगला 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में विस्तार करे जालू। भारत टैक्सी का उद्घाटन सत्र में श्री साहन ई पहल थे सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताई। उन बोली कि भारत टैक्सी को उद्देश्य चालकों तय सीधो लाभ पहुंचे की निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कंजा। उन बोली कि यहाँ से चालकों थे उनका पारिश्रामिक को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल लो और यात्रियों थे भी सुविधा व किफायती यात्रा को लाभ मिल सकलो। प्रधानमंत्री मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लुखू दगड़ अपना विचार रखला। यू मासिक रेडियो कार्यक्रम को 135वां एपिसोड होलू। कार्यक्रम को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सभी चैनलों AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर करे जालू। दगड़ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यूट्यूब चैनलों पर यहां का सीधा प्रसारण भी होलू। हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम को प्रसारण होलू। प्रदेश में भोल 5 सालों तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली। यहाँ का वास्ता सभी तैयारियां पूरी वे गई। ये कार्यक्रम में चंपावत जिला में 269 पोलियो बूथ बनाया छन, जक 27,301 बच्चों थे पोलियो की दवा पिलाण को लक्ष्य निर्धारित करे गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताई कि 29 और 30 जून खुण आशा कार्यकर्ता घोर घोर जय की 5 साल तक का बच्चों थे पोलियो की खुराक पिला ली। ये का अलावा भोल मोबाइल बूथ का माध्यम से यात्रा करना बच्चों तय भी पोलियो की दवा पिलाई जाली। डॉक्टर राठिन अभिभावकों से अपील करी कि वो अपना 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक जरूर पिलाया ताकि उन्हें पोलियो जन गंभीर बीमारी बटी सुरक्षित रखे जा सकू।
1: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
0: भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026-2027 का तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई। सामान्य प्रवेश परीक्षा को परिणाम घोषित होने का बाद जुलाई का दूसरा हफ्ता बटी अल्मोड़ा जिला का रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करे जाली। थल सेना भर्ती कार्यालय का ARO कर्नल महेश कुमार ने बताई कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। परिणाम जारी होते ही शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करे जाली। उन बताई कि ये परीक्षा में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर का अभ्यर्थियों का दगड़ा दगड़ी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी का अभ्यर्थी भी शामिल होला। कंडल महेश कुमार ने बोली कि पूरी भर्ती प्रक्रिया थे पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराण का वास्ता सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वे गई।
2: ARO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, भागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने प्लान किया है फिजिकल रैली का उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी छ। निर्वाचन विभाग की टीम मतदाता सूची का शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम तेज से पूरु कना छन। कनमा लगीचा जिलाधिकारी प्रशांत आर्यन बताई कि जिला मा अब तक लगभग 90% डिजिटाइजेशन को काम पूर्व हो गया। कई मतदान केंद्रों पर यू काम 100% पूर्व करे गया। उन बताई कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र मा सबसे तेज प्रगति दर्ज करे गया, जख 45 मतदान केंद्रों मा डिजिटाइजेशन को काम पूरी तरह से हो गया। उखी यमुनोत्री विधानसभा का 41 और गंगोत्री विधानसभा का 18 मतदान केंद्रों पर भी 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम पूर्व हो गया। जिलाधिकारी ने विश्वास जताई कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का सभी कार्य निर्धारित समय सीमा का भीतर पूरा हो जाला।
4: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का एस आई आर का डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें, और ये 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं एसआईआर के बारे में, और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 1 महीने की रहेगी।
0: हरदकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था है सुगम बनाने का वास्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच गई। NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंबी 6 लेन स्पर टू हरिद्वार परियोजना को लाभ 92% काम पूर्व हो गया। ये के अलावा 86 किलोमीटर सड़क को निर्माण पूर्व करे गया। ये मार्ग दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों थे हरिद्वार से जुड़लू, जहाँ से यात्रा अधिक तेज और सुगम होली। ओकी 15 किलोमीटर लंबा हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रथम चरण को लगभग 77% काम पूर्व हो गया। ये चरण में अब तक 9 किलोमीटर 4 लेन सड़क को निर्माण करे गया। NHAI को लक्ष्य अर्धकुंभ 2027 से पहले 2 परियोजनाओं थे पूर्व करी हरिद्वार में सुरक्षित आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने जा। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन की परिस्थितियां अनुकूल वे गई। मौसम विभाग के अनुसार अगला 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य का कुछ हिस्सों में पहुंच सकदू। यहाँ थे दिख दी बगत पर्वतीय जिलों का वास्ता गगड़ाट चमकियाट तेज बरखा झोंकदार हवाओं को येलो अलर्ट जारी करे गया। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियालन बताई कि भोलबटी कुमाऊं मंडल का अधिकांश जिलों और गढ़वाल मंडल का कुछ क्षेत्रों में बरखा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना चा।
5: 28 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 28 तारीख में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 29-30-1 में उत्तराखंड में कह सकते हैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो अगले 1-2 दिन जो है आज कल में जो है देखेंगे कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहां मिल सकती है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा को शुभारंभ करी। उन बोली अगला 2 सालों में देश भर का 500 शहरों और गांव में भारत टैक्सी को विस्तार किए जालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल सुबेर आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश का लोगों दगड़ अपना विचार रखला। प्रदेश में भोल 5 वर्ष तक का सभी बच्चों थे पोलियो की खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 90% डिजिटाइजेशन शुरू। और राज्य में भोल बटी मानसून की दस्तक का आसार, पर्वतीय जिलों का वास्ता येलो अलर्ट जारी। यहां का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुई। नमस्कार।
6: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, मेरे यानी चंदा मलासी के साथ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी फरमाइशों पर आधारित खास कार्यक्रम लोक मंजरी। तो आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय यानी वक्त जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। किसानों के लिए तो समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति किसी का इंतजार नहीं करती। सही समय पर बोया गया बीज ही अच्छी फसल का आधार बनता है। इसीलिए कहा जाता है, वक्त का सम्मान करने वाला किसान ही समृद्धि की फसल काटता है। कृषि में समय का महत्व, इसी विषय में चर्चा को रखेंगे जारी। इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, लोकमंजरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार मैम, मैं रेणु चौधरी, ग्राम खानपुर से।
0: रेणु, क्या करते हो आप?
1: मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, महिलाओं के एनजीओ उसमें काम करती हूँ।
0: अच्छा रेणु, आज हम लोग ना ऐसे छोटी सी चर्चा कर रहे हैं समय के बारे में। विषय यह है कि समय जो होता है, देखो चाहे जिंदगी हो या खेती हो, उस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। बच्चों को स्कूल जाना है समय से, पति को ऑफिस जाना है या खेत में जाना है समय से। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में?
1: मैम सबसे बड़ा कीमती चीज वैसे आज के टाइम में है तो समय ही।
0: तो और बताओ, क्या खेती में क्या क्या लगाया है आपने रेणु?
1: मैम हमारे यहाँ पे अभी गन्ना है,
0: जी
1: अभी जैसे धान की रोपाई होनी है।
0: जी
1: हाँ जी, उसकी तैयारी चल रही है। अभी जैसे मौसम सूखा है तो अभी थोड़ी पानी की दिक्कत चल रही है और बारिश का इंतजार है।
0: अच्छा अच्छा रेनू, आपने कहा कि आप समूह, जो सहायता समूह होते हैं, उसको भी चलाती हैं, उसमें काम करती हैं, कुछ उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हाँ मैम बिल्कुल
0: जी
1: मैम, हमारे यहाँ जैसे कि समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह,
0: जी
1: आजीविका मिशन होता है ये, महिलाओं को
0: जी
1: उनके आत्मनिर्भर बनाना।
0: जी
1: और इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे रोजगार होते हैं
0: जी
1: जिसमें वो अपनी सामूहिक बैठक करती हैं, उसमें अपना जो भी उनका मासिक मतलब उनसे बन पड़ता है 25 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से
0: जी
1: इकट्ठा करके अपना एक बैंक में अकाउंट खुलवाती है। और उसके माध्यम से ना आगे बढ़ने के लिए, अपना कोई छोटा रोजगार करने के लिए बहुत सहायता मिलती है। उसके बाद फिर उन्हें बैंक भी हेल्प करता है और ब्लॉक भी, सरकार की तरफ से भी एक अच्छी मुहिम है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पहल आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात रेनू आपने बताई, और हम, मुझे लगता है कि आपको सुनकर हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं वो भी अपना हिम्मत बढ़ाएंगे और आगे आएंगे। महिलाएं भी कुछ करेंगी एक साथ एकजुट होकर। रेनू, आपने जो है आकाशवाणी के लोक मंजरी कार्यक्रम में कॉल किया है, जहाँ पे हम लोग आपकी फरमाइशी गीत सुनाते हैं। कहिए, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मैम कोई भी आपकी पसंद का लोकगीत।
0: मैं सुनवाती हूँ आपको आपकी, हमारी पसंद का लोकगीत आपके लिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए, बहुत बहुत
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, मेरे साथ जुड़ गए हैं एक और कॉलर, आइए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: नमस्कार मैम, मैं साक्षी खटाना बात कर रही हूँ, लक्सर के प्रहलादपुर गांव से।
0: साक्षी, क्या करते हो आप?
2: मैम मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मैं अभी अपने फादर के साथ खेती में हाथ बटाती हूँ।
0: आप तो शिक्षित किसान हैं, तो साक्षी आपको क्या लगता है, आपकी शिक्षा का आपकी खेती में कुछ लाभ हुआ है आपके पिताजी को?
2: जी हाँ, अभी जो ज्यादा दवाइयाँ वगैरह मेरे जो फादर हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ उन चीजों में।
0: आज जो है कृषि एक व्यवसाय है ना, तो शिक्षा को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो काफी कुछ बदल सकता है ना, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
2: कि अगर किसान पढ़ा लिखा होगा
0: जी
2: तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि अभी वो दवाइयाँ वगैरह ज्यादा जानते नहीं है।
0: जी
2: जितनी ज्यादा हाई पावर की दवाई इनको दे देते हैं वो खेत में डाल देते हैं।
0: जी जी जी
2: अभी अगर उनको उस बारे की ज्यादा नॉलेज होगी तो
0: जी
2: वो अच्छे से कर पाएंगे। जैसे सोचे हैं कि अगर हम इसको जहर को डालेंगे
0: हाँ
2: तो वो
0: जी
2: हमें ही खाना ही है बाद में।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा रसायनों का अगर हम प्रयोग करते हैं या बिना जानकारी के अगर उसमें डालते हैं, तो खाना तो हमें ही है ना। ये बात आपने बहुत अच्छी की। और साक्षी, उसके साथ साथ जैसे कि आजकल नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, और जो ये कई तरह के ऐप हैं, तो शिक्षित अगर आप हैं तो उन सभी का फायदा काफी उठा सकते हैं, है ना। सो जैसे कि मौसम की जानकारी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और उसी के हिसाब से अगर हम अपनी खेती को चलाएं, आपको क्या लगता है इसका फायदा होगा ना?
2: यस मैम, इसका बहुत फायदा होता है। अभी जो अगर कोई नया किसान है, कोई बताने वाला नहीं है अगर पीछे, तो एक्सपर्ट अपने उसके बारे में नॉलेज निकाल सकता है कि कितना पानी, कितनी दवाई और किस टाइम पर डालनी है,
0: जी
2: किस
0: जी
2: वक्त रुपाई करनी है, इस बारे में जानकारी ले सकता है। और उसे ये भी फायदा होता है कि वो मौसम के बारे में भी जानकारी ले सकता है फोन
0: जी
2: से।
0: साक्षी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। मंजरी कार्यक्रम जो है साक्षी, ये एक फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। कहिए क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: मैम कोई भी सदाबहार गीत,

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
5: श्रोताओं, खेती किसानी में समय का विशेष महत्व है। सही समय पर की गई बुवाई अच्छी पैदावार की नींव रखती है। इसीलिए मौसम और कृषि सलाह के अनुसार समय पर कृषि कार्य करना आवश्यक है। समय पर सिंचाई फसल के स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थोड़ी सी लापरवाही भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ गए हैं एक और कॉलर, आइए उनसे बातचीत करते हैं।

0: नमस्कार, लोकमंजरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं मनोज खटाना बोल रहा हूँ, प्रहलादपुर गांव।
0: जी
1: और
0: मनोज जी,
1: मनोज
0: क्या
1: कानपुर।
0: जी मनोज जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती से संबंधित पशुओं से काम करता हूँ,
0: जी
1: लेने बेचने का
0: अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका काम?
1: काम धीमा चल रहा है। गर्मी ज्यादा हो रही बहुत
0: मौसम का, गर्मी सर्दी का पशुओं में कितना असर होता है?
1: ज्यादा असर
0: तो
1: होता
0: अभी जैसे काफी गर्मी पड़ रही है, तो आप पशुओं के लिए क्या करते हो?
1: है। पशुओं को नहलाना और ठंडी चीजें देनी और उन्हें समय समय पर घास देना,
0: अच्छा
1: जैसा चारा हो और कैल्शियम होगा,
0: अच्छा
1: ऐसी पौष्टिक आहार देना जैसा चना हो गया।
0: जी, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है गर्मी से?
1: गर्मी से तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर को दिखाते हैं
0: अच्छा,
1: और कुछ अपना उपचार कर लेते हैं। देखिए अपने घर का नुस्खा, जैसा सरसों का तेल होगा,
0: जी
1: हाँ दलिया होगा।
0: अच्छा। मनोज जी, आपने लोकमंजरी कार्यक्रम में कॉल किया है, जिसमें हम आपको आपकी फरमाइशी गीत सुनाते हैं। कहिए, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं तो कोई लोकप्रिय गीत सुनना चाहूंगी जो अच्छा मीठा आवाज में हो बहुत ज्यादा।
0: तो ठीक है मनोज जी, बहुत कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपको बड़ा मीठा सा ये गीत। दोस्तों, एक और कॉलर लाइन पर हैं, चलते चलते आइए उनसे भी बात करते हैं। लोकमंजरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं अर्जुन सिंह पाटन लखतर से बोल रहा हूँ।
0: अर्जुन जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती करता जी 5-6 वर्षों से।
0: जी, तो अर्जुन जी, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, कैसा हो रहा है खेतों में?
1: खेतों में गर्मी तो हो रही है, नर्सरी डाल दी धान की,
0: जी
1: तो 17-18
0: जी
1: पानी दे रही। गर्मी के साथ 3-4 दिन पानी दे रहे।
0: तो अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई का क्या पूरा प्रबंध है आपके यहाँ, जिससे कि आप अपनी धान लगा सकें?
1: सिंचाई का साधन तो बहुत अच्छा रहा हमारे यहाँ से। पहले बोरिंग का कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत तो बोरिंग भी लग चुका है पिछले साल,
0: अच्छा
1: तो उससे लाभ मिलेगा
0: जी, इस बार बारिश जो है अभी तक कुछ लग नहीं रहा है कि काफी आने वाली है, और शायद धान का भी समय हो गया
1: बार।
0: होगा, है ना? तो अर्जुन जी, आपने लोक मंजरी कार्यक्रम में कॉल किया है, जहां पर आपको हम सुनवाते हैं आपके फरमाइशी गीत। तो कहिए, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: लोकगीत
0: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, आपको सुनवाती हूँ मैं आपकी पसंद का ये लोकगीत।

0: दोस्तों, खेती में खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी सही समय पर किया जाए तो फसल को अधिक लाभ मिलता है। समय का सदुपयोग कृषि सफलता की कुंजी है। फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए समय पर पहचान और उपचार बहुत जरूरी है। सही समय पर उठाया गया कदम फसल को बड़े नुकसान से बचा सकता है। आइए, लाइन पर काफी देर से बने हैं एक और कॉलर, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार मैम, मैं संगीता त्यागी बोल रही हूँ।
0: संगीता, कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: मैं लक्सर से बोल रही हूँ।
0: संगीता, क्या करते हो आप?
1: मैं सोशल वर्कर करती हूँ। बस
0: जी, कैसा चल रहा है आपका काम इस गर्मी में?
1: गर्मी में तो काम तो करना ही पड़ता है मैम।
0: हाँ जी, वो तो है। और खेती वेती भी करते हो आप क्या?
1: हाँ जी, खेती भी करते हैं।
0: अच्छा, कार्यक्रम लोकगीतों का है और यहाँ पे हम आपको आपकी फरमाइशी लोकगीत सुनाते हैं। आप सुनना क्या चाहेंगे, बताइए।
1: आप गढ़वाली गीत सुनवा दो।
0: गढ़वाली गीत सुना दें? जी बिल्कुल, आपको सुनवाती
1: क्योंकि
0: हूँ
1: मेरा
0: मैं।
1: मायका उत्तराखंड से ही है।
0: आइए, मैं सुनवाती हूँ आपको आपकी पसंद का ये लोकगीत।

0: दोस्तों, वक्त की पहचान ही सफलता की पहचान है। खेती हो या जीवन, सही समय पर उठाया गया कदम मंजिल को आसान बना देता है। कृषि में समय का महत्व तो बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक हर चरण में दिखाई देता है। समय पर किया गया कार्य मेहनत को सफलता में बदल देता है। आप सभी ने बड़े बुजुर्गों को अक्सर कहते सुना होगा कि समय से शादी कर लो, समय से खाना खा लो, समय से सो जाओ। इन सब बातों पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिंदगी की सफलता इन्हीं नुस्खों में छुपी है। दोस्तों लाइन पर बने हैं एक और साथी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ उनके बारे में। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैडम, मैं गांव कुरुड़ी खेड़ा से सुशील कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी, कुशल कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक है? मैम
0: जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का काम करते हैं अपना।
0: अच्छा, और क्या क्या बो रखा है आजकल आपने?
1: गन्ना मैम, गन्ना सारे में गन्ना खड़ा है। मैम
0: अच्छा, तो कुछ बताइए अपने गांव के बारे में।
1: हमारा गांव का एरिया है, साधारण लोग रहते हैं यहाँ से। हाँ
0: जी, और बारिशों का क्या
1: खेती
0: हाल है? बारिश हो रही है
1: मैडम, गर्मी बारिश में तो बहुत गर्मी है। हाँ
0: इस बार, बहुत गर्मी है ना? बारिशें भी नहीं
1: बहुत
0: हुई हैं,
1: गर्मी।
0: तो फिर धान वगैरह कैसे बो रहे हैं आप लोग?
1: धान तो मैम ट्वेल्थ सिंचाई से बदल रखते हैं, सिंचाई
0: अच्छा, सिंचाई का पूरा
1: करते
0: प्रबंध
1: हैं
0: है
1: पहले।
0: आपके गांव में,
1: हाँ हाँ
0: है ना?
1: जी
0: तो आपने जो है ना लुकमंजरी कार्यक्रम में कॉल किया है, कहिए क्या
1: हाँ मैम,
0: सुनना
1: हाँ
0: चाहेंगे आप?
1: मैम मैं वो राग भी सुनना चाहते हैं। जी
0: राग नहीं सुनेंगे आप? जी,
1: जी
0: तो आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक और कॉलर लाइन पर है, चलते चलते आइए उनसे भी बात करते हैं। लोकमंत्री कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हेलो लोक मंजरी
0: जी
1: दे दे, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ जी।
0: जी, कैसे हैं आप गुलजार जी?
1: हमारे यहाँ तो बहुत चले हुए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर हमने मरुए का पौधा लगा रखा है, तो जो है अंजीर का पौधा लगा रखा है, और ये पाम का पौधा लगा रखा है, चामुंडनी का पेड़ लगा रखा है।
0: आजकल गर्मियों का मौसम है, इसलिए उनका बहुत ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी। आपने कॉल किया है लोकमंजरी कार्यक्रम में, क्या कहिए, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं जो है एक राग भी सुनना चाहूंगा।
0: जी, और आप बने रहिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी। धन्यवाद।

दोस्तों, इसी के साथ वक्त हुआ है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हमें खेद है कि हम वक्त की कमी की वजह से सभी के कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। आप हमें पत्रों के माध्यम से भी अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। पत्र लिखने का हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, और हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी चंदा मलासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देशक पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुभारंभ करो को अगिल द्वि सालन में देशभरक 500 शहर और गांव में भारत टैक्सी विस्तार करी जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशक जानिन थे अपुन विचार साझा कराल। प्रदेश में भोल 5 साल तलक नांतिनों के पोलियो खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 90% डिजिटाइजेशन को काम पूर्ण। और राज्य में भोल बैठे मानसून नक दस्तक आसार, पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तारल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को की सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को अगिल द्वि सालन में देशभरक 500 शहर और गांव में विस्तार करी जाल। भारत टैक्सी उद्घाटन सत्र में श्री साहल यो को की सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम छू। उनल को की भारत टैक्सी को उद्देश्य चालकों को सिद्ध फैत पूजा बेर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करण छू। उनल को की येल चालकों के उनर पारिश्रमिक जाधे जाधे मिलल और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सस्त यात्रा फैद मिल सकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशक जानिन थे अपन विचार साझा करल। यो महंड रेडियो को कार्यक्रम को 135वां एपिसोड होल। कार्यक्रमों को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को सपे चैनल AIR न्यूजक वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर करी जाल दगड़े। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यूट्यूब चैनलों पर ले एक सिद्ध प्रसारण होल। हिंदी प्रसारण तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में ले यो कार्यक्रम को प्रसारण होल। प्रदेश में भोल 5 साल तलक को सपे नांतिनों को पोलियो की खुराक पिलाई जाली। येक लीजी सपे तैयारियां पूर करी हालीन। योई क्रम में चंपावत जिले में 259 पोलियो बूथ बनाई गई, जहां 27,301 नांतिनों के पोलियो की दवा पिलुणक लक्ष्य रख रखो। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराट राठिल यो बताए कि 29 और 30 जून के आशा कार्यकर्ता घर घर जाबे 5 साल तलक को नांतिनों के पोलियो की खुराक पिला ली और सभी अभिभावकों थे उनल अपील करिए कि यो दवा उनके जरूर पिलाओ।
2: मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो जिंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रिकॉशन ही बचाव है।
1: भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026-27 तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद अब शारीरिक दक्षता की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई। सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जुलाई के दूसर हफ्ते में अलमार जिला रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शारीरिक दक्षता की परीक्षा आयोजित करी जाली। थल सेना भर्ती कार्यालय को AR कर्नल महेश कुमार बताए कि ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न है, परिणाम जारी होते ही शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू कर दी जाली।
3: AR की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर एंड उधम सिंह नगर के उन सभी कैंडिडेट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं जिन्होंने अभी 12 जून को कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम अग्निवीर का कंप्लीट किया है कि हमने इन बच्चों के लिए मिड जुलाई के बाद रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में उनकी फिजिकल की रैली की तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एग्जाम के बाद अपने फिजिकल्स को कंटिन्यू रखें, जिससे कि मिड जुलाई के बाद जो हमने प्लान किया है फिजिकल रैली का, उसमें बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्ध स्तर पर जारी छू। निर्वाचन विभागक टीम मतदाता सूचीक शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशनक काम झट्टपुरकरण में जुटी छू। जिलाधिकारी प्रशांत आर्यल बताए कि जिले में एल जाने लगभग 90% डिजिटाइजेशन को काम पुर है गयो। कई मतदान केंद्रों में यो काम 100% पुर कर हालो। उन्हें बताए कि पुरौला विधानसभा क्षेत्र में सपन है तेज प्रगति काम है गयो और 45 मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन को काम पुर है गयो। यमुनोत्री विधानसभा 41 और गंगोत्री विधानसभा 18 मतदान केंद्रों में ले 100% शुद्धिकरण और डिजिटाइजेशन को काम पूर है गयो।
5: टोटल जो वोटर्स हैं उत्तरकाशी जनपद में वो 2,42,000, तो उसके हिसाब से सभी लोगों का ऐसा यार पर डिजिटाइजेशन प्रोसेस है। इस समय डिजिटाइजेशन में जो उनके इन्यूमरेटर फॉर्म्स हैं उसको हम डिजिटाइज करके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो लगभग 90% डिजिटाइज हो गए हैं इसमें और 25,000 बचे हैं जो 2 दिन में हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बूथ लेवल एजेंट हैं, उन लोगों के साथ हमारे BLO संपर्क कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग यहाँ संपर्क में रहते हैं, उनको अवगत करा रहे हैं ऐसे ऐप के बारे में। और यह काम समय से अपना पूर्ण होगा। 8 जुलाई से नोटिसेस और नोटिस का जवाब देने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 1 महीने की रहेगी।
1: अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में यातायात व्यवस्था के सुगम बढ़ोनक लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में पुज गईं। NHAI के अनुसार 51 किलोमीटर लंब 6 लाइन स्पर टू हरिद्वार परियोजना का लगभग 92% काम पुर है गयो। यह के भीतर 46 किलोमीटर सड़क का काम पुर कर हालो और यो बाट दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के हरिद्वार बठे जोड़ल जैल यात्रा जद तेज और सरल है जाली। वहीं 15 किलोमीटर लंब हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रथम चरण काम लगभग 70% पूर है गयो और पहली द्वीय परियोजनाओं को पूर कर बेर हरिद्वार में सुरक्षित आधुनिक और सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध करूण छू। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसूनक ऊणल परिस्थितियां अनुकूल है गईं। मौसम विभाग के अनुसार अगिल 2-3 दिनन में मानसून राज्यक कुछ जागन में पुज जाल। जगह दिगबेर पहाड़ी जिलों के लीजी घोड़ाट मोड़ाट चाल चमकण तेज बर्फ और बयाव के लीबेर येलो चेतावनी जारी कर रखी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियालल बताए कि भोलबठे कुमाऊं मंडलक अधिकांश जिल व गढ़वाल मंडलक कुछ जागन में बर्फक गतिविधियां बढ़नक अंदाज छू।
6: 28 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 28 तारीख में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 29-30-1 में उत्तराखंड में कह सकते हैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो अगले 1-2 दिन जो है आज कल में जो है देखेंगे कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहां मिल सकती है।
1: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 30 जून के पिथौरगढ़ और बागेश्वर जिले में कह बहुत तेज बर्फ होने का अंदाज जता रखो। खराब मौसम की आशंका के दिगबीर मौसम विभागल जाने थे होशियार रूण और जरूरी सावधानी बरतने के लिए अपील कर रखी। मौसम विभाग कूण छे कि अघिन 3-4 दिन तलक तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहा। हालांकि यह बाद तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तलक की कमी दर्ज करी जाली। चमोली जिला नारायणबगड़ मुख्य बाजार में अतिवृष्टि के बाद राहत बचाव और सफाई काम युद्ध स्तर पर जारी छू। जिला प्रशासनक अनुसार घटना में कोई प्रकारक जनहानि और पशुहानि नहीं भे। बेई देर रात भे अतिवृष्टि कारण देवसल्ला गांव बठे भारी मात्रा में रियाड़ भ्याड़ नारायणबगड़ मुख्य बाजार में पुज गयो। जैल बाजारक एक हिस्से प्रभावित है गयो। मलबा की चपेट में उणल सड़क किनार थड़ कुछ द्विपहिया और चौपहिया वाहनों में मलबा भर गयो जबकि कुछ दुकानों में ले पानी और मलबा घुस गयो। जिला प्रशासन पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम राहत बचाव और पुनर्स्थापन को काम में जुटी छू। प्रशासनक अनुसार अतिवृष्टि कारण पेयजल आपूर्ति अस्थायी रूप बाधित भेजिए जगह शुरू करण काम तेजील जारी छू। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में देशक पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा शुभारंभ करो को अगिल 2 सालन में देशभरक 500 शहर और कस्बों में भारत टैक्सी विस्तार करी जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल रत्ते आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेशों को जानिन थे अपन विचार साझा करल। प्रदेश में भोल 5 साल तलक सपे नांतिनों के पोलियो खुराक पिलाई जाली। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण को अभियान तेज। 90% डिजिटेशन को काम पूर और राज्य में भोल बठे मानसून की दस्तक का आसार, पहाड़ी जिलन में येल्लो चेतावनी जारी। यह कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यों खत्म हूँ, नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे अपना मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म एक दूजे के लिए से, और गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आनंद बख्शी के ही लिखे हुए और आर डी बर्मन के संगीत से सजे अगले गीत को हम सुनाने जा रहे हैं, फिल्म अजनबी से आवाज़ किशोर कुमार की।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी समाचार देहरादून से क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम योजना संवाद। मैं गीता नेगी आज आपसे बात करूंगी उत्तराखंड सरकार की अनोखी पहल होम स्टे योजना के बारे में। श्रोताओं, यह योजना न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बन रही है। उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदियाँ, झीलें और धार्मिक स्थल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन लंबे समय तक पर्यटन का लाभ सीमित लोगों तक ही सिमटा रहा। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोग अपने घरों के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए आवास के रूप में उपयोग कर सकें। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान पान और जीवन शैली को करीब से जानने का अवसर मिलता है और वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। उत्तराखंड होमस्टे योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। होमस्टे संचालकों को लाइसेंस, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। कई मामलों में सरकार प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्मों से जोड़ने में भी सहायता करती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे पलायन पर रोक लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों से रोजगार की कमी के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन होमस्टे योजना ने गांवों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। महिलाएं भी इस योजना में विशेष रूप से लाभान्वित हो रही हैं, क्योंकि वे घर पर ही रहती हैं और पर्यटन व्यवसाय से जुड़ पा रही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े होटल और रिजॉर्ट की तुलना में होमस्टे कम संसाधनों में संचालित होते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन को भी पहचान मिलती है। आज उत्तराखंड के कई जिले जैसे नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में होमस्टे योजना सफलतापूर्वक चल रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक होमस्टे को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अपना और शांति का अनुभव मिलता है। इस योजना पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर जोशी।
2: नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर जोशी, जनसंपर्क अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। आज इस राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है होम स्टे योजना, इसके बारे में, इसको लेकर के आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उन सभी को हम शांत करने का प्रयास करेंगे। वही घर होम स्टे हो सकता है जिसमें मकान का स्वामी भी रह रहा है और उसके साथ ही उसे पर्यटकों के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए आपको हमारी क्या जरूरत है, तो वो ये है कि आपको उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में अपने घर का रजिस्ट्रेशन होम स्टे के रूप में कराना अनिवार्य है अगर आप उसे होम स्टे के रूप में चलाना चाहते। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने से ये फायदा होगा कि आपका जो पानी बिजली का बिल आता है ये नॉन कमर्शियल रेट्स पर आएगा, अव्यावसायिक दरों पर, जो भी घरेलू दरें हैं उन पर आएगा। और दूसरा, जो SGST होता है, जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, इसकी पहले 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाए। इसी घर को होमस्टे के रूप में प्रयोग करने के लिए ये जरूरी है कि उसका पंजीकरण किया गया हो, यानी कि वो रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा ये कि वो एक आवासीय परिसर होना चाहिए, यानी कि रेसिडेंशियल कैंपस होना चाहिए, न कि एक कॉमर्शियल कैंपस। नंबर 3 ये कि भवन स्वामी खुद उस मकान में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। और चौथा ये कि वहां पर अतिथियों के खाने पीने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आखिरी बात ये जो कि महत्वपूर्ण है कि उस बिल्डिंग में 1 से 6 कमरे तक जो है वही होम स्टे के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड का मूल निवासी, स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरी चीज, जिस भूमि पर होमस्टे बना हुआ है उसका स्वामी ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। तीसरा ये कि वो किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार के आरक्षण के नियम है उसके अनुसार लाभार्थियों के चयन में उसका भी ध्यान रखा जाता है। और जो पारंपरिक और पर्वतीय पहाड़ी शैली में बने हुए मकान हैं उनको वरीयता दी जाती है। ये सब्सिडी को दो हिस्सों में हम बांट देते हैं तो समझने में आसान। सब्सिडी के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए एक क्राइटेरिया है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक क्राइटेरिया है। मैदानी क्षेत्रों में जो सब्सिडी रखी गई है वो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा उसका 25% या फिर 7.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो। और पर्वतीय क्षेत्र में ये अमाउंट होगा 10 लाख रुपया या फिर 33%, दोनों में से जो भी कम हो। इसके अलावा हर साल के ब्याज पर मैदानी क्षेत्र में पहले 5 वर्षों तक अधिकतम जो ब्याज होगा प्रत्येक वर्ष का उसका 50% या फिर 1 लाख, जो भी कम हो, ये छूट दी जाएगी। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में लोन लिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए तो उस केस में पहले 5 वर्षों तक 50% ब्याज या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो, वो छूट किसी व्यक्ति को मिल सकेगी। ये मैक्सिमम छूट। जी हाँ, कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है जब वो कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आपने ऋण लिया हुआ है और आपने जो कंस्ट्रक्शन जिसके लिए ऋण लिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट और बैंक के द्वारा, और ये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जब लग जाती है इसके बाद ही सब्सिडी जारी की जाती है। और दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति जो लोन लेता है इसके लिए उसको इसको पर्यटन इकाई के रूप में चलाने के लिए वो बाध्य होगा। ऐसा नहीं कि हमने मकान बनाया और उसके बाद में उसको हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जब आप ऋण लेते हैं बैंक से तो मार्जिन मनी के रूप में 12.5% की राशि रखी गई है। इसके अलावा जो ऋण के पेपर्स हैं वो बैंक की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। जो भी उसमें आवश्यक औपचारिकताएं हैं वो बैंक की शर्तों के अनुरूप पूरी कर ली जानी चाहिए, तभी आपको ऋण भी मिलेगा और तभी आपको सब्सिडी भी मिलेगी। आवेदन पहले ऑफलाइन किया जाता था इसके लिए, लेकिन अभी निगरानी रखने के लिए जो ताकि डिपार्टमेंट को सारी चीजों की जानकारी मिल सके, इसके लिए आवेदन को ऑनलाइन कर दिया गया। अभी घर बैठे व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन कहाँ करना है ये आप जान लें, www.vcsgscheme.gov.in। और इसके अलावा उस आवेदन में क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, परिवर्तन प्रमाण पत्र वगैरह, तो ये सारी जानकारी आपको आवेदन करते समय ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। इसके साथ में आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद इसका परीक्षण किया जाता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। और इसके बाद में इस प्रपोजल में जो भी अगर सारी औपचारिकताएं आपने पूरी की हैं, आपका जो रिपोर्ट कंप्लीट है, तो इसको लोन के लिए फाइल को बैंक में भेज दिया जाता है। और इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होता है बैंक का कि वो उसमें से अपने नियमानुसार उसका परीक्षण करने के बाद में कितने लोगों को ऋण देता है पर भेजें। वो ईमेल आईडी का भी हम लिंक यहाँ पर दे रहे हैं नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उस पर भेजे तो उसको अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ्स को हम आपके वेबसाइट पर दिखा सकते हैं।
1: श्रोताओं, अंत में यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड की होम स्टे योजना ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो श्रोताओं, योजना संवाद के आज के अंक में इतना ही। मुझे यानी गीता नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आपने सुना है विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे अपनी शिकायतों, सुझावों, फरमाइशों और खूबसूरत प्रतिक्रियाओं पर आधारित आपके भेजे गए पत्रों पर आपका कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज
1: और रमेश चंद्रा की ओर से
0: जी।
1: और कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ प्यारे प्यारे पत्र हैं और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं, क्यों ना इनको पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाए
0: जी। और आज हम देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आज हमें विस्तार से एक पत्र मिला है और इस लिफाफे में हमारे श्रोताओं ने हमें बहुत कुछ लिख भेजा है। और ये पत्र लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा। आप पत्र लिखते हैं गांव धौतरी उत्तरकाशी से। आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम मैं सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं। अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही सुंदर पेश किया जाता है और उसमें प्रस्तुति सभी लोगों की शानदार होती है। मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम का प्रसारण होता था, बाद में नजीबाबाद केंद्र से प्रसारण हुआ, लेकिन गढ़वाली लोकगीतों के लिए समय हमेशा कम रहता है, अब जबकि हमारा अपना आकाशवाणी केंद्र है। और लिखते हैं कि आपके केंद्र से सभी उद्घोषकों द्वारा और कंपेयर द्वारा अच्छी प्रस्तुति होती है कार्यक्रमों की। और लिखते हैं कि अब एफएम पर कार्यक्रम प्रसारण साफ सुथरा सुना जाता है, पहले तो आसमान खराब हो या बिजली कड़कने पर रेडियो चिड़चिड़ करता था, आवाज साफ नहीं आती थी। नई तकनीक का धन्यवाद जिन्होंने रेडियो को जीने का सहारा बनाया है। ज्ञान जानकारी मनोरंजन का केंद्र है आकाशवाणी। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से ग्राम जगत कार्यक्रम में समाचारों को अलग से आप प्रसारित करें, गिरी गुंजन कार्यक्रम को आप नियमित रूप से प्रसारित करें, दोपहर में गढ़वाली लोकगीत प्रसारित किया करें। और लिखते हैं कि प्रातः भक्ति संगीत के कार्यक्रम में किसी भी कलाकार का एक गढ़वाली जागर जरूर शामिल करें। हेलो ग्राम जगत, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोकगीतों की प्रसारण करने की कृपा करें। साथ ही आप लिखते हैं कि लोक संगीत में गुजराती हिमाचली रागिनी भोजपुरी पूरी रोहिलखंडी आदि हरियाणवी लोकगीतों का प्रसारण कम करें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में दो बार करें। कार्यक्रम विवरण लिखने वाले साहब से ये ध्यान रखना चाहिए कि किस कलाकार का गीत कब से कार्यक्रम में नहीं बजाया, खासकर गढ़वाली लोकगीतों के प्रसारण के बारे में। आपके यहाँ से जो शहर संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है उसमें आप हर दिन अलग अलग कलाकारों के गाए गीतों को शामिल करने की कृपा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी, धौतेरी उत्तरकाशी से आपने एक हमें प्यारा सा पत्र लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है कि आपको आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और उन कार्यक्रमों को बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया जाता है
0: जी।
1: कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं तभी इतनी विस्तार से आप बातें कर सकते हैं
0: जी।
1: आपने लिखा है कि एफएम पर प्रसारण साफ सुथरा सुना जाता है, पहले तो आसमान खराब या बिजली कड़कने पर रेडियो चिड़चिड़ आवाज करता था, नहीं आती है। तो सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बेहतरीन क्वालिटी सुनने में मिले, तो इसके लिए जो हमारी सरकार है वो धन्यवाद की पात्र है। और इसके अलावा आप लिखते हैं कि दोपहर में गढ़वाली गीत का प्रसारण करने की कृपा करें और प्रातः भक्ति संगीत में किसी भी कलाकार का एक गढ़वाली जागर सम्मिलित करें
0: जी।
1: हम कोशिश करेंगे कि प्रातः भक्ति संगीत के कार्यक्रम में गढ़वाली जागर शामिल हो सके। और आपने दोपहर में गढ़वाली गीत का प्रसारण करने की बात की है
0: जी, हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनवाए जाते हैं गढ़वाली लोकगीत गढ़वाली जागर, जिसका समय रहता है सुबह 10:35 पर। और हमारे यहाँ से समय समय पर गढ़वाली लोकगीतों का प्रसारण किया जाता है, कुमाऊनी लोकगीत प्रसारित किए जाते हैं, जौनसारी लोकगीत प्रसारित किए जाते हैं जिसे आप सुन सकते हैं, शैल संगीत के कार्यक्रम में, ग्राम जगत कार्यक्रम में, गिरी गुंजन में जनानों का वास्ता कार्यक्रम प्रसारित होता है बुधवार को, उसमें भी गढ़वाली लोकगीत प्रसारित किए जाते हैं दोपहर में
1: जी। इसके अलावा आपने भोजपुरी रोहिलखंडी गीतों के प्रसारण को लेकर लिखा है, तो रोहिलखंडी जो लोकगीत हैं वो कृषि जगत कार्यक्रम में नियमित रूप से प्रसारित होते हैं
0: जी, और सप्ताह में एक दिन प्रसारित किए जाते हैं। रोहिलखंडी होते ही एक दिन अवधि लोकगीतों का प्रसारण किया जाता है, सप्ताह में एक दिन हरियाणवी लोकगीत होते हैं और एक दिन पंजाबी लोकगीत, और इसी तरह हिमाचली लोकगीतों का प्रसारण किया जाता है, गुजराती लोकगीतों का प्रसारण किया जाता है। और अपने श्रोताओं श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं कि हमारे यहाँ से जो बहुत सारे हमारे श्रोता होते हैं अलग अलग प्रांत के होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी लोकगीतों का प्रसारण किया जाए और ये विविधता हमारे कार्यक्रमों में रखी जाती है ताकि हमारे दूसरे श्रोता भी कार्यक्रमों से जुड़ पाए।
1: निश्चय ही। और आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम को लेकर भी लिखा है कि सप्ताह में 2 बार प्रसारण करने का कष्ट करें।
0: जी,
1: तो हेलो फरमाइश कार्यक्रम जो व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित है वो नियमित रूप से 11 बजे से 12 बजे तक प्रसारित किया ही जाता है। तो उस कार्यक्रम में आप अपने मैसेज भेज सकते हैं।
0: और फिलहाल जो हेलो फरमाइश सप्ताह में एक बार चल रहा है, आप उसी में ही अपना फोन करके अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुन सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ भविष्य में सप्ताह में 2 बार होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम, तो उसके बारे में हम आपको पूर्व सूचना जरूर देंगे।
1: राजेंद्र प्रसाद बहुगुड़ा जी, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, मिस बार शमसी नगीना जिला बिजनौर यूपी से लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून को मैं हमेशा लगातार सुनती हूँ, इसके सभी प्यारे कार्यक्रमों को मैं दिल से चुनती हूँ, कोई भी कार्यक्रम मिस न हो यही ध्यान रखती हूँ, इसे सुनकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सेहत और स्वास्थ्य चर्चा से मिलती अच्छी जानकारी है, युवाणी ग्राम जगत और कृषि जगत की बात ही सबसे प्यारी है। हेलो फरमाइश, आपकी फरमाइश और व्हाट्सएप फरमाइश का अलग ही मजा है। आपका पत्र मिला महिला जगत और उमंग का अलग ही रुतबा है। बाल मंडल से बच्चे खुश होते हैं और सदाबहार फिल्म संगीत सबको भाता है। एक कलाकार और सैनिकों के लिए प्रोग्राम हम सबके मन को बहलाता है। साहित्य की खेल दर्पण और शास्त्रीय संगीत से नया सीखने को मिलता है। हिंदी वार्ता, इंग्लिश वार्ता और संस्कृत वार्ता से ज्ञान का रास्ता खुलता है। इसका एक कार्यक्रम हमारे दिल का

0: आपको नया सीखने को मिलता है, हिंदी वार्ता, इंग्लिश वार्ता, संस्कृत वार्ता से ज्ञान का रास्ता खुलता है, ऐसा आपने लिखा है।
1: जी
0: और सबसे बड़ी बात है, आपने ये जो पत्र लिखा है हमें एक कविता के फॉर्मेट में लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसबाह शमसी जी, हम आपसे यही चाहेंगे आप इसी तरह से आगे हमें पत्र लिखते रहें और अपना प्यार आकाशवाणी देहरादून के साथ इसी तरह बनाए रखें। आपका मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और साथ में इनके परिवारजन। आप लिखते हैं शेर, वक्त के हालात से मत डरना, वक्त के हालात से मत डरना, दिल का दर हमेशा खुला रखना, दुनिया लाख दगा दे लेकिन जिंदा रहने का हौसला रखना। कार्यक्रम में आप सभी लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से आदाब। हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को हम बहुत अच्छे से सुनते हैं और अच्छे लगते हैं। हमें एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम का समय आपने कम क्यों कर दिया है? पहले आप इस कार्यक्रम को 15 मिनट करते थे मगर अब 10 मिनट ही आप इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? महिला जगत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में घरेलू कामकाज की बातें बहुत लाभदायक होती हैं। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से आपने हमें एक मैसेज लिखा और शुरुआत में आप एक शेर लिखते हैं, वक्त के हालात से मत डरना, दिल का दर हमेशा खुला रखना, दुनिया लाख दगा दे लेकिन जिंदा रहने का हौसला रखना।
1: जी
0: तो ये बात तो हमारी आकाशवाणी केंद्र देहरादून पर बहुत ही अच्छे से लागू कर सकते हैं आप। हमारी आकाशवाणी देहरादून के जो दर हैं, दरवाजा जिसे कहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं
1: जी
0: हमारे सभी श्रोताओं के लिए। और लोग भले ही लोगों को दगा दें, धोखा दें,
1: जी
0: लेकिन आकाशवाणी देहरादून हमेशा जिंदा रहने का हौसला देती है हमारे श्रोताओं को, उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण करके, उनकी पसंद के फरमाइशी गीत सुनवा के
1: जी
0: और श्रोताओं की पसंद के अनेक कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जाते हैं।
1: जी
0: उन कार्यक्रमों को सुन के वो अपना हौसला बनाए रख सकते हैं। और आपने लिखा है कार्यक्रम पेश करने वालों को आदाब, तो हमारी तरफ से भी आपको आदाब, नमस्कार।
1: जी
0: और आपने लिखा है कि आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने आपका पत्र मिला को लेकर लिखा है, इसका समय पहले 15 मिनट था, अब 10 मिनट कर दिया गया है, लेकिन इस बार से पुनः 15 मिनट हो गया है, क्योंकि पहले एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से, जिसको हम ऑक्टिव ब्रॉडकास्ट करते थे, तो उस कार्यक्रम को एडजस्ट करने के लिए हमने जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम की अवधि 15 मिनट है उसे घटाकर 10 मिनट कर लिया था। लेकिन उस कार्यक्रम का प्रसारण जो भारत सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर था, अब प्रसारण बंद कर दिया गया है, तो आपको आपका पत्र मिला कार्यक्रम फिर से 15 मिनट ही सुन पाएंगे। और आज का भी जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम है वो भी 15 मिनट का है। तो लालू मिस्त्री अंसारी जी, आपकी ये शिकायत दूर हो गई होगी। और आप लिखते हैं कि महिला जगत कार्यक्रम में जो तमाम टिप्स दिए जाते हैं ये आपको अच्छे लगते हैं और व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही चाहेंगे आपसे कि आपको हमारे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगें और इसी तरह से आप नियमित रूप से अपने मैसेज और पत्र में लिखते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफा साहिब, सईद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और साथ में नगमा नाज मंसूरी। आप सभी लिखते हैं आकाशवाणी देहरादून की हम नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रमों का बराबर सुनते हैं आपके यहाँ से। पिछले दिनों हमने एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत सुरैया पर आधारित एक कलाकार कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। और लिखते हैं कि आप हमें फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब पर भी कार्यक्रम सुनवाएं और आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं। सेहत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और साथ ही बच्चों का कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, महिलाओं का कार्यक्रम, हेलो फरमाइश जैसे सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं। और आप लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम शुक्रवार को रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाता है, आप उसे दिन में प्रसारित करें तो हमें अच्छा लगेगा। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से सभी प्रसारण हमें अच्छे मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है।
0: मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, शहीद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा और आपके परिवारजनों ने एक मैसेज लिखा है। आप लिखते हैं आकाशवाणी देहरादून के आप नियमित श्रोता हैं, बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए कि आप इसी इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, नियमित रूप से सुनते रहें। और आपने लिखा है आपको आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने लिखा है कि आपकी पूरी टीम को आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा

0: अपनी पूरी टीम के साथ हमारे आकाशवाणी देहरादून केंद्र के कार्यक्रमों को सुनते रहें। आपने एक ही कलाकार में सुरैया को सुनने की बात की और आपको ये अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए।
1: जी
0: आप अब अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब को भी सुनना चाहते हैं तो निकट भविष्य में आपकी ये फरमाइश भी अवश्य पूरी कर दी जाएगी।
1: जी
0: और आपने लिखा है हेलो फरमाइश कार्यक्रम जो रात को 10 बजे होता है उसको दिन में 3 बजे प्रसारित करें,
1: जी
0: तो कभी कभी हर श्रोता की फरमाइश पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। रात 10 बजे ये कार्यक्रम काफी लंबे समय से प्रसारित किया जा रहा है, जब 3 बजे करेंगे तो कुछ श्रोताओं को ये शिकायत फिर से होगी कि हम दिन में अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो 10 बजे प्रसारित किया जाए।
1: जी जी
0: तो अभी हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम का आनंद आप रात को 10 बजे ही लीजिएगा, और आपको आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम है, चाहे व्हाट्सएप फरमाइश हो, सेहत कार्यक्रम हो या अन्य जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है।
0: तो क्यों ना कल्पना जी, कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोताओं को पत्र भेजने और मैसेज भेजने का पता बता दीजिए।
1: हमारे श्रोता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला में व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
0: हमारे श्रोताओं ने 29 जून को आकाशवाणी देहरादून की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के स्थापना दिवस की हमारी आकाशवाणी देहरादून परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज,
0: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां अनूप घोषाल प्रस्तुत कर रहे हैं भजन।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और आप सुन रहे हैं अनूप घोषाल से भजन प्रस्तुत है। ये भजन आपने सुना था जिसके काव्य रचना थी कबीर की, और अगला भजन जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम भजन है उसकी काव्य रचना है मीराबाई की।

FM 100.5 MHz पर अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे अपना मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म महबूब की मेहंदी से, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार RD बर्मन।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में फिल्म उमराव जान से। लिखा था शहरयार ने और संगीत था खय्याम का। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का। फिल्म का नाम अनपढ़ और आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:44 और 50 सेकंड हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
4: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके।

0: गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
4: Prime Minister Narendra Modi visited the botanical garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Harmini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और बाहर रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई। तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
4: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
4: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
4: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
4: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
4: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
4: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
4: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
4: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
4: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
4: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
4: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
4: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि।

0: संधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं। जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
3: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।

0: आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन से आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। So, इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माय दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेवल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
6: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
7: He was initiated by Sri Dulal Roy.
6: He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
5: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
6: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:59 और 6 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनिए ये संदेश।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for 2 major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the project, the minister said that the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. It says the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based